0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा
0: हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

नुकसान ये सिर्फ अल्लाह ताला के पास से ही आता है। हाँ, ये उसमें जरूर बताया है कि खालिसतन जो नफा होता है, जो फायदा होता है, जो रहमत होती है, जो इंसान के सआदत होती है, ये खालिस अल्लाह ताला की तरफ से होती है। इसलिए फरकुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह, इन लोगों को ये बता दो कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। और अलबत्ता जो बुराई कभी पहुंचती है तो फरमाया कि वो बुराई कभी आती है वो अल्लाह ही की तरफ से आती है, कि सबब जो है वो तुम्हारे आमाल बन जाते हैं, तुम्हारे बुरे आमाल वो अल्लाह ताला के गैज और गजब को खींच के ले आते हैं, दावत देते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह की नाराजगी होती है, और अल्लाह की नाराजगी की वजह से फिर ये तुम पर तरह तरह की मुसीबतें आती हैं। तो बहरहाल इसी बात में एक दूसरी हदीस में आपको ये बता रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आपने फरमाया कि लैसा मिन्ना मन ततय्यर तुतय्यर लहू, फरमाया वो मेरी उम्मत में से नहीं है जो परिंदों से जो है बदफाली या बदशगुनी लेता है खुद या किसी और के लिए। और ये परिंदों से जैसे यहाँ आजकल जो है हमारे मुल्क में भी है, किसी ने तोते रखे हुए और उससे अजीब अजीब लेते हैं कि जी ये इधर उड़ गया तो ये हो गया, फलान हो गया, यानी हर वो काम जिसकी वजह से जो है कोई गैब की बात की कोई चीज को बता दे या उससे पता चल जाए या आपकी किस्मत की बात पता चल जाए, तो ये इसमें एक ये भी है। और इसमें तकाहुन भी इसी में आता है कि जो नजूमी बैठे रहते हैं कि उनके पास जा करके उनसे पता करना ये करना। और इसी में एक ये भी है कि सहारा और सहरा जादू जो है, अब ये जादू जो है ये भी जो है किसी के खुद करना या किसी के लिए कराना जादू है। और इसी तरह से ये भी था कि अपने हाथ में कोई चीज रख कर ये कहना कि ये बताओ इसमें क्या है और फिर उस पर शर्तें लगाना ये करना। तो फरमाया ये सारी चीजें ऐसे हैं कि कोई आदमी अगर इसके पास ऐसे लोगों के पास आए ये काम करे और फिर उसकी बात की तस्दीक करते, हाँ यार नजूमी ने जो बात की थी ना वो बड़ी सीख ठीक बात कही थी, या फलाने से मैंने फाल निकलवाया था वो बड़ा सही था और ये था, फरमाया अगर तस्दीक करेगा तो आपने फरमाया फकद कफारा बिमा उन्जिल अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फरमाया कि ये इस किस्म के काम जो करेगा तो गोया कि उस दीन से इनकार कर देगा, उस दीन से निकल जाएगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि जो दीन लाया उस दीन के अंदर इन चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है कि जो किसी के लिए कोई फायदा रखते हो या किसी के गैब की बात बताते हो तुम्हारा ये होगा फलान होगा, तो इसका ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। तो इन तालीमात के ऊपर करना ये गोया के दीन इस्लाम से इनकार करना हुआ ये। और चूंकि जब इस्लाम की तालीमात यह है कि आप को अल्लाह पाक ने जो असबाब दिए हुए हैं उन असबाब को इख्तियार करो और फिर अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर भरोसा करो और बस ये आपका काम है, और बाकी जो है उसका नतीजा जो आएगा जो है अगर अल्लाह ताला को जो है तुम्हारे जो चीज फायदे में देखेगा अल्लाह पाक को जो बेहतर होगी तुम्हारे फायदे में अल्लाह ताला वो दे देगा। और बाज दफा अगर जो है जो आप मेहनत करते हैं उसका नतीजा ऐसे नहीं निकलता है तो उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, उसका आप को अमल आपका रुकावट बनता है, या ये होता है कि आप इंतजार करो आज नहीं तो कल अल्लाह ताला आपको उस बात का नतीजा दे देगा। तो बहरहाल इस्लाम में ये बताया कि हर चीज जब अल्लाह के दस्त से कुदरत है इसी अल्लाह से रजू रखो, अल्लाह ताला से आप रब्ता रखो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना यही है कि अल्लाह की जब इबादत है तो अल्लाह से मदद भी मांगनी है हर छोटे बड़े काम में हर मुश्किलात में ये बनती। और जो है अब इन चीजों पर जो है जो अगर मान लिया जाए कि नजूमियों को या जादू को या इन सारी चीजों को, जादू के लिए जो है कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा कफर सुलेमान वलकिन शयातीन कफरू, के यहूदी ये कहते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है उनकी हुकूमत जादू पर कायम थी, फरमाया अल्लाह ताला ने कि गोया कि ये जादू कुफर का काम है और कुफर जो शयातीन जो है वो करते हैं और अल्लाह ताला के अंबिया अल्लाह के बंदे इस कुफर से महफूज होते हो, कभी ये काम नहीं कर सकते। वहां जादू के जहां बाहर था या वहां अल्लाह ताला ने फरमाया वमा हुम बिद्दारी नबी मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, पर मैं ये जादू जो करते हैं ये भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते अल्लाह ताला की मशीयत के बगैर।
ये एक जादू एक

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: شاہ جی،
2: وعلیکم السلام۔
1: شاہ جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
2: ٹھیک، تسی سناؤ؟
1: بس شاہ جی، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ٹھاک۔ میں کہ میسج بھیجے سے ٹیکسی والا کیڑا سی کار والا
2: جی؟
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر ہیں۔ تمام موسم اچھا ہے، بادل بھی چھائے ہوئے ہیں اور آن دا ہول بارش بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے، زوردار بارشیں، چونکہ ساون کا مہینہ جو ہے وہ گس چلتی شروع ہونے والا ہے۔ تو شاہ صاحب سے ہم بہت ساری خبریں شیئر بھی کرتے رہتے ہیں، وہ بھی سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، حالات حاضرہ پر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو اپنے تھنک ٹینک سے یہ توقیر حسن بخاری شاہ صاحب کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ فور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے جتنے لسنر ناظرین ہیں سب کو بہتر سب، السلام علیکم۔
1: موسم
2: بہت پیارا ہے اس وقت، 18-19 ڈگری گرمی ہے اور ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں اور کبھی دھوپ کبھی بادل، لیکن جو پیش ہوئی ہے کہ موسم جو ہے شام کو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بادل برسیں، لیکن کس وقت برسیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کس وقت وہ آئیں گے، کیونکہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے اور جب وہ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے لیکن طوفان نہیں آتا۔ تو یہ سب کچھ اللہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا اس کا دنیا اس کی ہے، کیسا موسم ہوتا ہے۔ تو راجہ صاحب، لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور اب چھٹیاں جو ہیں، کافی لوگوں کی چھٹیاں جو ہیں کل سے ختم ہو رہی ہیں، کافی بان ہیمن جو ہیں وہ دوبارہ کھل رہے ہیں، تو کافی لوگ جو ہیں وہ کیونکہ لوگوں نے مختلف ٹائموں میں چھٹیاں لی ہوئی ہیں، کچھ کی چھٹیاں جو ہیں وہ کل منڈے کو ختم ہو جائیں گی، لوگ بان ہیمن میں بچے جانے شروع ہو جائیں گے، کچھ جو ہے وہ اگست کے پہلے ہفتے میں ختم ہوگی، کچھ اسکول وغیرہ جو ہیں وہ 3 یا 5 اگست تک یہ اسکول وغیرہ بھی کھل جائیں گے۔ تو اس طرح پھر جو زندگی کا ایک پیا ہے وہ دوبارہ چل پڑے گا۔ جی راجہ صاحب،
1: تو شاہ صاحب، سیاسی پہیا کب چلے گا؟
2: دیکھیں جی، اس وقت تو دو سیاسی پیا یہاں پہ گرم ہے، ایک ڈینش سیاسی پیا اور دوسرا جو ہے وہ مینگو سیاسی پیا، اور جو مینگو سیاسی پیا ہے وہ تو 8 کو یہاں پہ البرٹ سون میں دوبارہ لگنے جا رہا ہے، اور وہ 8 اگست کو، اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ 14 اگست منائی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ جو ہے آگے تک چلے گا۔ اور اس کے بعد
1: شاہ صاحب، سارا نام جو ہے پاکستان فیسٹیول کے نام سے آتا ہے،
2: یہ مینگو جو ہے یہ پاکستان فیسٹیول کے نام پہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان سوسائٹی 14 اگست کو منا رہی ہے، اور باقی جو ہے وہ میرا خیال میں 19 اگست کو دوبارہ جو ہے وہ ایک فیسٹیول ہونے جا رہا ہے، تو اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کون کر رہے ہیں، لیکن میری نظر سے گزرا تھا کہ 19 کو بھی ایک مینگو فیسٹیول ہوگا۔
1: تو 16 اگست بھی منایا جا رہا ہے
2: جی، اب لوگ دن منائیں گے کوئی 12 کو، لیکن جو آفیشیل جن کے اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں، جن کا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے، تو ان کا تو ہمیں علم ہو جاتا ہے، لیکن جو صرف ابھی اندازے لگا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔
1: تو چلیں شاہ صاحب، آفیشیل تو 14 اگست کو پاکستان امبیسی میں ہوتا ہے، پرچم کشائی ہوتی ہے، تو وہ تو ہر سال کی طرح اسی طرح ہوگا۔ تو شاہ صاحب، اب جو سیاسی موسم ہے یہ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا ہے، چھٹیوں پہ چلا گیا ہے، خالی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں سیاستدان۔
2: جی، اس دفعہ سیاستدانوں کے بارے میں جو ہے وہ کافی لے دے ہو رہی ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم ریڈیو پہ ہی ان سے بات کرتے ہیں، بلکہ اب عوام الناس جو ہے، عام لوگ جو ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کیا فائدہ ایسے ینگسٹرز کا، کیا فائدہ ایسے لوگوں کا جو اہل زبان ہونے کے باوجود ہمیں کچھ انفارمیشن نہیں دے رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی گڑبڑ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 11 دن کے اندر 11 दिन के अंदर यहाँ पे 7 छुरियों के हमले हुए हैं कोपनहेगन के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात है कि 11 दिन में 7 हमले होना, और उनके अंदर सिर्फ सारे फॉरनर्स हैं, मेजॉरिटी फॉरनर्स की है, क्योंकि यूक्रेन के हमारे यहाँ के रहने वाले दूसरे आगे पीछे बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो पुलिस ले रही है, और ये पब्लिक प्लेसों के ऊपर जो है खुसूसी तौर पे मेन स्टेशन पे या पब्लिक प्लेस जैसे फील्ड्स होगी, सेंटर्स हो गए, इनके अंदर इस तरह की बदमाशी करने से
1: ये
2: जो
1: जितनी जो कारोबारी ये जगह हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, यहाँ तो हर तरफ हर कोने खुरदरे में भी जो है वो कैमरे लगे होते हैं, कोई चीज तो छुप नहीं सकती शाह साहब यहाँ से।
2: जी वो छुपती नहीं, वो पकड़े जाते हैं, लेकिन जलालत ये है कि वो खुद तो अपने दिमागी या रंजस की वजह से किसी के ऊपर वार तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बदनामी जो है वो सारे फॉरनर्स की हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये ज्यादातर बच्चे जो हैं ये 15 साल से लेके तो 20 साल 21 साल की उम्र
1: तो
2: के
1: सब इन बच्चों को मसरूफ रखना चाहिए ना, स्कूलों में तरबियत होनी चाहिए, उसके बाद माँ बाप का भी तो हक बनता है वो भी तरबियत करे। कुछ बच्चे जो इंसाफ भी नहीं मिलता है, तो बच्चे जो है वो अपना जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंसाफ नहीं जब मिलता।
2: राजा साहब जब लुटेरे घर का सफाया कर जाएं, डाकू डाका मारने में कोई चीज ना छोड़े, तो उस घर के अंदर भूख की हालत होगी। यही हाल यहाँ हमारे चीजों का है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने, मुझे कोई दो राय नहीं, जब यहाँ गवर्नमेंट ने शुरू से ही ऐसे पोलियो रखे हुए हैं, ऐसी चीजें रखी हुई हैं कि जो कल्चर के लिए जुमले में आता है, यानी कि आप अभी कोई कल्चर करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट करना चाहते हैं, आप हॉकी खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, आप कोई भी किसी किस्म की गेम करना चाहते हैं, आप कोई बस टूर करना चाहते हैं, कोई भी, बूढ़ों से लेके बच्चों तक गवर्नमेंट ने यहाँ कम्यून ने अदारे बनाए हुए हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी 50-60-100 बंदे की मेंबरशिप करके वहां से हेल्प ले सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं हर चीज, लेकिन ये मेरा काम नहीं बताने का, ये काम है जो यहाँ के सियासतदान है, जो यहाँ कहते हैं जी ओ जी असी तो बहुत बड़ी डैनिश जबान बोल रहे हैं जी, असी तो PhD हैं जी, असी तो बड़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से हम पढ़ के आए हैं, क्या वहाँ पे ये सियासत पढ़ रहे थे? अगर सियासत पढ़ रहे थे तो क्या वहाँ पे ये लॉ पढ़ रहे थे? भाई आकर सामने बताएं तो सही आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को तो बताएं, बाहर तो निकले अपने, ये जो क्राइम आज हो रहे हैं, अगर इन बच्चों को, इन पेरेंट्स को बराबर के हकूक मिले होते हैं जैसे डेंचो के होते हैं, तो ये कभी भी क्राइम ना करते।
1: शाह साहब हकूक तो मिलते हैं, हकूक लेने का आपने जिस तरह तरीका बताया, शाह साहब मैं जरा आता हूँ महंगाई की आपने बात की है, तो शाह साहब अगर एक महीने में 5-6 मेले होते हैं, तो एक फैमिली वाला अगर हर मेले में जाकर 250-400-500 करोड़ खर्च करके आ जाता है, तो शाह साहब एक पेंशन वाला कैसे फिर गुजारा करेगा? बच्चों के साथ जाएगा, कोई 1000-1200 लगा के आ जाते हैं, तो शाह साहब हम इन चीज़ों को देखते नहीं हैं। हम अब गाड़ियाँ हमारे पास बड़ी बड़ी हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, सड़क पर आप खड़े हो जाएँ तो कहीं आपको गुर्बत नज़र आती है, किसी स्टोर में चले जाएँ आपको कहीं गुर्बत नज़र आती है, किसी भी पब्लिक प्लेस पर चले जाएँ, सैर वाली जगहों पर चले जाएँ, झूलों वाली जगहों पर जाएँ, कहीं आपको गुर्बत शाह साहब नज़र आती है? किसी मेले में चले जाएँ, कोई आपको गुर्बत नज़र आती है?
2: नहीं, हमें वो तो हमें माजरत के साथ एक फैशन शो नजर आता है कि हर कोई अपनी जो है, हर कोई अपने ड्रेस का या अपने पैसे का, ताकत या अपनी गाड़ी या दूसरे इमारत की शो जो है वो सामने,
1: महंगाई का जिक्र तो नहीं होना चाहिए ना?
2: नहीं, देखे वो भी जमाना था जब हम बसों पे सफर करके काम पे जाते थे, पैदल चल के काम पे जाते थे, घोड़े घोड़े बर्फ पड़ती थी उस वक्त, उसके अंदर कई कई मील लोग पैदल चल के जाके काम करना करने जाते थे, साइकिलों पे जाते थे, खनेलट होते थे, उनके अंदर 5 करोड़ का पेट्रोल डलता था, तो वो पूरा हफ्ता 2 हफ्ते वो गुजारा
1: तो
2: कर लेते थे,
1: लोग स्टेट को गिला नहीं करना चाहिए ना?
2: नहीं, स्टेट को नहीं है, हमारे अपने अपने जो रवायात हैं, हमारे हमने अपनी रवायात को बदल लिया है, हमने 2 कल्चर बना लिए हैं, हमने सबसे ज्यादा बड़ा कल्चर जो है वो पाकिस्तान का कल्चर बनाया है, हम शो मारने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं, हम सबसे ज्यादा पैसे, पहले तो आप ये हिसाब लगाएं, आप अकेले जा रहे हैं, 2 बंदे जा रहे हैं, तो कम से कम 25-30-50 हज़ार करोड़ का खर्चा जो आप पाकिस्तान लेके जा रहे हैं। फिर यहाँ पे आपने फैमिली स्टैंडर्ड रखना है, यहाँ पे भी आपने हर चीज रखना है, गाड़ी रखनी है, तो फिर आपके बच्चे जो हैं, जो बच्चों का हक है उनको आप नहीं दे रहे। अब बच्चे जो हैं अब छुट्टियों से वापस आएंगे, आप खुद निकल जाएं, आप जर्नलिस्ट हैं बाहर निकल जाएं, जाके बच्चों से पूछे आपने बेटा कहाँ पे छुट्टियां गुजारी, तो वो कहेगा कि फलाने कजन के घर चले गए, फलाने के पास चले गए, मैंगो फेस्टिवल चले। तो जो डैनिश बच्चे हैं उनसे पूछेंगे वो कहेंगे जी हम इटली गए, हम टर्की गए, हम इजिप्ट गए, हम फलानी जगह गए, हमने फलानी जगह स्केटिंग की, हमने फलानी जगह फिशिंग की, वो ऐसी बातें आपको बताएंगे। तो उससे हमारे बच्चे जो हैं वो नफसियाती तौर पर जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, और जब वो कमज़ोर होते हैं तो फिर वो करते क्या हैं, वो फिर पैसे को हासिल करने के लिए, क्योंकि ज़हनी तौर पे आदमी कमज़ोर हो जाता है, तो फिर वो ऐसी बातें करता है कि ये हमारा डिफरेंस क्या है। वो अपने माँ बाप से चीज़ें छुपाता है, वो बाहर भागता है और बाहर जाके वो क्राइम करता है। तो इन चीज़ों को देखें, आप हमारे ड्रामे देख लें, हमारे कल्चर देख लें, आप घर में बैठे हैं ड्रामा आपने लगाया देखा है स्वाइड वो उसके लव मैरिज, ये शादी किसी से हुई है, लव किसी से हो रहा है, ये सारा का कल्चर हमारा जो है, हम लोगों ने कभी भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं की, खुद ही इसके ऊपर इसकी तबाही के हम जिम्मेदार हैं। यहाँ पे कितने घर हैं, यहाँ पे अगर आप जाकर किसी से गवर्नमेंट से बात करें, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि यहाँ पे हमारे बच्चियों के हकूक किस तरीके से पमाल हो रहे हैं, हमारी बहनों के बेटियों के हकूक कैसे पमाल हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स हो रही है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर यहाँ का जो कानून है वो उसकी पमाली की जाती है। तो राजा साहब ये जो
1: शाह साहब हम कोई काम कानून के मुताबिक नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ मांस व गिले करने के अलावा हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है।
2: देखिए जी, जो भी इस वक्त बात होगी, आप किसी मैंगो फेस्टिवल पे चले जाएं, किसी डिजाइनर फेस्टिवल पे चले जाएं, किसी आप गाने बजाने वाली महफिल में चले जाएं, यहाँ के काउंसलर्स आए होंगे, यहाँ के सियासतदान आए होंगे, वो घूम फिर के बात होगी अपने गांव की, घूम फिर के बात होगी अपने इलाके की, घूम फिर के बात होगी कि मैं किस मिनिस्टर को मिसा, मेरा कजन कौन जनरल है, मेरा कजन कौन बड़े बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है, ये बातें आप सुनेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और होती है, हकीकत बिल्कुल बरअक्स होती है।
1: शाह साहब आते हैं, दोबारा वापस आते हैं। शाह साहब आपसे ये सवाल भी करते चले, शाह साहब इलेक्शन जमहूरी इलेक्शन होना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जमहूरी जितने इलेक्शन होंगे बेहतरी आएगी। तो शाह साहब जहाँ गुर्बत होती है, जहाँ आपको 20-20, 20-20, 40-40 लाख लगाने की जो है वो इजाज़त होती है अपने इलेक्शन कंपेन में, करोड़ों अरबों का इलेक्शन हो जाता है, जलसे जुलूस हो जाते हैं, बड़े बड़े लीडरान जाते हैं, उनकी खातर तवाज़ा होती है, तो शाह साहब जब इतने अखराजात करने के बाद जमहूरियत फिर भी उस तरह की नहीं आती, गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, तो जो लोग बनते हैं जिन्होंने लगाया होता है फिर वो उन्होंने अपना पूरा भी करना होता है, और उसके बाद गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, जी फलां हुकूमत ने ये कर दिया, फलां मुल्क ने ये कर दिया, फलां एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया। शाह साहब अपने करतूत हम ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, शाह साहब इसकी क्या वजह है?
2: इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो शोबाजी के लिए या अपना अपने क्रिमिनल एलिमेंट्स को छुपाने के लिए, जो उनके जो उनका कारोबार होता है उसको छुपाने के लिए वो सियासत में आ जाते हैं, और जब वो सियासत में आते हैं तो फिर उसको ताकत देने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग जो हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा हो। अब आप ये देखें कि आपने बात की तो आपने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया, वहां पे एक डॉक्टर एक बच्चे को डॉक्टरी पढ़ने के लिए जो है वो एक मामूली से मेडिकल कॉलेज के अंदर सिर्फ जो उसने डिपॉजिट कराना है वो 25-30 लाख रुपया है। अब वो 25-30 लाख रुपया कहाँ से लाएगा, उसको कौन देगा, क्या उसको कोई बैंक एसयू मिल रही है, बैंक लोन दे रहा है या क्या कर रहा है। इसी तरीके से इंजीनियर, इन्होंने एजुकेशन को इतना इतना गंभीर इतना ज्यादा महंगा कर दिया है कि लोग जो है और बस शोशा, और कुछ सबसे बड़े मुजरम हम हैं जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूँ क्योंकि मैं इस माशरे का एक हिस्सा हूँ। हम लोग जब वहाँ जाते हैं बच्चियों की बेटों की शादियां करते हैं एक महीने के लिए हम जाते हैं टोयोटा लैंड क्रूजर और बड़ी बड़ी गाड़ियां हम वहां रेंट पे ले लेते हैं और फिर वहां पे शो मारते हैं, ये है ये हमारी कोठी। तो अब उनको ये पता नहीं है, उन लोगों को ये पता नहीं कि हम यहाँ किस तरीके से मजदूरी कर रहे हैं, हम यहाँ किस तरह। ये अच्छी बात है कि अब आगे हमारी जो जनरेशन है सेकेंड और थर्ड जनरेशन, ये अच्छे अच्छे ओहदों पे यहाँ पे लग गए हैं, लेकिन इससे पहले तो हम सब मजदूर थे। यहाँ पे कौन सा डॉक्टर था, कौन सा इंजीनियर था, कौन कुछ था।
1: लेकिन शाह साहब आप से जानना चाहेंगे, आपके शाह साहब आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बताएं और हकायक की रोशनी को सामने रख कर रोशन करें। शाह साहब क्या यहाँ डेनमार्क में रहते हुए अपनी सियासी जमातें होनी चाहिए या डेनिश सियासी जमातों में हिस्सा लेना चाहिए?
2: देखिए जी, मैं तो प्रायोरिटी दूंगा कि यहाँ पे डेनिश सियासत जो है उसमें लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, खाब वो पाकिस्तानी जमाते क्यों ना हों, खाब वो पाकिस्तानी जमाते यहाँ रख रहे हैं, उन सबको ये हक हासिल है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपनी आवाम के लिए यहाँ की सियासत में को सबसे पहले नंबर वन समझे, यहाँ के लोगों को इनवाइट करें जो आइन को समझते हैं, जो यहाँ के तरीकाकार को समझते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे 90% बल्कि 90% ही 99% जिस वक्त हमारे यंग काउंसलर पहली दफ़ा इलेक्ट होते हैं, लोगों को गुस्सा तो लगेगा लेकिन मैं हकीकत बोल रहा हूं, तो उनको ये नहीं पता कि उम्बसमैन जो होते हैं, जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो यहाँ हमारे कम्यूनों में या अपने मुख्तलिफ अदारों में बैठे होते हैं, वो उनको किस तरह ट्रिकल करना है, उनसे किस तरह हमने सीखना है। वो जब सीख जाते हैं तो 4 साल गुजर जाते हैं या फिर अगली दफा 4 साल के लिए वो इलेक्ट नहीं होते बदकिस्मती से, क्योंकि उनका उनको तजर्बे थे, या फिर अगर वो दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो कुछ अरसे के बाद कहीं अच्छी नौकरी करने उनको मिल जाती है क्योंकि वो सियासत में रहे होते हैं। ये याद रखें कि हमारे लोग मेजॉरिटी जो हैं वो 2 मकासद हासिल करने के लिए सियासत में आते हैं, एक अपने फैमिली अपने इलाके में अपना नाम रोशन करना, हालांकि ये वही काउंसलर हैं जो पाकिस्तान में काउंसलर होते हैं और वही पार्लियामेंट के मेंबर हैं जो पाकिस्तान में होते हैं, तो इनमें कोई बड़ा फर्क नहीं। असल में बात ये होती है कि आपका कद काठ तब ऊपर जाता है जब आप अवाम के लिए कुछ करते हैं। चलो पाकिस्तान में तो फिर वो नालियां सड़कें और लोगों को कुछ ना कुछ तो बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, यहाँ तो ये भी नहीं होता। यहाँ पे तो एक मिनट के लिए इनके पास टाइम नहीं कि यहाँ आकर, मैं 2 साल हो गए हैं, 2 साल से मैं आपके रेडियो पे ये बिल्कुल बगैर किसी खौफ और खतरे के ये बात करता हूँ कि देखे कि पूरे डेनमार्क के अंदर बाव सर्विस जो है वो उलेनिंग के साथ जो है वो उलेनिंग डॉक्टरेट के साथ वो काम करते हैं। सिर्फ जो ये हमारा वेस्टाइन है और कोपेनहेगन, यहाँ के लोगों को नेस्ट विद वहाँ उलेनिंग डॉक्टरेट में खुद जाना पड़ता है, तो ये कितना बड़ा जुल्म है। ये क्यों नहीं लोग कहते कि हमारे लोगों को जो है ये सहूलत दे?
1: तो शाह साहब इससे पता है कि फिर पाकिस्तान की सियासत ज्यादा बेहतर है बनिस्बत डेनिश की सियासत से।
2: जी एक दफा फिर कहिएगा।
1: तो शाह साहब इससे तो फिर साबित हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में ज्यादा सहूलियात है, डेनिश सियासत में सहूलियात नहीं है।
2: नहीं जी, डेनिश सियासत में सहूलियात हैं अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, आप अपने आप को सही सियासत में देखें। सियासत जो है आप जब आवाम के लिए, दो किस्म की सियासत है, एक है क्रिमिनल सियासत जिसके अंदर आप कमाई करना चाहते हैं, आप अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, आप अपने आप का कद काठ ऊंचा करना चाहते हैं। एक सियासत होती है ईमान की जिसके पीछे आप अपने ईमान को पुख्ता करते हैं, आवाम के लिए काम करते हैं, आप अपने मुखालफिन जो है उनके लिए काम करते हैं, क्यों वो उन्होंने बेशक आपको वोट दिया या नहीं वोट दिया, आपको डाउट हो सकता है कि उन्होंने मुझे वोट डाला या नहीं वोट डाला, लेकिन सब लोग जो होते हैं जो आपके एरिया में रह रहे हैं आप उनके लिए काम करते हैं, तो ये चीजें जहाँ सियासत में।
1: तो शाह साहब चले आते हैं ये टेक्सा की तरफ, ये गाड़ियां जो मैं देख रहा हूँ कि वो इक्की दुक्की गाड़ी जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं, जो नई कंपनी आ रही है, नए ड्राइवर आ रहे हैं तो नए मुलाजम आ रहे हैं। शाह साहब इसमें कोई दो रोशनी डालें इस पर।
2: ये बिल्कुल, ये ग्रीन जो वियतनाम की टैक्सियां हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा बंदे जो है वो एनसेट कर लिए, रख लिए हैं ड्राइवर। और देखें, बेशक ये कानून की खिलाफवर्जी है कि ये 34-35 हज़ार जो मिनिमम, जो इन्होंने 47,000, अगर आप गूगल करें ना तो डेनमार्क ने जो दुनिया को बताया हुआ है वो ये है कि यहाँ पे कम से कम जो तनख्वाह है महीने की वो 47,000 करोड़ है। हालांकि ये बिल्कुल सरासर झूठ है, इसलिए डेनमार्क को टॉप प्रायोरिटी मिलती है। यहाँ पे 29,000 करोड़ पे जो है ये लोगों को इन्होंने एनसेट किया, लेकिन उसके साथ कुछ उन्होंने लोजमात ये रखे हैं कि आपको हम जो है थोड़ा सा बोनस वगैरह भी देंगे तो जो है। लेकिन ये जो 29,000 की जॉब है, ये इसके अंदर आपने 5-6 घंटे काम करना है उसके अंदर, क्योंकि आपको काफी पोस्ट भी होगा, आपको फोकस पोस्ट भी होगा आपके लिए, तो वो 7.5 घंटे की, जो 7 घंटे की ड्यूटी है, क्योंकि आपने वापस जाके उनके दफ्तर में जहाँ उनका लैग है, जहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, वहां आपने खड़ी करनी है, तो आपको 7.5 घंटे के अंदर ये सारे मरहले तय करने हैं। तो अब वो सबसे बेहतर है कि बनिस्बत के आप, जैसे कि कल मैंने ये बताया था कि एक आदमी अपना रॉसकिल्डे से 552 करोड़ के अंदर जो है वो रॉसकिल्डे से लुफ्तावन, कोपेनहेगन लुफ्तावन में टूर लेके गया, और वो भी म्यूचुअल चीज के अंदर। तो इससे बड़ी ज्यादती क्या है? अगर वो वोन मैन है तो उसको तो 100 करोड़ से भी कम पैसा जो है वो बचत हुई, क्योंकि लागत ही इतनी ज्यादा है टैक्सियों की जो आप ले रहे हैं। तो इस कंपनी के अंदर जो है ना, मैं उनका मशीर हूँ ना मैं उनकी तशरीह कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि इसने जो है वेकअप कॉल दे दी है, और अब लोगों को प्रॉब्लम नजर आ रही है। जब हम बात
1: तो
2: करते
1: शाह साहब,
2: थे कि
1: इसका
2: खुदा
1: फायदा
2: रहा
1: मालकान को होगा या पब्लिक को होगा?
2: इसका कंपनियों को फायदा है और पब्लिक को भी फायदा है। पब्लिक को ये है कि कल एक आया हुआ था पेपर में, बल्कि आज भी आया हुआ था, मैंने आपको कटिंग भेजी ताकि कोई बंदा एतराज करे तो आप उसको वो भेज सकते हैं। उसके अंदर ये है कि अब आप हेलसिंगोर के अंदर आप खुद जाके टैक्सी को वेल कर सकते हैं, कौन सी टैक्सी आपकी नजर में बहुत सस्ती है और आप उसके अंदर बैठ के जाना चाहते हैं। आप पहली दो तीन आगे ही होता था, जो पहली गाड़ी है आप उसी को, उसी में बैठ के जाएं, लेकिन अब जो टैक्सी स्टैंड पे खड़ी है, टैक्सी है स्टेशन पे खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, तो वहां पे आप चूज कर सकते हैं, आप वैल्यू कर सकते हैं कि इस टैक्सी में। तो अब लोग अगर ये कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ जी, एक कहता है जी मैं 2,000 में जाना चाहता हूँ, मैं पीछे से आवाज लगाता हूँ जी मैं 1,500 में, मेरे पीछे कोई खड़ा वो कहता है जी मैं 1,000 में, तो वो बंदा जो है वो 1,000 वाले की तरफ चला जाएगा, वो लेकर टूर चला जाएगा। अब कंपनियों ने ये जो काम किया है, इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत ये है कि इस वक्त 97% पूरे डेनमार्क के अंदर 97% फॉरनर टैक्सी ड्राइवर चला रहे हैं, कैब ओनर भी फॉरनर्स हैं। आप यूलैंड में चले जाए, फ्यून में चले जाए, आपको हर जगह फॉरनर नजर आएगा। और ये जो फॉरनर्स जो हैं, इनके इनसे क्या होगा कल को, ये सारे के सारे जब ये कंपनियां जो हैं ये स्कूलों के बच्चों को ड्राइव करना शुरू कर देंगी, ये इन्होंने तो पैसा कमाना है, ये तो अमीर आदमी है, इनको तो परवाह नहीं। इन्होंने कहना जी ठीक है हम बच्चा ड्राइवर भेज देते हैं, ड्राइवर को क्या, उसको उसने तो वेज लेनी है, उसको तो टूर का, उसकी तो उसका मसला ये नहीं कि उसको अब 500 का 1,000 का टूर मिले, 2,000 का टूर मिले,
1: चलें
2: नहीं।
1: टूर का मसला नहीं है शाह साहब, हमें शायद नसीम ने भी ज्वाइन किया है, इनसे भी बात करते हैं, चूंकि ये भी इस पर बोलते रहते हैं, इस पर भी बात करते हैं, तो शायद आपको भी एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
3: जी अस्सलाम वालेकुम जी राजा साहब, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ अगर आपके पास 5-6 मिनट हैं। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि राजा साहब ये होना था, अब हम इसके ऊपर तकरीरें करें, डिबेटें करें, क्योंकि हमारी कौम का ये अलमिया है जो चीज हो जाए उसके ऊपर हम जो है ना तकरीरें करते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अभी क्या कहते हैं, शाह साहब ने फरमाया कि 97% या मैं तो बल्कि 99% कहूंगा, 99.5% यानी कि 99.5% इसके ऊपर फॉरनर्स जो हैं वो डेनमार्क में हो जाएं या यूरोप में हो जाएं, खासकर डेनमार्क की चलो बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डेनमार्क के जो फॉरनर्स हैं वो टैक्सियों के ऊपर हैं, कोपेनहेगन से लेके पूरे यूलैंड तक, यूलैंड से लेके पूरे डेनमार्क तक। तो हम कोपेनहेगन की बात करते हैं तो कोपेनहेगन में भी 99% ही है, और उसके अंदर तकरीबन तकरीबन 76% या 75% पाकिस्तानी है, बाकी दूसरे गैर मुल्की हैं। पहले पहले गैर मुल्की और जो पाकिस्तानी थे ये भी गैर मुल्की हैं। तो दूसरी जो कौमें थी जिसमें अरबी, तुर्की, कुर्द और जो दूसरे बहुत से वो भी थे इसके अंदर, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ गए इसको। बहुत से लोग छोड़ गए हैं, बहुत से यंग लोग नहीं आ रहे। बहुत से लोग जो यंग अभी आए हैं, जो नए नए आए हैं टैक्सी के अंदर, बिल्कुल यंग जो डेनिश बोलते हैं, वो सारे टैक्सी चला रहे हैं, वो सारे उबर चला रहे हैं, उबर ब्लैक चला रहे हैं। सबको पता है, शाह साहब को भी पता है। इसमें इसमें आप ये नहीं है कि मैं किसी को कोई टीज कर रहा हूँ या मैं किसी को बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये इसको आप समझें कि इसका मैं मतलब क्या ले रहा हूँ। तो उसको नए जो आए हैं वो ज्यादातर जो फिर और जो यंग आ रहे हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तानी। अब आ जाए, मैं क्योंकि पूरी तमीज इसलिए बांध रहा हूँ ताकि आपको पूरा पूरी समझ आ जाए। अब आ जाए एस एम ग्रीन ने तो एक पैसा फेंका है उन्होंने। एक ये भी चीजें मंगवाई हैं जो हमारे अपने लोग, हमारे जो हैं जिनको पता कोई से बात का नहीं है, जो बहुत से इधर बाजार में चला रहे हैं टैक्सी और ये बातें करते हैं जी, वो कुछ नहीं, ये हर बात को यही लेते हैं, सीरियस नहीं लेते किसी बात को, वो कुछ नहीं होता, छोड़ो बड़ा। इन्होंने उबर आई थी तब भी यही कहा था, इतना इनको इन्फॉर्मेशन से दूर है हर चीज से। अगलों ने आपके यहाँ आके, जबकि आप लोग को कि ये मार्केट थी, ये जो टैक्सी वॉनमन पाकिस्तानी थे सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरे गैर मुल्की थे, इन्होंने ना कोई अपनी फ्रेनिंग बनाई मजबूत, यानी कि कोई यूनियन मजबूत, जैसे डेनिश लोग पहले होते थे उन्होंने बनाई हुई थी, उसके ऊपर पूरा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था कि बाहर से कोई ना आ जाए। और ये बात मैं आपको 2013-14 की बता रहा हूँ, जब उबर ने पहली दफा पड़ाव रखा था डेनमार्क में, तो तब डेनिश वॉनमैन ने जो स्टैग थी उन्होंने, जबकि तब पक्षनी भी वोनमन जो थे डेनिशों से ऊपर ही थे तब भी, लेकिन फिर भी डेनिश वोनमन काफी थे, उन्होंने ये अपनी कोशिशों से के जरिए इसको यहाँ से भगा दिया और ये यहाँ से चले गया उबर। और उसके बाद यार ये बात है, 10 साल फिर आगे, 10 साल बाद वो इसलिए आए कि उन ये डेनिश लोगों की, डेनिश ही पीछे जो सिस्टम है, डेनिश मैं यहाँ पर जिक्र नहीं भी करना चाहता, उन्होंने इसको तरीके के साथ ले आए जहां उनको देखा कि इसके ऊपर फॉरनरों का गलबा आ गया है और वो किसी करवट नहीं बदल रहा, और बस एक ही जगह वो चल रहे हैं, ना उनकी कोई यूनियन है, ना स्टैग यूनियन, कुछ भी नहीं है। वो उनको पता था कोई चीज नहीं इन्होंने बनाई हुई, सिर्फ ये अपना अपना सोचते थे सारे ही। मैं खाली पक्षियों की बात नहीं कर रहा, इसमें दूसरे भी अब आ जाते हैं, सबको ले लेता हूँ। अपना अपना सोचते थे, अपनी अपनी दिहाड़ी लगा के अपना अपना करके, तो कहते थे हमें क्या लगे, जारी बात है, बाहर से आके किसी ने वो कहते हैं कब्जा कर लिया है, और वो उन्होंने उन्होंने वो करना था, और वो क्या कहते हैं वो आके वो बिजनेस कर रहे हैं, पहले ऊपर ने किया है, अब एसएम आ गई है। 600 गाड़ियां का सवाल नहीं है कि 600 गाड़ियां आई हैं वो 1000 भी लेके आ सकते हैं, और ये भी नहीं है सवाल कि वो कामयाब होते हैं कि नहीं होते, उनके पास पैसा है, उन्होंने रखा है इसके ऊपर 30,000 कर दिया। अब वो उन्होंने अपने पहले 26,000 से शुरू हुए हैं, 30,000 फर्स्ट उतना है, पहले ये छोड़ा गया मार्केट में, क्योंकि मैं तो वहां गया हूँ और भी दोस्त किए हैं, मैंने वहां जाके पूरा वो पढ़ा है, बात की है, और वाकई ऐसा ही है। 30,000 उन्होंने तनख्वाह देनी है और कस्टमर उन्होंने देना है, उनके पास अभी है या नहीं है, आपने अपने 8 घंटे या 7.5 घंटे जो आपके हैं दिन के, वो आपने लगाने हैं, उसके बाद जो है ना वो आपको 30,000 मिलेगा। और उसके पास कुछ ज्यादा काम कर रहा है या एक्स्ट्रा काम कर रहा है वो उसके कहते हैं डेनिश में ते ओनी, वो बात की बात है। अभी वो 30,000 दे रहे हैं, कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये कोई ऐसे नहीं है लोगों, वो जो बड़े बड़े जिन जो बड़े बड़े फंड है, ये फंड होते हैं, ये बड़े बड़े मीर लोग होते हैं, इनके पास ये पैसा नहीं सिर्फ होता, वो कई बिजनेस शुरू किए थे, बिलियनियर होते हैं डॉलरों में। और ये यहाँ एशिया में, ये एशिया से आए हैं, एशिया में ये ऑलरेडी चल रहा है, बड़ा पैसा है इनके पास, उन्होंने इधर फेंका है, यूरोप में फेंका है पैसा, यूरोप के कुछ मुल्कों में, और वो उन्होंने 100% कामयाब होना है। उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उन्होंने डेनमार्क से क्या कहते हैं जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो सारी डेनिश है वो तकरीबन सारी वो ली है, उन्होंने पूरा कानून पढ़ा है, पूरा उसका पहले सर्च किया है कैसे करना है क्या करना है, वो सारा करके होमवर्क, उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ियां जो उनकी अपनी है वो यहाँ पर लॉन्च की हैं। और 600 गाड़ियां या 800 गाड़ियां ये कोई कोई कोई भी है वो मैटर नहीं है, लेकिन वो उनको पता है, उन्होंने ये एक मार्जिन रखा है कि हमने ये पाया तक मील तक 6 महीने में पहुंचाना या साल तक। वो हर हर हर हर उस क्या कहते हैं जो बड़ी कंपनी को शुरू करती है ना, उन्होंने एक मार्जिन रखा होता है, इसके अंदर हमने ये सारा कुछ करना है। और फिर वो, और ये भी कहा गया है, नहीं नहीं जी ये ऊबर उसका मुकाबला है यार, जो भी है आप, और मैं आपको ये भी बता दूं, एस एम ग्रीन खुद ही वॉनमैन है, ऊबर वॉनमैन नहीं है, ऊबर में आप वॉनमैन खुद बनते हो, उनका ऐप है। ऐप और

0: अब उन्होंने ये काम करना है और यहां से आपकी जो बालादस्ती है, जिसको मैं कह दूं, मैं ये जरादारी नहीं कहूंगा, बालादस्ती जो थी हमारी वॉन मनी की, वो आपकी इसको ले पॉइंट को मैं, और ड्राइवरों का कुछ नहीं जाएगा, वहां पर जो ड्राइवर काम करेगा वो फेस्ट लोन पे काम करेगा, उसको तो फायदा है। कस्टमरों की तो बात जो कातिल शास वो तो है ही है, कस्टमर को फायदा है वो तो होना ही है, वो तो ऑलरेडी उनको पहुंच रहा है उबर से भी और बोल्ट से भी। अब इनका मुकाबला होगा वो एक लहदा चीज है, ये प्राइसें कम करेंगे प्राइसें करेंगे, लेकिन ड्राइवर जो उसमें चला रहा है जाके, वो वहां पर वॉनमन आपके खत्म हो जाएंगे,
1: खत्म हो जाएंगे शायद। जरा
0: वो वॉनमन
1: से पहले शाह अपना कह रहे हैं, शायद ये गाड़ियां शहर में पार्क कहाँ होंगी, ट्रैफिक का निजाम कैसे चलेगा, इतनी गाड़ियां आ जाएंगी कोपेनहेगन में।
0: जी, मैं ये आपको बताता चलूं कि जब शख्स नेऊन थी 2018 तक, तो अब तब वो आपने ये बार का कहा इतनी ज्यादा गाड़ियों का, तब वो उनके कंट्रोल में थी, डैनिश उसके पीछे थे, डैनिश बड़े वॉनमन पीछे थे, स्टैक फ्रेनिंग थी वॉनमनों की, एक तो ये क्लियर हो गया। तब गाड़ियां आपकी होती थी 1500 से लेकर 1800 तक रोड के ऊपर, वो उसके मतलब था कि वो हर साल या 2 साल या साल के बाद स्टैटिस्टिक देखते थे कि कितने कस्टमरों की में जरूरत है। और उस वक्त शाह साहब को पता था, जब वो चलाते थे तो वो एक ग्रीन रंग का एक बिलिंग नंबर होता था, वो आपको मिलता था और क्यू में आप लगते थे, और तब ये हमारे पक्ष से नहीं, हम लोग रोते थे यार सन बिलिंग नहीं मिलता, वो पागल थे, क्यू में लगे थे, बिलिंग क्यों दें, बिलिंग इसलिए नहीं वो देते थे कि आपको जरूरत नहीं है, भी रोड के ऊपर गाड़ियां ज्यादा हो जाएंगी। जब आप देखें इस टाइम अभी उसकी उसको ग्रीन को छोड़ दें, वो भी 10-15-20 गाड़ियां रोड पे अभी आई हैं अभी 2-4 दिन पहले, और पहले उसको भी पीछे रखें, इस टाइम 4300 गड्डी है तुहाडी कोपेनहेगन दे विच, डैन टैक्सी उबर और ड्राइवर और आमा और ये बोल्ट और ये सारा कुछ, ये अपना खिपना चक्स मिला के आपकी तकरीबन 4300 गड्डी है, और हर रोज मुंशेरिंग होके आपकी 10 से 15 गाड़ियां रोड के ऊपर आ रही है, क्योंकि वो ओपन कर दिया हुआ है, और उसमें ज्यादातर, फिर मैं कहूंगा, ज्यादातर पाकिस्तानी यंग जनरेशन है जो आ रही है। ये किस काम पे लगा दी है आप यार, डनवारक में पढ़े लिखे लोग हैं, ये यंग है, चलो शाह साहब की समझ आती है मुझे, चलो मुझे किसी और 60 साल के या 50 साल के बंदे की जो काम कर रहा है वो भी समझ आती है। मैं ये अब तंज नहीं कर रहा, मैं ये अपनी कौम को बता रहा हूँ कि यंग जो लोग हैं कि ये कोई फ्यूचर नहीं है अब आपका, देख लिया अब आपने, ये अब ग्रीन एसएम भी आ गई है, उसके नीचे लग के आप काम करेंगे, टैक्सी चलाएंगे, जो बड़े चला रहे हैं ठीक है, उनके पास कोई वेल नहीं है, कोई पेंशनिस्ट चला रहा है कोई वेल नहीं है, लेकिन ये जो यंग हमारा तबका जो देखा है, शाह साहब ने भी देखा है, मुझे भी पता है, शाह साहब को भी पता है, आया है, मैं देख के हैरान हो गया, मैं यार ये डैनिश बोल रहा है, अच्छा भला लड़का है 24-25 साल का, फुल काम कर रहा है, क्या हो गया इनको। उसके बरक्स यहाँ पर आपके बंगाली हैं, उसके बरक्स आपके इंडियंस हैं, यहाँ पर सिख है कम्युनिटी, श्रीलंकन है, नो वे, कोई नहीं, जो पहले थे चंद, शाह साहब को पता है जो चला रहे हैं 20-25 साल से, वो कुछ हैं कुछ चले गए हैं, और ये नया कोई नहीं आया, उस जो दूसरी जो ओवरसीज हैं, जो दूसरे मुल्कों के, और उसमें बालकन के और मैकडोन, योगोस्लाविया और मैकडोन, ये बहुत ज्यादा थे चलाते, ये भी नए कोई नहीं आए, ये भी निकल गए हैं, लेकिन हमारे तो कहते हैं कि असी ना टैक्सी छटनी है ना असी पिज्जा छटना है, यार कोई आगे बढ़ो, कोई पाकिस्तान को भी कोई नाम हो, नाम ही कोई नहीं है आपका कहीं भी, डेनमार्क में तो फिलहाल कोई नाम नहीं है किसी का,
1: लेकिन इसमें यह भी शामिल करना था पाकिस्तानी सियासत भी नहीं छेड़नी।
0: वो तो चलो एक वो पाकिस्तानी सियासत भी नहीं छोड़नी, ये भी ठीक हो गया, चलो शाह साहब को मौका दें, उनको भी जाना होगा।
1: आपने शायद की बातें सुनी, उसने बड़े तफसील से बातें बताई, आप करते भी रहते हैं, आप क्या कहेंगे शाह साहब?
2: जी मैं तो बिल्कुल बहुत खुश हूँ शायद की बातें सुन के, कि मेरे बात अगर कोई यहाँ पे अपनी आवाम को कोई एजुकेट कर रहा है तो वो ये बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। देखें अब फ्यूचर क्या हो गया, हम फ्यूचर देखेंगे, फ्यूचर ये हो गया है कि जैसे ग्रीन टैक्सी ने ड्राइवर जिन जिनको शौक है गाड़ी चलाने का उनको फिक्स पे कर दिया है। अब जब ये फिक्स पे हो गया तो इसमें ड्राइवर को वाकई ही बहुत ज्यादा सहूलतें मिलेंगी, लेकिन जो जो फ्यूचर डार्क हुआ है वो हुआ है उनका, जिन्होंने वॉन में अपने आप को वॉनमैन समझते हैं लेकिन वो वॉनमैन नहीं है, उनको एक ट्रिलैल से एक इजाजतनामा मिला हुआ है, जैसे कि हमने 10,000 दफा बताया है कि जैसे आप इंश्योरेंस ट्रिलैल से लेते हैं कि भाई मुझे नंबर प्लेट चाहिए, मैं आपके पास इंश्योर्ड हुआ, और जिस दिन आपकी इंश्योरेंस खत्म हो जाती है तो वो

0: इसको क्या देते हैं, उसी वक्त आपकी गाड़ी को रोक कर वो नंबर प्लेट उतार देते हैं, आपका ट्रेलांसर खत्म हो जाता है। ये जो नया उबर कानून बना था, शायद मैं आपके लिए भी ये आपको बात बता दूं कि मैं इस चीज के मुखालिफ था कि उबर यहाँ से बाहर जाए। मैं ये कहता था कि उबर को यहाँ रहना चाहिए। अब वो आ गए हैं, ये अमीर आदमी है, इन्होंने सियासतदानों को भी खरीद लिया, इन्होंने मार्केट को खरीद लिया है, तो अब इनको रहने दें, इनकी मुखालफत ना करें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी वोमेनशिप जो है, जो तो आपके पास जैसे लंदन में ब्लैक कैब चल रही है, जर्मनी में चल रही है ऐसी, तो मैंने कहा वो उसके साथ उबर भी चल रही है, दूसरी कंपनियां भी चल रही है, तो आप ऐसा करें अपनी वोमेनशिप जो है पुरानी, इसको रखें, और बकायदा कम्यून जैसे हुए वो नेवन देती थी, हुए वो नेवन रहे, और वो जो है वो जो बिविलिंग्स है या वो टिलियाल्स जो है वो इशू करें। लेकिन इन्होंने ओपन मार्केट कर दी, हम लोग लालच में आए कि हम तो बहुत ज्यादा गाड़ियां रखेंगे, उनको बेचेंगे और इस तरह, लेकिन आगे से उल्टी जूती जो है वो हमारे चेहरे पे पड़ गया। मैं 50 साल से ऊपर मैंने टैक्सी चलाई है डेनमार्क के अंदर, और मैं तो इस चीज से दुखी हूं कि उस वक्त एक वोनमैन जो था, एक कैब ऑनर जो था, उसकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट थी स्वाय अदालत के, उनका वो ग्रीन नंबर प्लेट कोई फ्यान नहीं कर सकता था। अब जो है ये सिर्फ जो जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं वो जिस वक्त दिल चाहे बंद कर दें, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये डैनिश कानून है। तो सबसे बड़ी शायद इन्होंने ये बात की कि जब ऊबर को इन्होंने कहा कि आप उलॉलिट हैं और आप यहाँ से चले जाएं, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, तो उस वक्त उबर जो थी वो ड्राइवर के रंग में यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही थी, और उसके बाद दूसरी सेल्स के भी इसी तरीके से ऐप पे काम करना शुरू कर दिया था। ये इनकी मन पर इन्होंने क्या किया कि ट्रैफिक मिनिस्ट्री ने उसी दिन जिस दिन उबर को बैन किया गया, उसका हाइब्रो प्रेस पे इन्होंने कंट्रोल जो है को बंद किया, उसका जो डायरेक्टर था वो ट्रैफिक मिनिस्ट्री में उसने जॉब ले ली, और वो उसको डायरेक्टर टिलस्यून, ट्रैफिक टिलस्यून का जो था उसको अपना डायरेक्टर बना दिया गया। उसके नीचे ये सारे लॉस वोन और ये वाव वोन और ये सारी टैक्सी सेल्स के उसके नीचे आती थी। उसने कानून ही ऐसा बनाया, फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको 2019 से लेके 2023 31 दिसंबर 2023 तक हम आपको ये देते हैं कि अगर आप वॉनमैनों को इस कानून के को पसंद नहीं तो आप आए हमारे साथ बात करें, हम इसको चेंज कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें यह कानून ज्यादा मंजूर है, क्योंकि अब हर कोई आदमी जो है वो टैक्सी ले सकता है, तो उसकी वजूहत जो है वो अब सामने आ गई है। और अब बिल्कुल आपकी बात सही है, यहाँ पे मैं तो अपने जितने पुराने वॉनमैन चल रहे हैं या नए यंगस्टर, उनको ये कहूंगा कि खुदा रा मत बने बोनमैन, बल्कि आपको अगर फास्ट जॉब मिलती है, जो शोफर मिलती है, तो वो आपके लिए ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड अप हुई, नए कानून में आप फंस जाएंगे और वो आपकी टैक्सी भी जब्त कर देगा। बहुत सारे बोनमैनों की यहाँ टैक्सी जब्त भी हुई है, तो वो आपको लॉस होगा, आपको इकोनॉमिकली लॉस होगा। यहाँ आपने शौक पूरा करना है, जाए फिक्स तनख्वाह ले, अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो वो आपको बोनस भी देंगे। तो मेरा ख्याल में कि ये जो ग्रीन टैक्सी आई है, मैं इसकी हमायत तो नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे ड्राइवरों के लिए बहुत ही महफूज है
1: बहुत ही
0: और
1: मुफीद है। चलें
0: फिक्स
1: शाह साहब, आ
0: रेलिटी
1: गया
0: है।
1: मैं मियां मुनीर साहब, बड़ा तजुर्बा है, एक ब्रांच के ये दो बार जो है वो चेयरमैन रहे, सदर रहे, और उनको वसी तजुर्बा है पिछले कितने दहाइयों से। मियां साहब, आपको अदर आपकी आवाज़ पर एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं, क्योंकि आप यंग सियासतदान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और इस फील्ड को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं।
2: जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया रा साहब, सबको बहुत बहुत सलाम, आपको,
0: वालेकुम
2: टीम
0: सलाम।
2: को, सुनने वालों को। मेरे मोहतरम शाह साहब, मैं पिछले कोई आधा मिनट मिनट सुन रहा हूँ इनकी गुफ्तगू, आपका मौजू मैं समझ गया हूँ स्टार्ट में। दोबारा रा साहब को बहुत बहुत सलाम, अल्लाह ताला सबको खुश रखे।
1: शुक्रिया मियाँ साहब, आपका बड़ा
2: वालेकुम
1: वसी
2: साहब,
1: तजुर्बा इस फील्ड में, नई एक आ गई है टैक्सी, इसका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ड्राइवर को फ़ायदा होगा, पब्लिक को फ़ायदा होगा, शहर में ये गाड़ियां आ जाएंगी, पार्किंग के मसाइल होंगे, क्या ये जो जॉब मिलेंगे ये पक्के जॉब होंगे, ये ना हो कि दो दिन किया तीसरे दिन निकाल दिया। तो मियाँ साहब, ये जब चीज़ें आती हैं, ड्राइवर अपनी टैक्सी छोड़कर मुलाजमत इख्तियार करता है, तो बहुत सारे हकूक भी होते हैं और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जी मियाँ साहब, आप बताएं हमारे सामने नाज़रीन को।
2: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, बसेस, जो भी पुराने ज़माने की चीज़ें, एक टांगा से लेकर और अब जो चीज़ों में तब्दीली आई है, इतना मॉडर्न ज़माना, हमने खुद टैक्सी फील्ड में जो देखा शाह साहब ने, मैंने, कि किस तरह की गाड़ियां थी, कौन से उसमें सिस्टम थे, रेडियो सिस्टम था, डिजिटल सारा कुछ है, आईटी, कंप्यूटर, सारी चीजें, आप अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारी सहूलतें भी हम इंसानों के लिए। अब टैक्सी की जो बात कर रहे हैं, टैक्सी एक जरूरत है और चलती आ रही है और चलती रहनी है, इसमें वो दूसरी कोई बात ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट, इंसान एक दूसरे के बहुत नजदीक हो चुका है, कभी भी इतनी टैक्सी नहीं इस्तेमाल होती थी जितनी अब होती है, कभी भी इतना क्या कहते हैं आप ट्रेवलिंग नहीं होती थी जितनी आज। अगर आप देखें फिगर जो आप पढ़े किसी भी एयरपोर्ट के, कोपेनहेगन एयरपोर्ट के, तो एक एवरी मंथ एवरी ईयर आपको उसमें बहुत बड़ा इजाफा मिल रहा है, इसी तरह टैक्सी इस्तेमाल करने वालों में। डेनमार्क में मैं बिल्कुल इस फील्ड में बहुत पुराना हूँ, शाह साहब मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे बुजुर्ग भी हैं, मैंने पहले दिन से इनके साथ टैक्सी शुरू की थी। और टैक्सी में यानी के जैसे मैंने पहले अर्ज की कि कितनी तब्दीलियां आई, बहरहाल इन जो फिगर की हम बात करेंगे, नया जैसे एक ग्रुप आया उसकी बात करेंगे, तो फिर इस तरह ही है कि कोपेनहेगन में किसी जमाने में 1800 और कभी 2100, फिर 1800, फिर 1850, इस फिगर में बहुत अरसा टैक्सीज रही। वो जरूरत थी, वो कंट्रोल था, वो निजाम था, ये 13 कमूनों जो हैं इनका। फिर वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीली आई, आज से कोई 5-7 साल पहले यहाँ ऊबर आई, या 4-5 साल पहले। डेनमार्क का एक टैक्सी सिस्टम है, एक कानून है, पहले भी इस पर बात हुई है और आज भी है। अब आज भी EU से हटकर, बाकी लोगों से या मुल्कों से हटकर, डेनमार्क का एक अपना टैक्सी लॉ है, जो उसे फॉलो करे उसमें तब्दीलियां आई हैं, जो उसे फॉलो करेगा वही यहाँ टैक्सी चला सकता है, और उसमें कुछ बिल्कुल कंडीशंस हैं। लेकिन जो हुआ ये है, मैं अनफॉर्चुनेट कहूंगा, बदकिस्मती से उसमें जो तब्दीली आई, उसमें ये मसलन ऊबर यहाँ आ गई, बोल्ट यहाँ आ गई, अब ये नई जो कंपनी आई इसकी हम बात करेंगे, इसकी वजह से अब हम देख रहे हैं। मैं कल की बात करता हूँ, मैंने कल, मैं यानी के कल शाम को टैक्सी मैंने चलाई है, मैंने देखा है कि रोड पर जब इंसान हो उस फील्ड का हो, तो फिर वो देखता है कि क्या हो रहा, यानी कि सर्विस किस तरह दी जा रही है। और शाह साहब आप देखें कि हुवाक्स गेट उसे कहते हैं, कफी भिक्षा, उसके सामने मैं हूँ, गुजर रहा हूँ, तो दो तुर्की खड़े हैं एक लाइन में, जनाब इस तरह हो गई, निकल गई मुंह से बात, कोई भी हो सकता था, उन्होंने मुझे रोका, तो एक बंदा जो उनके साथ जाना चाहता था वो मुझे कहते हैं कद्दश आप ले जाओ, इसलिए कि वो छोटा टूर था, इस तरह नहीं होता था पहले। ये जो चीजें मैंने इसलिए मिसाल दी कि अब वो लोग जो ना सर्विस माइंड थे, ना उन्हें वो उस कानून या उस निजाम को समझते हैं या समझना चाहते हैं, अब वो फील्ड में आ गए, अफरा तफरी फैल गई है। जिन लोगों ने इसे एज एक बिजनेस, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी, एक अच्छा निजाम बनाया था इस मुल्क के अंदर, उन चीजों को वायलेशन भी की जा रही है, उनमें बहुत सारा अपना भी वो नुकसान कर रहे हैं और दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये यहाँ के पॉलिटिशियन ने, आप बिल्कुल बात करते रहे, मैं सुनता रहा, मैं भी जानता था, मेरे पर एक जिम्मेदारी भी रही, हमने देखा क کہ یعنی کہ یہاں جس طریقے سے یہ دوسری کمپنیز آئی ہیں ان کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں. وہ پیپروں پر تو وہ پوری کر رہے ہیں جو یہاں کا وہ ہمارا ٹیکسی لو ہے, جس کے لیے ڈرائیور کے لیے کنڈیشنز ہیں اور ون مین بننے کے لیے. لیکن ان سائڈ میں جانتا ہوں کہ اس میں بہت ساری دو نمبری ہو رہی ہے, وائلیشن ہو رہی ہے, غلط ہو رہا ہے. ڈرائیور سروس مین نہیں ہے موسٹ آف دم, میں کہوں گا تھوڑے نہیں بہت سارے. ابھی ہم نے دیکھا روسکل فیسٹیول تھا, میں بھی فیلڈ میں تھا کہ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر, پھر میں مثال اپنی دیتا ہوں کہ ایک بندہ میرے پاس آیا مجھ سے 11 لوگوں سے پہلے جا کر, تھوڑا سا پاج تھا سٹک کے ساتھ چلتا تھا, پہلے 11 لوگوں نے اسے بٹھایا نہیں گاڑی کے اندر اپنی ٹیکسی کے اندر, اس لیے کہ اس نے وہاں سے روسکیل اسٹیشن پر جانا تھا جو لیس دین 100 کرون کا ٹور تھا. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہے وہ کہ جو بے ترتیبہ اور بغیر کوئی یعنی کہ سسٹم کو صحیح مینوں میں وہ آرگنائز کرنے کی یا بنانے کی کوشش یا ایک سلسلہ تھا, اس سے ہٹ کر چیزیں چلیں گی.
1: اب اس کا حل بتائیں.
2: اس کا حل یہ ہے کہ ان چیزوں میں یعنی کہ ہم تو اپنے کمپنی کے اندر بھی بات کر رہے ہیں, ٹیکس آف یہ کا فیمس ہاؤس جو ہے اس کی تو ایک کنڈیشن ہے ابھی تک. ڈرائیور جو ہے ایک تو اتھارٹی کی طرف سے آپ کو لائسنس جو لینا ہے, پھر وہ جو ہمارا فیو اکارڈ ہوتا ہے, اس کے بعد شاہ صاحب بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں, ہم خود ٹاکسا کے اندر ایک ٹیسٹ لیتے ہیں جس میں ہر ڈرائیور کو, اور ڈرائیور ہی پہلے بنتا ہے کوئی یا وانمین بننے سے پہلے بھی سیم کنڈیشن ہے کہ وہ یعنی کہ پہلے ٹیسٹ لیتا ہے جس میں زبان کا ہوتا ہے, کمیونیکیشن ضروری ہے, ہم ڈینمارک میں رہتے ہیں ڈینش آنی چاہیے, اور دوسرا جو ہے وہ اسے کورس کروایا جاتا ہے جسے کہ آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے, سروس دینی ہے. یہ تو تھی وہ, اور میں بھی اپنی کمپنی کی کوئی مشہوری کے لیے بات نہیں کر رہا, میں ڈینمارک کی بات کر رہا ہوں کہ سسٹم یہاں. اب میں جو تھوڑا سا سنا آدھا منٹ وہ تھا شاہ صاحب وہ گرین ایم ایس جو ہے ٹیکسی, اس کے بارے میں بات کر رہے تھے, اس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے, ایک نئی چیز ہے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت گاڑیاں آ چکی ہیں روڈ میں. میں پچھلے دن بھی کہا تھا میری ورک شاپ کی سیکنڈ گلی میں ان کی گاڑیاں تقریباً 250-300 گاڑی پارک ہے, فلی طور پر تیار ہے. ابھی انہیں ڈرائیوروں کی کمی ہے, ڈرائیور وہ اب پائپ لائن میں ہوں گے تو پھر ہی وہ آئیں گے نا جو مطلب گاڑی چلائیں گے ان کی, پر وہ کافی کوشش میں ہیں آ جائیں گی, کوشش ان کی بہت ساری ہے کہ, اور انہوں نے تنخواہ وغیرہ فکس اور وہ اچھی اماؤنٹ ہے, میں بالکل سمجھتا ہوں سارا سسٹم. لیکن اوور آل یہ کیا ہوگا, اوبر کا کسی کو پتا تھا آج سے 20 سال پہلے اوبر شروع ہوئی امریکہ میں, وہ یورپ میں آ گئی, انگلینڈ میں اس نے یورپ میں سب سے پہلے آئے, آہستہ آہستہ پھر آج یعنی کہ تقریباً آلموسٹ ہر ملک میں چل رہی ہے. اس کے پیچھے کون ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا امیر آدمی, ایک بہت بڑا گروپ ہے, انہوں نے سسٹم کو مارکیٹ کو کیچر کر لیا. آہستہ آہستہ یعنی کہ ہوگا یہی کہ وہ ساری سسٹم کو کیچر کر لیں گے, پھر وہ سروس جو میں نے کہہ دی ہے پہلے جو اس وقت چل رہی ہیں, اور پھر یعنی کہ وہ مارکیٹ کو کیچر کر کے پھر نہ وہ ڈسکاؤنٹ رہے گا نہ وہ سروس رہے گی, صرف ایک ہی چیز رہے گی کہ کتنی گاڑیاں ہیں اور کتنی پرسنٹیج وہ لیں گے. جو آج وہ لیٹس ہے 15% لے رہے ہیں, کل کو وہی 25% لیں گے جو کسی اور نے نہیں پے کرنی, میں نے اور آپ نے ایز اے کسٹمر پے کرنی ہے. اسی طرح ایک بندہ جو ویتنام کا ہے جو بہت بڑا امیر آدمی ہے, ایسے دنیا میں لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے انہیں پتہ نہیں کہ کہاں کیا, اسے کسی نے آئیڈیا دیا ہے, اس نے جا کر ایک کمپنی سے ایک کورین کار خریدی ہے جو ڈینمارک کی ٹیکسی کا مطلب ہے کہ کار سائز جو کنڈیشن ہے وہ بھی ضروری ہے وہ پوری کرتی ہے. وہاں سے اس نے بہت بڑا فیئر لیا, پھر وہ سب سے پہلے اس نے شروع ہی, دنیا میں کہیں اور نہیں ہے یہ گرین ٹیکسی, اس نے ایک آئیڈیا اپنا بنایا کہ یورپ جو ہے اس کے اندر میں نے جانا, کیونکہ یورپ کا ایک سسٹم ہے यहाँ एक जिस तरह क्या कहते हैं, एक निज़ाम चलता है, निज़ाम जिंदगी चलता है, जिसके उस जिसकी जरूरी जरूरियात है, उस मार्केट में उसने जाना। वो हॉलैंड पहले गया, वहां के कानून जो है उसे इजाजत नहीं मिली, तो उसने जाहिर प्रोफेशनल तरीके से उसने पढ़ा कि ये डेनमार्क की चीजें जो है ना पूरी कर सकता हूँ, यहाँ जरूरत भी शायद है, तो उसने डेनमार्क आकर अप्लाई किया, उसे इजाजत मिल गई है। अब वो टैक्सी जो यहाँ 600 टैक्सी की तैयारी में फिलहाल, जहां तक मुझे पता है 400-350 गाड़ी जो है वो तैयार खड़ी है, जिनमें से अभी तो चांदे की चल रही है, हमें पता आ जाएंगी वो भी रोड पर।
1: लेकिन मियां साहब, ये कोपेनहेगन में होगी, पार्क कहाँ करेंगे?
2: पार्क जो टैक्सी पार्क होगी रोड पर नहीं चलेगी, वो तो बहुत बड़ा घाटा होगा, नुकसान होगा। इन्होंने चलना है टैक्सियां तो मतलब पार्क तो फिर यानी के थोड़ी देर के लिए वो घूमे फिर रहे हैं, जैसे हम घूमे फिर रहे हैं, टैक्सी स्टैंड है, बुकिंग हो रही है, होता ही है। राय साहब मैं आपकी बात समझ गया हूँ, चले आज आराम से बात कर लेते हैं। कोपेनहेगन टैक्सा की जो हमारी गाड़ी है ना, मसल 800 है, वो 800 पार्क नहीं होती, उनमें से लेट्स से 200 गाड़ी पार्क होती है मुख्तलिफ घरों में, जैसे मेरी बार खड़ी है, बाकी जो है वो रोड पर होती हैं, जिनमें से लेट्स से 60% जो है जो चलती हैं वो बिजी होती हैं, कस्टमर के साथ है। सो गाड़ी याद रखें, गाड़ी गाड़ी जहाज और वकील, वकील का कैलेंडर बिजी रहे, जहाज जो है ग्राउंड पर ना हो, और टैक्सी जो है वो कस्टमर के बाहर अगर खाली चलती हो तो नुकसान ही नुकसान है। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह दे सकता हूँ।
1: मियां साहब, ये तो कारोबारी बात होगी ना, लेकिन उसने दाएं बाएं मुड़ना भी है, तो बाकी ट्रैफिक भी होगी, ट्रैफिक के मसाइल कैसे होंगे?
2: देखें, ट्रैफिक के मसाइल तो फिर जिसे हम कहते थे कि कोपेनहेगन एक बहुत खूबसूरत शहर है, इसमें वो लंदन पेरिस की तरह बाकी मुल्कों की तरह ट्रैफिक नहीं होती, यहाँ यानी के बड़ा एक सिस्टम बड़ा मतलब इजी चल रहा है, माहौलियात सारी चीजें बड़ा कंट्रोल है, तो वो तो चीजें फिर जाहिर है ट्रैफिक में नहीं रहेंगी, बिजी आवर में तो बहुत ज्यादा आप भी हम महसूस करते हैं। तो बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो ये चीज़
1: चले, मियाँ साहब आपका वर्जन आ गया, शायद आपने बातें सुनी मियाँ साहब की, शाह साहब की भी, शाह साहब की भी तरह चलेंगे, क्लोज करेंगे बाद में वो, तो शायद आप किस तरह देख रहे हैं मियाँ साहब की बातों के, कोई और क्या इजाफा करेंगे आप?
3: राजा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आपका मुझे सवाल एक समझ आया थोड़ा सा मेरी विजन में, कि आपने कहा पार्किंग कहाँ होगी, वो छोड़ो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। एवेजो हॉलमन में जहाँ पर मियाँ साहब का दफ्तर है उसके करीब ही कैनल हॉलमन है, उधर है इनका बहुत बड़ा, जहाँ पर इनकी 600-400 या 350 गाड़ियां खड़ी हैं, इससे ज्यादा भी खड़ी हो सकती हैं, और उसके बाद जो इन्होंने जो प्राइवेट पार्किंग जो इनकी अपनी है वही उधर भी 200-300 गाड़ी खड़ी हो सकती है प्राइवेट, अंदर टैक्सी है, तो जैसे ग्रिल के अंदर जो फोर्ट बना हुआ है, जैसे फोर्ट खुलता है उसके बाद टैक्सी उनकी पार्क है, उधर पार्क करनी है आपने टैक्सी, जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी जिस ड्राइवर ने काम खत्म करना है गाड़ी उधर पार्क करनी है, और उसके बाद अपनी गाड़ी वहां से लाया होगा चला के ले जानी है, और स्टार्ट में ये भी है कि इफ द आउच हेल अगर उनके पास ड्राइवर नहीं है अभी गाड़ियों में, तो वो गाड़ी अपने घर लेके जा सकता है, वो उसका पहले उसे पूछना होगा घर किधर है, किस नवैयत का है, और वो उसकी जिम्मेदारी लेता है। ये सारी बातें उन्होंने की थी, और स्टार्ट में जो एक गाड़ी के ऊपर एक शोफेर है तो वो फिर गाड़ी घर लेके जा सकता है और गाड़ी को जो है ना उसकी देखभाल कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और उनकी बातों से मैं मुतफिक हूँ, जहरी बात है, वो इस ब्रांच से 40-45 सालों से मुंसलिक है, लेकिन ये जो चीजें हुई हैं ये आपकी मैं फिर बताऊंगा, 6 साल ने उनके खत्म होने के बाद हुई हैं, या इसको खत्म करवाया गया है जैसे भी करवाया गया है, अगर वो खत्म ना होती तो आज इसका रिजल्ट कुछ और होता। और उस वक्त मुझे याद है मेरे वाले साहब भी बताते थे, हम छोटे होते थे बताते थे कि यार वॉनमैन थे वो भी, तो वो बताते थे कि 1600 गाड़ियां हैं, 1800 गाड़ियां हैं, 1700 हैं, कभी ज्यादा से ज्यादा 2100 हुई, तो तब और उनके कंट्रोल में इसीलिए था कि आपकी 13 कमूने थी कि इस तरह का जो है जो जो वो गंद ना मच जाए। छोटा सा शहर है, छोटा सा मुल्क है, और आज देख लें 4,000 के करीब गाड़ियां हैं इस वक्त, और उसमें और गाड़ियां भी होने जा रही हैं, और ये सारा खुद कुछ बकायदा मनसूबे के तहत किया गया है। कैसे किया है ये अभी शाह साहब ने भी बताया कि उन्होंने शुरू से ही ये तैयार कर लिया था। जो बंदे थे इसके अंदर, डेनिश कुछ इन्वॉल्व, जैसे बताया कि हर मुल्क में हर चीज होती है, यहाँ पर जो है मिल बैठ के प्यार मोहब्बत से गैसा करा के, दो दो पांच पांच लाख के गैसे भी होते हैं, वो गैसे इस तरह के करवा के प्यार मोहब्बत के अंदर सारे काम लिए जाते हैं, और ऊबर ने ऐसे ही पैसा फेंका है। मेरी बात को आप जरा कहते हैं फॉलो कर जाएं। और इसी तरह जो दूसरी आई है, ये भी ऐसी कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत के साथ आप बड़ी चीजें करवा लेते हैं उसमें। ये हमारे मुल्कों की तरह थोड़ा होता है कि वो डायरेक्ट ही हो जाए हर चीज में, तो वो फिर आपको जो है सब कुछ सामने आ जाता है। तो इसमें प्यार मोहब्बत के साथ जब चीजें होती हैं, तो वो प्यार मोहब्बत के साथ उन्होंने करना था, और उन्होंने ये मोनोपोली खत्म करनी थी। डेनिश कुछ लोग थे, कुछ लोग इसके पीछे हैं, वो ये चाहते थे कि ये वोन मैनी की जो है ना फॉरनरों के हाथ से खत्म की जाए। इसमें हम माने वो कुछ लोग थे जिन्होंने ये करवा के, वरना उनको क्या जरूरत थी कि बाहर से गाड़ियां लेके आए, कभी ऊबर आ गई कभी आ गई, इसकी तो अच्छा भला चल रहा था, इसकी मौत मल नहीं थी। उन्होंने देखा यार इतने 97% 98% फॉरनर हो गए हैं, 80-90% वोमन सारे फॉरनर है, और ये पैसा सारा इनको जा रहा है, इसकी तकलीफ थी। डेनमार्क में खासकर मैंने ये देखा है, दूसरे यूरोप के मुल्कों की बनिस्बत, मेरी ये राय है, हर की अपनी अपनी राय होती है, यहाँ पर वो एक लिमिट तक किसी फॉरनर को अमीर होने की इजाजत देते हैं, और ये इनका सिस्टम है, वो फिर सिस्टम हरकत में आ जाता है, वो उसके मुताबिक वो फिर वो सिस्टम जो है ना उसको करता है फॉलो, क्योंकि ये आपको कि आगे
1: तो शायद
3: एक
1: क्या ये आप लोगों के सिस्टम में भी कोई मीर जाफर मीर सादक थे?
3: ये तो मियाँ साहब बताए, ये तो मियाँ साहब बताएंगे बड़े हैं।
4: मैं राय साहब, मुझे नहीं पता था कि मेरे बरखुरदार शाहिद भी हमारे साथ है। मैं शाह साहब की, मैं तो अभी उठा ही हूँ, जो सच्ची बात है, ये साथ में गर्म पानी पी रहा हूँ, आपने मैसेज लिखा तो हम हाजिर हो गए। शाहिद आपको बहुत बहुत सलाम, मैं
3: जी मियाँ साहब थैंक यू।
4: आपको सुनता रहता हूँ, आपका तजिया, आपके जज्बात, आपकी सोच, मैं बहुत ज्यादा उसकी कदर करता हूँ। आप एक दलेर इंसान हो, हमेशा दलेरी के साथ बात करते हो, लॉजिक और पढ़े लिखे इंसान हो। मेरे तो आप बेटे
1: मियाँ
4: भी हो,
1: साहब
4: छोटे
1: हमारे
4: भाई।
1: शाह साहब उस दिल हैं।
4: नहीं, शाह साहब तो हमारे बड़े हैं, ऐसे ना करें। ये जो ना, ये जो शिक्षा का आप ना किया करें, मैं उस बरखरदार की, शाह साहब के हाथों मैं जवान हुआ हूँ, वो कहते भी होते हैं
3: राजा
4: शाह
3: साहब,
4: मेरे।
3: राजा साहब, मियाँ साहब, मियाँ साहब की जो गोद नहीं है उसके ऊपर मैं, उन्होंने मुझे खिलाया हुआ है, पूछ लिया मियाँ
4: मेरा
3: जी
4: ये मुझे फखर है, इस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद मिलते तो हम अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे इस बात पर फखर है कि शायद जो है ये मेरे हाथों में बड़ा हुआ है, ये मेरी गोद में ये खेला है। ग्लेर शख्स वाए मेरे अंकल और इनके वालिद, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदरुस्ती दे। मेरे वो बड़े भी हैं और हमने इकट्ठे इस फील्ड में काम किया है, शाह साहब भी जानते
1: अच्छा,
4: हैं।
1: मुझे पता चला
4: शायद
1: ये इतना
4: बैकग्राउंड
1: समझदार क्यों है।
4: बस मुझे वो पीरों से, मेरे पीर हैं शाह साहब, उनसे ये क्या कहते हैं कि ये मिला सारा कुछ। शायद सबसे पहले तो इसके माँ बाप, जो अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदरुस्ती दे, और उसके बाद ऐसे ही होता है। और हम जैसे जो दरमियान में, आप जैसों के साथ लड़के रहे तो फिर पीछे रह गए, तो बात तो कुछ इस तरह ही है। शायद आपने बिल्कुल ठीक बात की है, और राजा साहब ने दो तीन दफा पार्क की बात की है। अब राजा साहब शॉर्ट ये करता हूं कि जो डेन टैक्सी है, ये ग्रीन वाली, इनकी तकरीबन 1600 गाड़ी हो चुकी है डेनमार्क में इस वक्त, प्लस इससे भी प्लस है मेरे ख्याल में, मैं आखिरी फिगर नहीं जानता। लेकिन आपने देखा उनकी पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है, बात पार्किंग की नहीं है, बात टैक्सी सिस्टम की है। टैक्सी एक जरूरत है, ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरत है। उसके अंदर जो बिजनेस हो रहा था, जो निजाम चल रहा था, जो सर्विस दी जा रही थी, जिसके लिए कुछ कंडीशन थी, उनको किस तरह वायलेशन उस पर हमें हुई है, और बाहर से आकर कंपनियां, उन्होंने इस सिस्टम को, इस बिजनेस को कैचर कर लिया है। पहले एक ऊबर था, फिर एक बोल्ट था, अब एक तीसरा फार ईस्ट से आकर एक कंपनी जो है उसने यहाँ डेरे डाल ली। ये है हम लोकल्स के लिए, हम हमारे लिए एक एक प्रॉब्लम, और शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसे ही है। अब मैं कल कुछ लोगों के दरमियान था जो जिनका 3-4 का कियोस्क के साथ तलक था, आपको पता क्या हाल है उनका, यानी कि बहुत बुरा हाल है। क्यों कि ये सारी ठीक है ओपन, मैं कहता हूँ शायद जो चीज पब्लिक के लिए इजी हो, पब्लिक के लिए अच्छी हो, वही होनी चाहिए। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप कुछ लोगों पर कंडीशन लगा दें, दूसरों को आप रिलीफ दे दें, या निजाम इस तरह बना दें कि वो उनका सारा कुछ जो है वो जाता रहे और दूसरे सारा कुछ लूट कर ले जाएं। मैं ये सोच है जी।
1: मियाँ साहब आपने बात की, शाह साहब आपकी तरफ चलते हैं। शाह साहब, मियाँ साहब आपकी सरपरस्ती में, आपकी गोद से निकले, मियाँ साहब की सरपरस्ती में शायद गोद से निकले, तो ये चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं। ये 40-35 साल का जो तजुर्बा है ये बड़ी चीज़ होती है। ज़ाहिर है जब किसी इंसान के पास तजुर्बा होता है उसने 30-40 साल पहले की जो चीज़ें हैं वो देखी होती हैं, नए आने वालों ने तो फिर वो 30-40 साल लगाएंगे तो वो देखेंगे। तो शाह साहब, इन सारी चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं?
0: देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एक आपको सच्ची इन्फॉर्मेशन दूं कि जब मियां मुनीर डेनमार्क में आया था, ये बच्चा था और इसने अपने बचपन में डेनमार्क की सियासत को बड़ी गहरी नजर से देखा और बड़े इस सामफोन को इसने समझना और सुनने के लिए इसने हर आदमी जहां पे भी ये एक्टिव हुआ, सोसाइटी हो या डैनिश प्रोग्राम हो, वहां इसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये इसकी अपनी काबिलियत है और इसे सीखा है और ये सीखने से आज ये लोगों को अवेयरनेस दे रहा है। अब मैं शायद को एक बात बताना चाहता हूँ। शायद देखे, जब मैंने काम शुरू किया था तो उस वक्त 70s के अंदर यह था कि डैनिश लॉ यह था कि तुम वो एक है मेदर इन वन मैन स्केल, एक है मेदर टू गिविंग ना। अच्छा, ये पूरे डेनमार्क का कानून था जिसके अंदर खाई ओल्सन ने उस वक्त सिग्नेचर किए हुए थे और ये लॉ जो था ये ट्रैफिक मिनिस्ट्री की तरफ से था। लेकिन पूरे डेनमार्क के अंदर आप यूलैंड में चले जाए वहां पे भी दो दो वनमैनों के पास गाड़ियां थी। लेकिन कोपेनहेगन के अंदर जो थी, मियां मुनीर साहब भी पता है कि यहाँ पे टाक्सा मोटर में, दूसरी जगह कोडन में, आगे पीछे एक एक वनमैन के पास 50-50 गाड़ियां भी थी, 40-40, 30-30 गाड़ियां भी थी। तो यहाँ पे मोनोपोली थी और ये चीज वो वाजिया कर रही है कि यहाँ पे क्रिमिनलिटी जो है वो जैसे आपने कहा कि राइजे ये सब कुछ यहाँ पे होता है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जैसे आप यंग हैं, मियां मुनीर हैं, ऐसे और चंद एक दोस्त मिलके इन सारी चीजों को, मैं आपको सबूत देने को तैयार हूं, आप लोग आगे जाके एक्टिव हो तो आज भी ये कानून जो है कोपेनहेगन टाक्सा जो इस वक्त बची हुई सेल्सकेप है इस उग्र और दूसरों से, आप लोग आज भी ये मसला पुट अप कर सकते हैं कि ये जो लॉज आपने बनाए हैं, ये लॉ फोर्सलेस जो है इसको डिमोलिश किया जाए और आइन के मुताबिक जो है वो आप यहाँ पे वापस टैक्सी जो ह्यूमन नेवन है उसको लेके आए, ताकि यहाँ पे जो आने वाला जो फ्यूचर है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो है वो आबस लूस होंगे जो आजकल टैक्सी चला रहे हैं और ये जो एनसेट कर रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे ये जो क्राइम चल रहा है ये इसको रोकने के लिए आज अगर आप इकट्ठे ना हुए तो मुझे ये नजर आ रहा है कि उबर भी अनसेट करेगी, बॉट भी अनसेट करेगी और ये जो ऑलरेडी है या कोई एक और कंपनी आ जाएगी तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा कि 200 करोड़ का टूर कोपेनहेगन उर्बन गॉन या कहीं से भी 200 का टूर जो है म्यूजिक चीज के अंदर आप लेके लुफ्तावन जाएंगे और ड्राइवर बेचारे का क्या असर हो रहा है। तो ये चीजें जो है, एक ड्राइवर जो है वो 30,000 में से टैक्स दे के हर एक चीज दे के तो वो 20-22,000 या 20,000 करोड़ में वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उसके अखराजात पूरे नहीं होंगे, उसने फैमिली लेके चलना है। तो इसके ऊपर ये बेहतर है कि आप लोग स्ट्राइक तो नहीं कर सकते, नए कानून के मुताबिक आप लोग जो है वो बाहर निकल के किसी किस्म की हड़ताल या स्ट्राइक नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग इकट्ठे होके कहीं समलिंग करके कहीं आप इकट्ठे हो जाए वहां पे आप जो है एक सिग्नेचर्स लेके आप फलके सिंह के जो उम्बुड्समैन है उनको और फलके सिंह की जो उद्वेल है आप उनको लिख सकते हैं कि ये जो कानून है जो हम एक्टिव टैक्सी शोफेर है या वोनमैन है हमें क्या तकलीफ आता है और इसमें टैक्स पेयर के जो साथ ज्यादा हो रही है डेनमार्क में उसकी वजूहत क्या है। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं लेकिन क्या हम इकट्ठे हो सकते हैं
1: वाला 8,500 पे गुजारा कर सकता है तो ये 30,000 पे गुजारा नहीं होगा।
0: देखिए जी जब पेंशन वाला ना उसको 8,000 के साथ उसको बोली यूज से मिलता है उसको बड़ा कुछ मिलता है अगर वो सही तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करे तो यहाँ पे पेंशन वाला जो है वो 3-4 हजार करोड़ जो उसकी फ्रॉड है उसके ऊपर वो खर्चा कर सकता है रह सकता है। मैं खुद रह रहा हूँ इसमें कोई दो राय नहीं अगर मैं मियाँ साहब या कहीं मेरे भाइयों के पास मैं बैठता हूँ तो इनको पता है कि शाह साहब की जेब में इतने पैसे नहीं है ये पेंशनर है ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन अगर मैं चोरी चुकारी करना शुरू कर दूं और इससे असरात जो है वो दूसरे मेरे भाइयों पर बच्चों पर पड़ेंगे जो यहाँ डेनमार्क के अंदर रह रहे हैं तो लिहाजा बजाय आप बुरा काम करें आप अच्छाई से रहे और सच बोलें तो इस सच बोलने से आपको ज्यादा फायदा है।
1: ऐसा प्रोग्राम या सब खत्म करने से पहले आखिरी जवाब शायद भी दें और आप भी दें तो चूंकि एक आखिरी सवाल भी कर लें। एक तो मैंगो फेस्टिवल बड़े धूमधाम से जो है वो मार्केट में मौजूद हैं आ रहे हैं एक आज कल में काफी प्रोग्राम होंगे उसके बाद 14 अगस्त
0: भी आ रहे
1: इस पर भी बात करेंगे नए जनरल्स बने 4-स्टार बने कुछ सुपर सीट इस पर भी बात करेंगे कश्मीर पर भी बात करेंगे आप थोड़ी सी सियासत भी जो है वो जमहूरियत की तरफ भी दूसरी जमहूरियत की तरफ बढ़ेंगे। जी मियां साहब
5: मैं असल में जो सच्ची बात है आप मैं फजर पढ़ के लेटा था तो मैंने ना अभी उठा आपका मैसेज आया
1: तो मियां साहब आप क्यों परेशानी में लेटे हैं अब आप काम सदर नहीं रहे इसलिए
5: नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है मैंने ना 2 बजे ईसा मस्जिद में हमारी मीटिंग है तो जोर के फौरन बाद तो मैंने वहां पहुंचना है अभी कोई तैयारी नहीं अभी तो मैंने नाश्ता नहीं किया अभी नाश्ता टेबल पर आया तो मैंने मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मैसेज किया फिर शाह साहब और शाहिद की बातें सुनकर दिल खुश हुआ मैं बड़ा शॉर्ट सा मैं माजरत के साथ उसके बाद बात हो सकती है लेकिन ये जो शाह साहब ने अभी शाहिद ने भी काफी बात कर दी मैंने भी कर दी ये सिलसिला इस तरह चलना वो शाहिद की एक बात जो बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ कि ये ह्यूमंस न्यून का जो कंट्रोल था जरूरत के मुताबिक जो टैक्सी सिस्टम था और सर्विस देने का जो उनका एक पैमाना उन्होंने रखा था ड्राइवर को चेक कर करने का बैलेंस रखने का वो अब टूट चुका है वो खत्म हो चुका अब 2 नंबरी हो रही है वायलेशन हो रही है तरह तरह का तरीकाकार अपना लिया गया जुबान आती नहीं है आगे पीछे से लोग इम्पोर्ट हो गए हैं और मार्केट जो है वो ओवर उसमें यानी के तादाद से टैक्सीज आ गई हैं ये है शॉर्ट इसका जवाब। बाकी आपने मैंगो फेस्टिवल की कही मैं 2-3 में मैं गया हूँ और 6 जो अब तक हो चुके हैं और 2-3 अभी और होने जा रहे हैं अल्लाह ताला इन मैंगो की तादाद बढ़ाता जाए और होम पाकिस्तान में यानी के बहुत बड़ी ये मेरे तो इलाका जो है सर्दन पंजाब से मेरा तलक है वहाँ के मैंगो जो है सारी दुनिया में मशहूर है तो बड़ा अच्छा लगा कि इतने सारे लोग जो है हर मैंगो फेस्टिवल में आते हैं जिधर भी हुआ ब्रॉन्बी हो या अरबसनुंड हो बेलरोप हो बहुत अच्छा लगा अच्छी बात है मैं भी उन लोगों में उनके इंटरटेनमेंट हो सोशल गैदरिंग हो प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से मिला जाए एक्सचेंज की जाए अपनी अपनी क्या कहते हैं मसरूफियात हालात बात हो तो ये एक अच्छा साइन है। तो बाकी इंशाल्लाह कश्मीर की जो बात आपने की है देखें कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की शाहराग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और उस सिलसिला में जो है अपनी अपनी जगह
1: नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है
5: देखें वो मैं अब इलेक्शन की बात तो नहीं कर रहा मैं तो कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ जो सफर कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है पिछले 77 साल से और जो सफर कर रहे हैं हर जगह जो मुश्किल में है मैं तो उनकी आवाज उठाता आया हूँ पिछले 40-45 साल से वो ही उठाता रहूंगा। अब 5 अगस्त आ रही है آپ کو بھی پتا, آپ انوائٹ بھی ہوں گے. وہ انشاءاللہ ہم تاریخ کشمیر جو ہے وہ دن منانے جا رہے ہیں. یہ آپ کو پتا کہ اس دن سٹیٹس جو ہے ہندوستان نے 370 جو ہے وہ چینج کر دیا, تو اس سلسلے میں انشاءاللہ کل فائنل ہوگا کہ کس جگہ, وہ میری ورکشاپ میں ہوگا یا کہیں کسی اور جگہ جو ہے وہ انشاءاللہ ایک ہم اپنے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یگیتی اور ہندوستان کی جو کرتوتیں حرکتیں جو دنیا کے سامنے آ چکی ہیں ان پر بات کرنے کے لیے اور اپنا میسج دینے کے لیے انشاءاللہ ایک گیدرنگ ہوگی. اس کے علاوہ تو آپ کو پتا ہی ہے, باقی چیزیں اگر اجازت ہے تو میں یہ کہوں گا کہ 14 اگست انشاءاللہ یوم آزادی کا دن ہے, بہت سارے پروگرام ہو گئے, امبیسی میں پروگرام ہوگا مجھے پتا ہے, اور اس کے بعد ایوننگ میں ایک بہت بڑا پروگرام پاکستان سوسائٹی کر رہی ہے, اسکالون جو میٹ اپ ہونا ہے 9 سے 13 جو جگہ ہے اسے, وہاں ہم بہت بڑی گیدرنگ جس میں انشاءاللہ پاکستان سے مہمان آ رہے ہیں, جس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی, جس میں انشاءاللہ آپ سب ہوں گے, تو ہم مل کر اپنے پیارے وطن کا جو جشن آزادی کا دن ہے وہ انشاءاللہ ہم منائیں گے. پاکستان سوسائٹی نے آپ کو پتا ہمیشہ اپنا مرکزی کردار ادا کیا ہے, تو تیاری اس کی ساری ہو چکی ہے, مہمان جو ہیں وہ پاکستان میں وہ بھی تیاری میں ہیں, اور یہاں ہم آپ کی دعاؤں سے آپ کے
1: سب وارڈ میں منائیں گے یا کھلی جگہ؟
5: نہیں جی, ہم نے اس وقت جو ہے یعنی کہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے, کیونکہ ویدر اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اور اس وہاں کچھ کنڈیشنز بھی ہیں, ہم ہال میں منانے جا رہے ہیں. وہ ہال جو ہے وہ تقریباً 1,000-1,200 بندے کا ہال ہے, اور وہ ہم نے بھی بک کروایا ہوا تھا, تو اب ہم نے ہماری میٹنگ تھی, ہمارے صدر صاحب پاکستان سے تشریف لے آئے ہفتہ پہلے, کل ہماری فائنل میٹنگ تھی, تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسکاٹلینڈ میں جو ہال ہے اور اس میں کریں گے, اور آپ لوگوں کے تعاون اور اپنے اپنے پیارے وطن کے جذبات میں, پیار محبت میں, ملی نظمے, اللہ تعالیٰ کا نام, پاکستان سے مہمان, تازہ ترین ساری جو صورت حال ہے, اور ایک بہترین قسم کا وہاں ڈنر بھی ہوگا, اور اس کے بعد انٹرٹینمنٹ کے لیے پاکستان سے کوئی سنگر جو ہے اچھے وہ آ رہے ہیں, کوالی کا پروگرام بھی ہوگا. یہ ہمارا
0: میاں صاحب یہ بھی کلیئر کر دینا کہ یہ فیملی پروگرام ہوگا.
5: ہاں شاہ صاحب دیکھا نا, پھر آپ بزرگ ہیں نا, یہ فیملی پروگرام ہے, یہاں فیملیز کے ساتھ بھی آپ آئیں. میں آپ کو پاکستان سوسائٹی کی طرف سے پر زور دعوت دیتا ہوں, ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک خاص انتظام ہوگا, اور جس طرح بھی اگر کوئی فیملی کے ساتھ بیٹھنا چاہے تو اس کے لیے ہم اس طرح کا بھی یعنی کہ ایک ٹیبل کی شکل میں اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ, کیونکہ جگہ کافی ہے, تو انشاءاللہ شاہ صاحب یہ
1: سٹال بھی لگائیں گے؟
5: نہیں جی, سٹال جو ہے وہ ہم نہیں لگانے جا رہے, کیونکہ سٹالوں کا جو سٹائل ہے وہ اور ہے, وہ 6-7 پہلے ہو چکے ہیں, 2-3 اور ہوں گے. ابھی مجھے پتا کہ البسنون میں یہ ہمارے چودھری لیاقت صاحب اور ان کا ایک بڑا اچھا پروگرام ہو رہا 8 اگست کو, تو یہ سارے پروگرام تو ہمارے ہیں نا اپنے, یہ ایک اور طرح کے ہیں. پاکستان سوسائٹی جو ہے وہ میں کیا کہتا ہوں, میں وہ نہیں کہوں گا, شاہ صاحب نے کل سنا تھا اس طرح, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں, ہم پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, اس معاشرے میں جس کے اندر رہتے ہیں, یہاں کی صورتحال سے
1: دیکھ صاحب مہمان خصوصی جو ڈیسائیڈ ہوئے یا نہیں؟
5: جی بالکل ہو گیا, مہمان خصوصی ڈیسائیڈ ہے, آپ کو پتا چل جائے گا. ابھی ہم سوشل میڈیا پر تو وہ تو شاہ صاحب نے کہہ دیا, آپ نے ہمیشہ تعاون کیا, آپ نے مجھے تھوڑا سا موقع دے دیا, میرے اپنے ذہن میں نہیں تھا ابھی, تو ابھی ٹائم تو بہت ہے, ہم ساری ڈیٹیل جو ہے سوشل میڈیا پر بھی
1: ایسا. آپ کو تو موقع ملتا ہے, آپ ہمارے نوجوان سیاستدان ہیں.
5: جی آپ نے ہمیشہ موقع دیا اور ہم اس کا بھرپور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اپنا حق بھی سمجھتے ہیں, اور آپ ہم سب مل کر ایک دوسرے کا حصہ ہیں, اور اسی طرح پاکستان ہو, کشمیر ہو, ڈنمارک ہو, یہاں کا معاشرہ ہو. ابھی ہم نے ٹیکسی پر آپ اتنا دان دیا ہے.
1: میاں صاحب آپ نے ایک بات کی ہے یوم یکجہتی کشمیر کی, تو وہ آپ کے دفتر میں ہوگا یا کسی بار پبلک پلیس پہ یا امبیسی کے سامنے؟
5: دیکھیں 5 تاریخ کو شام کو 5 بجے پروگرام ہوگا, अब मैं क्योंकि हम तरीके हमारे सदर साहब जो है अदील आसी साहब वो ठीक नहीं है, उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ तो इसलिए ये चीजें थोड़ी सी डिले हुई हैं। अभी आपको पता हाल लेने गर्मियों की छुट्टियां थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बंदोबस्त हो जाएगा। और ये भी
1: चले मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया, शायद आप इसमें क्या इजाफा करेंगे।
5: मैं इजाजत चाहता हूँ अब, सॉरी मैं सुनूंगा आपको लेकिन मैं आप बात नहीं करूंगा।
1: चलें चलें ठीक है मियां साहब, आपका मौकफ आ गया मियां साहब।
5: थैंक यू सर, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाहिद साहब और आपको सब इसको बहुत बहुत।
1: शायद आखिरी बात करें फिर शाह साहब, आप शुक्रिया अदा करें, प्रोग्राम क्लोज करें।
3: जी राजा साहब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कोई?
1: जी जी
3: जी क्या सवाल था आपका, मेरे ज़हन से निकल गया।
1: इसका मतलब आप थक गए हैं?
3: नहीं नहीं नहीं मैं थका नहीं, मैं मियां साहब की बातें सुन के महसूस हो रहा था, तो सारी बात बड़े हैं मेरे से, तो फिर उनकी जब बातों में मैं महसूस हो गया, इतना ज्यादा मैं अंदर चले गया। फिर आप सवाल करें मुझसे।
1: आखिर में आप क्या कहेंगे, जो कुछ ये कुछ बातें हुई हमने सब चीजों को कवर करने की कोशिश की, इसको किस तरह देखते हैं?
3: हाँ मैं आखिर में सबसे पहले तो ये कहूंगा कि उधर से शुरू करते हैं जहाँ से बात शुरू हुई थी, जो हमारा मेन जो पर्पस था आज का वो ये था, चाक्सा वॉनमैन और नई जो है दुल्हन जो आके बैठ गई है।
1: हाँ बस मार्केट की।
3: हाँ मार्केट की दुल्हन जो है वो सजा से जो उन्होंने बैठा दी है और उसके लिए वो दूल्हे ढूंढ रहे हैं, तो वो मैं उसके लिए यही कहूंगा कि इसमें फिर यही कहूंगा कि हमारा अपना कसूर है एज ए कहते हैं फॉरनर्स का, कि हम इसके ऊपर बकायदा होमवर्क नहीं कर सके, जबकि मार्केट में के अंदर हमारा होल्ड था एज ए वोनमैन। फिर उसके बाद ड्राइवर आ जाते हैं, सबसे ज्यादा फॉरनर थे,
1: दूल्हे ढूंढे नहीं, दूल्हों के दूल्हा बनने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं।
3: ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है और ये बिल्कुल मैंने इसको खुद देखा है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं खुद देख के आया हूँ। जो लोग इस चीज के खिलाफ थे, बार बातें कर रहे थे, वो उधर पहले पहुंचे हुए थे और उन्होंने लाइनों में लग के कहा, ठीक है ये उनका अपना अपना अपनी सोच है, या किसी को बात तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अब शाह साहब ने भी कहा कि आपकी टैक्सी ब्रांच इसलिए खराब हुई है कि हम कहीं के भी नहीं है, यानी कि हर तरफ हम भागते हैं, हम किसी के नहीं है सके, तो आपने अपनी ही छाक्षा ने उनको तबाह किया, खुद ही अपने पैरों से कलड़ा मारकर वोन मनी के चक्रों में। और वोन मनी जो अभिशास ने बताया कि डेनिश लोग उन्होंने इसको बनाया हुआ था कानून बहुत पुराना, 60 साल पहले, कि दो से ज्यादा या एक से ज्यादा, दो से ज्यादा नहीं बन सकते। जब फॉरनर आने शुरू हो गए तो उसमें आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो बड़े जो वॉनमैन थे, जो वाई से लेके नैरो पोर्ट तक, उस से लेके वेस्टर पोर्ट तक, ये सारे, और यहाँ उधर क्या कहते हैं पोवा के से लेके, ये सब याद है, ये सब पता है शाह साहब को, और ये सारे वॉनमैन डैनिश थे, जिनकी 40-40 गाड़ियां, 30-30 गाड़ियां, और टैक्सा मोटर होती थी उसके अंदर भी, अलेवन मुझे नाम बोल गया इस वॉनमैन का डैनिश का, उसकी भी 60-65 गाड़ियां होती थी और उस जमाने में। तो ये फिर उसके बाद हमें चांस मिला, हमने, मैं यही बताऊंगा, मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे, हमने कोई स्टैक यानी कि जो ताकतवर, हमने कोई ऐसी फ्रेमिंग नहीं बनाई जिसमें हम ये आगे जाके, जिसमें वकील होता है आपका, जिसमें आपने बेचारे पैसे देते हैं, और वो जो काम जब आप करें तो फिर वो यहाँ पर आपने काम कानून के साथ करना होता है, और ये लोग भी कानून के साथ करते हैं, इनको पता है हर चीज, ये कानून के अंदर ही, जो इनके ये लॉज है ना, लॉज उनके अंदर ही, जैसे कहते हैं ना स्कैट होल, इनके अंदर ही क्या कहते हैं होल है, उनके अंदर से आप ढूंढते हैं चीजें ऐसी जो आपको फिर आपको मिल जाती है, और वो वकील ढूंढता है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि हमने कोई 70-90% इसमें फॉरनर वॉनमैन मिल के नहीं कोई बनाई हमने, इसमें हम दूर दूर रहे हैं, तो ये फिर इसको आपको हमें ऐसे आज भुगतना पड़ा है। और आप देखें, आपने खुद ही बताया कि दूल्हे भाग रहे हैं उधर जाने के लिए, कोई ऊबर चला रहा है, ऊबर में भी राम नहीं है, ऊबर चलाते हुए उधर भाग रहे हैं कि यहाँ पर हम आ जाए। ये अपने मैं फॉरनर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं सारे अपने मरे भी आ जाते हैं, पक्ष नहीं दूसरे भी आ जाते हैं। तो बाकी रह गई कश्मीर की बात आपने की, कश्मीर से पहले कश्मीर तो है, आप देखें पाकिस्तान के हालात, मुआशी देख लें पूरे पाकिस्तान के, किधर हैं, किधर चले गए हैं इस 4 सालों में या 78 सालों में, कहीं नहीं बढ़े हम, पूरी दुनिया से उधार मांग रहे हैं, ये तो बात ढकी छुपी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आपके सामने है, आपने खुद ही देखा है मीडिया पर, तो मीडिया में ये बातें चल रही हैं, आपको भी पता है, आप भी कहते हैं मीडिया के अंदर है, तो उधार के साथ आप कितनी देर तक चलेंगे या किसी के आगे हाथ जोड़ के कितनी देर तक चलेंगे? 28 करोड़ की वाम है, एक गयूर वाम है, आपके सूबे हैं, आपकी 7-8 लाख की फौज है, तो हमें किस काम में लगा दिया है, हमारे इदारों को किस काम में लगा दिया इन सियासतदानों ने, जिसकी वजह से उनको वायलेशन करनी पड़ी है इन इन क्या कहते हैं बदबख्तों की वजह से। अब अभी आपने एक सवाल किया, मैं उसका सवाल का जवाब दे, तो आपने कहा कि कश्मीर के अंदर नवाज शरीफ को वोट मिलेगा या वो, यार भाई एक बंदा 45 साल से लगा हुआ है करने, अभी तक यार 80 साल का हो गया, तो उसको तो भाई छोड़ देना चाहिए शर्म के मारे कि भाई मेरे से नहीं हो सकता, मैंने 45 साल से, अब वो यही कहे आके बार बार के मुझे एक मौका और दे दिया जाए, मैं पाकिस्तान को पेरिस बना दूंगा, हर 4-5 साल बाद, अभी भाई साहब उनके हैं वो वजीर आजम है पिछले 3-4 साल से, तो पाकिस्तान की हालत देख लें, पाकिस्तान के अंदर महंगाई देख लें, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत देख लें, ये यूरोप से भी ज्यादा है, एशिया से भी ज्यादा है, आप जाके देख लें, आपको सारी फिगर मिल जाएंगे अब गूगल में, एशिया की, एशिया में पहले तो जंग का बहाना था, ये नहीं जंग का बहाना है, जंग 3-4 माह पहले शुरू हुई, जंग से पहले भी आपके तेल के यही हालात थे, आप तेल से लेके आप डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान रुपये की कदर देख लें, सारा कुछ ही देख लें, इसको महंगाई कहते हैं, पाकिस्तान में जाए जाके रह के जाके देखेंगे आप, यहाँ से करोन लेके जाएंगे आपका 1000 करोन जो है वो कैसे खत्म होता है, जो रुपए में 40-50 हजार या 60 हजार वो एक दिन में या 2 दिन में खत्म आपका हो जाएगा, इतनी सख्त महंगाई है और लोग वहां पर कैसे गुजारा कर रहे हैं ये तो वही जानता है, आपकी क्या कहते हैं मार्केट जो है हर किस्म की स्टॉक है, आपकी क्या कहते हैं ये मकान बिजनेस जो जिसके कहते हैं ये कारोबारी जो जिसमें ये दुकानें बेचने वाले मकान बेचने वाले कोठियां बेचने वाले ये स्टॉक है, बिल्कुल हर चीज वहां पर स्टॉक हो गई हुई है। हाँ ये है कि सर नीचे करके अगर कोई कौम बेशर्मों की तरह चल रही है वो फिर उनका लिया फर्ज है, वो सर नीचे नीचे करके झुका के तो कह रहे हैं जी सीएनए जी खुश हैं, फिर उस कौम का जो है ना अल्लाह अल्लाह ही
1: आपको मौका आ गया। शाह साहब शायद ने कह दिया है कि जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम है, अब जो है यूरोप भी तारीफ करता है, रशिया भी तारीफ करता है, अमेरिका भी तारीफ करता है, ईरान भी तारीफ करता है, तो दुनिया में नाम तो है, बहुत सारी चीज़ें वो कजी खामियां तो रहती रहती हैं, आते रहते हैं, हालात तब्दील होते रहते हैं, लेकिन हर बहुत जो बात जो है वो गौर तलब है। शाह साहब आखिर में अपना कमेंट्स भी दें और प्रोग्राम को क्लोज भी करें।
0: जी बिल्कुल, दुनिया सब जानती है कि जो करप्शन पाकिस्तान में है उसके वारिस हम यूरोप में भी बन गए हैं, दुनिया के जिस मुल्क में भी रहते हैं वहां पे हम ये काम दिखाते हैं। मैं अपने अल्फाज में ये कहूंगा कि पाकिस्तान जो है दुनिया के चंद चंद उन ममालिक में शामिल है जो कि एशिया में तो सेकंड नंबर पे रिचेस्ट कंट्री है। अगर कोई मेरी बात से मुतफिक नहीं तो ये उसका अपना जहन है। अभी रिसेंटली मेरे मोहल्ले में एक बंदे ने मकान खरीदा है 4.5 करोड़ का, और उसने वो मोहल्ले के अंदर मकान जो खरीदा है वो 4.5 करोड़ उसने कैश पैसे दिए हैं। क्या डेनमार्क के अंदर हम लोग जो रह रहे हैं क्या हमारे कोई ये साबित कर दे, कोई साबित कर दे कि उसने जिस वक्त का वो डेनमार्क आया अब तक उसने अपना मकान जो है वो बैंक में किसी सूरत में रहन नहीं रखा। भाई हम किस्तें पे कर रहे हैं, फ्लैटों की किस्तें पे कर रहे हैं, गाड़ियां लेते हैं वो किस्तों पे लेते हैं। डेनमार्क के अंदर मेरा ख्याल में 8-9% लोग ऐसे होंगे जिन जिनको अबाई मकान मिले हुए हैं या जिन्होंने अपने कैश लेके, यहाँ तो जो मिलियार्ड के 10-12-12-20-20-40-40 मिलियन करोड़ के जो मकान लेते हैं वो भी बैंक से लोन लेते हैं। तो पाकिस्तान को गरीब बनाया है लोगों ने, हमारे सियासी लोगों ने, इसी तरीके से यहाँ के डेनमार्क के हालात को जो चेंज किया गया है और हम लोगों पे जो अब मुसीबत आई है ये टैक्सी ब्रांच में और ये जो खियोस्क ब्रांच के अंदर और दूसरी जगह, ये हमारे सियासतदानों की नाहेली की वजह से आया। अगर ये बताते कम्युनों को, मैं बताते कि यहाँ पे कितने फॉरनर्स हैं, वो कौन कौन सी जॉब करते हैं, उसके ऊपर डिबेट कराते, तो ये इस तरीके के भूचाल कभी भी यहाँ पे ना आते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम डेनमार्क में आए थे तो यहाँ पे 52,000 बंदा जो था, मेरे पास प्रूफ है, 1970 में 52,000 के करीब आदमी जो था वो आबेसलूस था डेनमार्क के अंदर। इन्होंने हमें क्यों बुलाया, इसकी एक रेजा रीजन है, क्योंकि बीबीए भी सुनती है, वो मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें इन्होंने बुलाया, तो हम लोग आए, हमने यहाँ पे अपनी उस वक्त जो भी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हमने मेहनत की दिन रात, 20-20 घंटे, 22 घंटे इधर काम किया, फैक्ट्रियों में सोए और इस मुल्क को तरक्की में इसका हाथ बटाया। सबसे बड़ी हमारे से ये नलायकी हुई कि हम डिपेंड करना शुरू कर दिए अपने यंगस्टर्स पे, जिन्होंने स्कूल में बेहतरीन डैनिश जबान सीख ली लेकिन उनको कानून का नहीं पता था। हमने उनको पाकिस्तानी सियासत सिखला दी कि ये फलाना जन्म का, ये फलाना गुजरात का, ये फलाना पिंडी का, इसकी मदद नहीं, ये करनी है, वो करनी है। उससे पहले तो हम सब भाई भाई थे। मुझे 100% याद है अपना कि जब हम स्टेशन पे अपनी पोस्ट लेने जाते थे खत पढ़ने के लिए सैटरडे संडे, तो वहां पे पोस्ट ऑफिस लेते थे, तो वहां लोग कहते थे यार ये खत पढ़ दो और इसके साथ एक लिख भी दो ताकि यहीं से, तो इतनी मोहब्बत थी। आज हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से बात करने मिलेंगे वक्ती तौर पे भाई भाई, उसके बाद एक दूसरे से बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करना, उनका नाम सुनना पसंद नहीं करते। ये चीजें जो है, ये हमने यहाँ, हमें सियासतदानों को चाहिए था जो सियासत करते हैं कि अवेयरनेस दें। मैं आज भी ये हल्फन ये बात कहता हूँ कि आज भी अगर हम 400-500 इतने हजार टैक्सी ड्राइवर हैं, अगर 400-500 टैक्सी ड्राइवर आज भी इकट्ठे हो जाए और ये सिग्नेचर कर दे, तो आज भी जो है बगैर डेमोन्स्ट्रेशन किए, बगैर किसी चीज के, बोलने वाले बच्चे हमसे कानून सीखे, यहाँ का जो आईन है उसकी खिलाफ वर्दी हो रही है, और ये जो है टैक्सी का कानून दोबारा चेंज करने पे मजबूर कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट करेगी। क्यों कि सबसे पहले मैं शायद सुन रहा है, मियां साहब भी सुन रहे हैं, आपको ये बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऊबर को बैन किया, तो फिर किस तरीके से सियासतदान सुप्रीम कोर्ट को, लॉ को वायोलेशन कर रहे हैं, ये चीजें हमने हाईलाइट करनी है। इन चीजों को सामने लेके आएंगे तो ये खुद बहुत जो है ये मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास भविष्य होनी चाहिए। जब तक आपके पास भविष्य नहीं, आप बात नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहता हूं कि यंगस्टर्स आए हमसे बात करें, हम उनको भविष्य देते हैं, उनको इस बात पे कायल करते हैं कि ये देखें ये आईन है और ये लॉ फौसले है, और ये फौसले है, आप लॉ फौसले को आज भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब मेरे पीछे 10 बंदे भी खड़े हो सकते हैं, तो मैं कैसे जाके अकेला जो है इस कानून के ऊपर लड़ाई करूं। ये तो चाहिए इन लोगों को जिनको अब मसला है। अब मियां साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि लोगों को मसाइल आ रहे हैं, ड्राइवरों के मसाइल। अब एक आदमी को टूर नहीं मिलता तो वो तो अपनी गाड़ी छोड़ के वो कहेगा कि मैं तो ये जाके जो 30,000 वाली है जब फिक्स हो जाता हूँ तो मुझे तो 30,000-32,000 यहाँ से मिलेगा, तो चलो मैं अपनी फैमिली को तो सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी चीज जो है, आपको एक चीज जेन शीन करनी है कि अगर हमने इस मुल्क के अंदर रहना है तो हमें इस मुल्क की जो कानूनी होल्स हैं जो यहाँ के, उसको हमें सीखना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं, वकीलों की बात हो रही है, वकील सारे हर कानून को नहीं समझते, आपको वो जो है वो इनके जो पार्लियामेंट के जो फॉरगेटिंग के लॉज हैं उसको पढ़ते हैं, वो आईन को नहीं पढ़ते। और जब तक आप आईन को नहीं पढ़ेंगे आप लॉ के ऊपर बात नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें ये जो गैदरिंग है ये मस्ट करनी पड़ेगी, अगर आप जो है टैक्सियों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो कल को मैं देख रहा हूँ कि ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद क्या होगा, जब ये 600 नई टैक्सी सड़क पे आ जाएगी, हशर क्या होगा कि वोनमैन अपना 30-35,000-40,000 का खर्चा जो है गाड़ी का वो नहीं दे सकेंगे और वो कहाँ से कवर करेंगे, बैंक उनको लोन नहीं देगा, दूसरी चीजों पे उनको प्रॉब्लम होगी तो वो क्या करेंगे, वो तो बैंकरप्ट होंगे। मैंने खुद कहा अगले दिन कि मैंने 1,00,000 करोड़ फियर गांस्यू को दे के, क्योंकि मैं बीमार हो गया था, तो मैंने अपनी सेल्फ केयर को, मेरे वकील ने कहा था बैंकरप्ट हो जाओ 5 साल तक कोई, मैंने कहा मैं नहीं होना चाहता बैंकरप्ट, मैं आज तक नहीं बैंकरप्ट हुआ, मैं अब क्यों। तो मैंने 1,00,000 उनको कैश दे के बैंक के थ्रू से, तो मैंने अपने आप को फ्री किया। 62,000 मुझे गाड़ी का घाटा नुकसान हुआ, मैंने वो भी पे किया। बात असल में ये है कि जब लोगों को गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी लोगों की, लोग कहाँ से इनकम लाएंगे, इस मसले के ऊपर बात होनी चाहिए। इनको ये बताना चाहिए कि आज आप

0: राय का हुस लिए हुए हैं सब कुछ। देखिए कितने लोग, ये शायद तुम्हें पता है, कितने लोग मूव हो गए हैं स्वीडन के अंदर, कितने लोग चले गए हैं जर्मनी के अंदर। मैं क्यों अपने बच्चों को यहाँ लेके आऊँ? मुझे नहीं रोका इन्होंने, क्योंकि मैं कानून को जानता हूँ, मैं कानून के लॉज होल्स को जानता हूँ। ये चीजें जो है, जब हम इनको कहते हैं कि आओ बैठो बात करो, ये कहते हैं नहीं जी हमारे बच्चे बहुत पढ़ गए हैं। ओ जी मेरे बच्चे भी PhD कर गए हैं, मेरे बच्चे बड़े पढ़े हुए हैं, लेकिन मुझे जब मैं उनसे कोई मदद मांगता हूँ तो वो कहते हैं फा लवे हम इधे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो वो हमें क्या बताएंगे, जब उनको खुद उन्होंने कानून नहीं पढ़ा, उनको पता ही नहीं है कानून एक अलग चीज है और आईन एक अलग चीज है। यहाँ का रिटर्न आईन है, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, शायद को भी उतनी प्रोटेक्शन है, मियां मनीर साहब को भी उतनी प्रोटेक्शन है, मुझे भी उतनी प्रोटेक्शन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी उतनी प्रोटेक्शन है, हमारे यहाँ के किंग को भी उतनी प्रोटेक्शन है, कोई फोर्स केस पे हैंडिंग नहीं। लेकिन जो आईन है, जो लॉ है, जो इन्होंने कानून बनाए हैं, उसमें फोर्स केस पे हैंडिंग है। ये कैसा आईन रखा हुआ है इन्होंने? या ये आईन को खत्म कर दे और सारे लॉ फोर्स रहे इंग्लैंड की तरह ले आए कि जो पार्लियामेंट विल चेक करती है हम उसको मानेंगे, तो फिर आयन रखने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को हमने चैलेंज करना है कि क्या आप अपने आयन के को मुकदस समझते हैं, या आप जो लॉ फोर्स बना रहे हैं इसको मुकदस समझते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी डिबेट होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि जब पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे इन्होंने पोलराइजेशन पे बात की थी, तो मैंने कैसे इनका मसाले दे दे के इनका मुंह बंद किया था, और वो पोलराइजेशन उधर ही खत्म हो गई थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आपकी बात में वजन होना चाहिए। राजा साहब
1: शाह साहब, मैं एक बात ऐड कर दूं, अगर इजाजत हो आपकी।
0: जी, बिल्कुल
1: शाह साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन आप भी हमारे बुजुर्ग हैं, जिसे कहते हैं ना अपने स्टाइल में, ये हमारे सियालकोट के, कि जी असि भी भोले बादशाह। शाह साहब, ये एक सोची समझी स्कीम, मैं इसको साजिश नहीं कहूंगा, साजिश एक सख्त हो जाएगा लफज। मैं हालांकि
0: नहीं,
1: मैं
0: वो
1: साजिश ही के
0: मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ।
1: मैं साजिश ही कहना चाहता था, लेकिन मैं प्रोग्राम के अंदर हूँ। मैं एक वो कहूंगा कि सोची समझी स्कीम के तहत ये सारा करवाया गया है, आप लोगों को, हमें वॉन मनों को खत्म करने के लिए इस मार्केट से, बिल्कुल ये अपने कंट्रोल करने के लिए। डेनिश खुद कंट्रोल नहीं थे कर सकते, क्योंकि वो टैक्सी से निकल गए थे, उनके यंग बच्चा कोई टैक्सी में नहीं आ रहा था, वो चलाना नहीं चाहता था, वो आया ही नहीं है। अगर वो आता तो उन्होंने उसके जरिए फिर ही खुद ही करना था कंट्रोल डेनिश टैक्सी, लेकिन उन्होंने बाहर से फर्मे ला के, ये इतनी नफरत करते हैं आपसे, ये आपको समझ नहीं अब आ रही, आपको सब कुछ समझ आ गई है।
0: बिल्कुल
1: हमारी यंग जनरेशन को भी ये समझ आ जानी चाहिए, जो तीसरी चौथी है, ये आपसे प्यार नहीं करते, हालांकि आपने इसको कबूल किया है, इनको, हम यहाँ पर रहते हैं, हमने यहाँ टैक्स दिया है 60 सालों से, लेकिन इनको ये आनी चाहिए कि टैक्स दे के कारोबार का उतना ही मौके फराहम करने चाहिए जितने आप डेनिश, जो एक थे डेनिश, उनको करते हैं। हमें आप डेनिश भी कहते हैं, लेकिन हमारे साथ आप ज्यादती करते
2: लेकिन
1: हैं
2: शायद अपने
1: इसी।
2: खिलाड़ी जब किसी क्लबों में बिक जाते हैं तो फिर हालात ऐसे ही होते हैं ना।
1: आपके आपका कहने का मतलब है कि मीर जाफर तो राजा साहब हमेशा हमारे सफों के अंदर पाए गए हैं, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसकी वजह से हम हमेशा से नुकसान उठा रहे हैं हर जगह से, हर महाज पर, खाली सियासी नहीं है, दूसरे ये जो महाज अभी इसका जिक्र कर रहे हैं, ये जो एक कारोबारी है ना, एक आपका काम का अड्डा है, इधर भी आप मार खा गए हैं। और
0: शायद आपको मैं एक आपकी बात में से बात निकाल रहा हूँ। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो आपने बात की है ये बिल्कुल सही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि 87 के अंदर हमारे एक वॉनमैन थे, तो उनके बेटे ने इतनी तेजी से मर्सिडीज गाड़ी को जाके, तो कांग्रेस वाय के जो बीच में चौक था ना उसके अंदर जाके गाड़ी मारी, तो उन्होंने उसको पूछा, तो वो कहने लगा मैं तो गिमनेजियम में पढ़ता हूँ, तो उन्होंने कहा ये गाड़ी कहते मेरे बाप की है, वो फोरमैन अपना वो वॉनमैन है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो जब उन्होंने बाप को कहा कि भाई तुमने ये मर्सिडीज कैसे रख ली है, तो फिर उन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके बाप की इतनी इनकम भी नहीं है, ये शो भी नहीं इतनी टैक्स में कर रहे, तो उन्होंने ये सख्ती वहां से शुरू की। फिर कुछ हमारे अपने लोग भी थे, मैं नाम लेता हूँ, हमारी ये अपना इसी प्रोग्राम के अंदर उसने खुद एक्सेप्ट किया था, यहाँ पे हमारी एक लुबना लाही हमारी काउंसलर होती थी, उसने जाके ये बकायदा हुए नेमन के अंदर मेरे पास प्रूफ है, उसने कहा कि इनकी वॉनमैनशिप बंद करे, ये सबसे ज्यादा क्राइम कर रहे, ये सबसे ज्यादा पैसा खा रहे, तो वहां पे
2: तो
0: चार
2: शाह साहब
0: आदमियों
2: इसका
0: ने
2: अगर प्रूफ है तो बात करें, अगर प्रूफ नहीं है चूंकि वो मौजूद नहीं
0: बिल्कुल
2: है।
0: प्रूफ है।

0: ने आपके सामने ने लुबरा ने ये कहा था कि ये मैंने है वो नेमन में ये बात की थी कि इसको खत्म करना चाहिए, तो मैंने उसको कहा था कि तुम अकेली नहीं थी उस वक्त, चार आदमी थे। तो उसने कहा कि प्रभु, मैंने कहा मेरे पास है वो टाइमिंग है मेरे पास, तो वो खामोश होगी। तो ये आपके पास रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और मैं कभी ऐसी कोई ऐसी बात नहीं करता जिसका मेरे पास सबूत ना हो, और ये हकीकत है। और ये चीजें जो हुई और इसकी वजूहात जो थी वो सबके सामने आ रही हैं।
1: तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور سامعین، موسم کے لحاظ سے دیکھیں تو ادھر بارش لگی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے۔ اسی طرح سیاست میں بھی ہوتا ہے، بارش بھی ہوتی ہے، دھوپ بھی ہوتی ہے۔ دو دن موسم گرم رہا، کل سارا دن تقریباً دھوپ ہی رہی، بادل کم رہے، لیکن آج دھوپ بھی نکلی ہے اور بارش بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ اور ڈنمارک میں مختلف جگہوں پر مختلف موسم ہوتا ہے اور ٹیمپریچر بھی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن آندہ ہول ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ اور سیاسی موسم اس لیے نہیں چل رہا کہ سیاسی موسم چھٹیوں پہ رہا ہے، کام تو کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو 12 مہینے ایکٹیو رہتے ہیں، ان میں تجزیہ نگار انالسٹ عدنان علی امین بھی ہیں۔ عدنان، آپ کو ایک بار کی بات پر دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: وعلیکم السلام، صاحب کیسے ہیں آپ؟
1: اللہ کا شکر ہے عدنان۔ موسم پھر بارش شروع ہو گیا اور ساتھ ہی دھوپ نکل آئی ہے۔
2: ہاں، دھوپ نکل آئی ہے اور موسم بھی چینج ہو گیا اور کافی چیزیں کہتے ہیں۔ موسم تو ڈنمارک کیسے رہتا ہے، جیسے چیزیں چینج ہوتی ہیں ویسے موسم چینج ہوتے ہیں۔
1: عدنان، سیاست میں تو بالکل خاموشی ہے، لیکن وہ سینہ گزر سے باتیں چلتی رہتی ہیں، لوگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں، لیکن یہ جتنے سٹی کونسل صاحبان ہوتے ہیں یا دوسرے پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے تو کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر وقت جو ہے چھوٹی چھوٹی خبریں سینہ گزر چلتی رہتی ہیں۔
2: دیکھیے رضا صاحب، ابھی تو سمر ویکیشن چل رہے ہیں نا، سمر ویکیشن میں تو پھر خاموشی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ خاموشی ختم تو ہوگی،
1: لیکن آپ کا تجزیہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے غیر ملکی بیک گراؤنڈ کے ہمارے سٹی کاؤنسلر بھی ہیں، پارلیمنٹیرین تو بہت کم ہیں، تو یہ اپنے کام میں ایکٹیو ہیں یا یہ بھی چھٹیوں پہ ہیں؟
2: اپنی ویکیشن تو کر رہے ہوں گے اور آگے جب یہ واپس آئیں گے اپنی ویکیشن سے، تو پھر تو ان کو کافی کام ان کے سخت ہوں گے، کیونکہ جب یہ واپس آئیں گے تو 98 کمیونوں کے بجٹ بن رہے ہیں، 4 ریجن کے بجٹ بن رہے ہیں، تو دیگر غیر بہت سے کہتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی مصروفیت کافی ہوگی اور اپریشن بھی ہوگی، اور ہر پارٹی نے اپنی ڈیلیگیشن تو بنا لی ہوگی جن میں کیا کہتے ہیں ڈیل کرنی ہے یہ اکنامی کی اور بجٹ کی، تو پھر ان کی مصروفیت تو کافی ہو جائے گی۔
1: عدنان، لوگ تو مینگو فیسٹیول پر ہمارے لوگ ایکٹیو ہیں، ہو رہے ہیں، باقاعدگی سے ہو رہے ہیں، شادی بیاہ بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، چھٹیاں تو ساری اسی طرح گزر رہی ہیں، سیاست تو کم ہو رہی ہے، لیکن ذرا شادی بیاہ پر سیاست تو ہوتی رہتی ہے، آپ کیا کہیں گے؟
2: سب دیکھیے، سیاست تو ہر جگہ ہوتی ہے اور کہاں پہ ہے جہاں پہ سیاست نہیں، میں یہی کہوں گا کہ انسان کو اب دیکھنا چاہیے کہ فیوچر کیا ہے۔ جب سے یہ ڈنمارک کا الیکشن ہوئے ہیں دونوں کونسلر نیشنل، تو آپ ایک ماحول دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے صاف ہوتا جا رہا ہے اور کافی سختی آ رہی ہے، تو اب اس بات کو نظر انداز کر کے تو نہیں کر سکتے بندہ، تو اب اس بات پہ غور کرنا پڑے گا سب کو۔ کم
1: عدنان، ایک بات بڑی عجیب ہے، ہمیشہ سے ہم سنتے جا رہے ہیں کہ سیاستدان مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ مسلمانوں کو تو خود ٹھیک ہونا چاہیے، اگر بات کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے۔
2: دراصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، مطلب بات کریں تو ریلیشن کر دیتے ہیں، انسان جب بات کرتا ہے نا تو کچھ پینیٹریشن بھی ہوتی ہے اور کچھ وقت بات بھی ہوتی ہے، جیسے ایک اسلام کے بارے میں بڑا پھیلا ہوا ہے، اور اس کا یہ بھی تو اس کا پہلے ایک غلط ہونے لگ پڑا ہے نا، جو ٹیسٹ پر چیز اٹھانے لگ پڑے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ خاموش ہیں اس بات کا، مطلب میرا جو ایکسپیرینس کہتا ہے وہ ان کا نیکسٹ ٹارگیٹ جو ہوگا وہ
1: سیاستدان بیان دیتے رہتے ہیں، اسی طرح جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی اپنا جواب دینا چاہیے، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
2: नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर राजा साहब उनके जो फैक्ट होते हैं ना वो बहुत गलत होते हैं। एग्जाम्पल जैसे उन्होंने एक फेसबुक पर लिख दिया हुआ था कि अब हमें हलाल खाना पड़ता है, ये किसी ने आपको मजबूर तो नहीं ना किया, जो पढ़ेगा वो यही समझेगा कि उनको जबरदस्ती हम हलाल करा रहे हैं। तो
1: ये तो
2: को
1: लोग अदनान खुद समझ जाएंगे कि यहाँ किसको कह सकते हैं तुम हलाल खाना, और वो अभी डेनिश पीपल्स पार्टी कह रही है जबरदस्ती मुझे हलाल खाना पड़ता है, कैसा मजाक है ये।
2: वो ही बंदा कहता है ना कि फिर बंदा उस चीज को उठाता है, बंदा उस चीज को बहस करता है, उनको समझाता है, और फिर ही उनको समझ आती है कि बंदा बात सही कर रहे थे गलत बात कर रहे, और इससे ही पता चलता है। मैं लोगों को यही कह रहा हूँ कि ये 5 सितंबर 2026 को ये जो 1200-1300 बंदे हैं मेंबर हैं बस अभी तक, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन लेके आ रहे हैं इसको बस बंदा नाकाम कर दे, तो फिर बंदे के लिए क्या कहते हैं एक पिक्चर है कि हम उस लेवल पे भी नहीं
1: पहुंचे। तो जब डैनिश खुद इस प्याज की जो है वो अगर कानूनी इजाजत है वो तो देंगे, लेकिन अगर कानूनी मुखालफत करते हैं तो वो भी डैनिश करेंगे। तो हमें ज्वाइन कर लिया सैयद तुकीर हसन बुखारी शाहब, शाहब को आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राजा कपूर साहब आपको, आपकी टीम को, अदनान साहब को और आपके लिस्टनर नाजरीन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी राजा साहब,
1: शाहब बात चल रही थी कि आगे आगे अदनान ने बात की है कि डेनिश पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें भी हलाल खाना पड़ता है, तो शाहब अगर कोई बंदा कहता है तो उसका राइट है, सियासी राइट है, वो कह सकते हैं।
3: जी अदनान ने जो बात की है वो बिल्कुल सही की है कि चंद एक आदमी जो है ये सारी फेसबुक पे सारे सोशल मीडिया पे घूम फिर कर, जैसे हम घूम फिर के इनकी खबरों को देखते हैं, ये सारे वही लोग हैं। देखिये इस वक्त डैनिश फलके पार्टी जो है वो उसके लोग जो है, मैंने अगले दिन भी आपको भी भेजा था, अदनान को भी भेजा था कि एक आर्टिकल आया हुआ था फेसबुक पे, उसके अंदर मैंने लिखा था कि डैनिश जो है वो रेसिस्ट नहीं है, और ये जो चंद एक रेसिस्ट है ये मुख्तलिफ पार्टियों में चले गए हुए हैं, और इनको डैनिश जो आयन है वो भी नहीं आता, और ये मुख्तलिफ पार्टियों में देखेंगे। सोशल डेमोक्रेट की जो टॉप पार्टी है इसके अंदर जो बैठे हुए बंदे वो यंग आदमी है, और उनको बिल्कुल अगर जाके आप मेरे फेडरेशन को पकड़ ले और उसको कहे कि आपने वो जो तुम्हारे वो किए हुए हैं जो तुम्हारे मशीर हैं उनके बगैर खड़ी हो जाओ और मुझे बताओ कि फलानी फलानी आइन के अंदर कौन सी लॉ है इसके बारे में, और ये लॉ फोर्स है जो है फल के थिंग में इसके बारे में तुम्हें बताओ, तो वो नहीं बता सकेगी। क्यों? कि ये अपने आईपैड कंप्यूटर और इन चीजों पे मुनसर करते हैं और अपने मशीरों के सर पे ये सियासत करते हैं, इनको आयन का जरती भर फर्क नहीं पता। अगर डैनिश आयन के मुताबिक यहाँ पे हलाल फूड जो थी उसकी सबसे पहले इजाजत ये होती, और ये जो जो अब ये देखे मैं आपसे बात कर रहा था तो बीच में वो फेक नंबर जो है जिनके अभी कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, जिनको आज भी 3 आदमियों को उन्होंने पकड़ा है डेनमार्क के अंदर, ये बार बार हर बंदे को खसूसी तौर पे जो लोग पेंशनर हैं और जो फॉर्च्यून पेंशनर्स हैं उनको टेलीफोन करते हैं, कभी पुलिस का कहते हैं, कभी गवर्नमेंट के अदारों का नाम लेके उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। यहाँ पे मैं वाजह करता जाऊं,
1: इस बात की क्लियर कर लें अदनान, आपने शाह साहब की बात सुनी, शाह साहब कह रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ तो लोग फेक नंबरों से जो है वो फोन करते हैं, उन्होंने जिक्र भी किया, तो क्या इस जैसे मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है?
2: सब चेक एंड बैलेंस होता है, मगर ये जो फेक नंबर से फोन कर रहे हैं ना बहुत सारी, ये बाहर मुल्कों में बैठे हुए हैं, और ये स्पेसिफिकली पर ये फोन इसलिए बुजुर्गों को करते हैं कि बुजुर्गों से ये फिर उनकी काउंटी नंबर ले लेते हैं और ये ले लेते हैं और इनकी बैंक काउंटी खाली कर लेते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल। और दूसरा, इन्हें एक नया सिस्टम शुरू किया हुआ है, अफ्रीका से बैठे हुए हैं, वहां से आपको फोन करते हैं और आप 50 करोड़ का बिल डाल देते हैं। और फॉर एग्जाम्पल जिनके पास कहते हैं कार्ड ज्यादा होता है, जिनके पास मेंबरशिप है उनके नहीं पैसे ज्यादा होते, तो इनके पास क्या कहते हैं काफी नए ट्विक्स ने शुरू किए हुए हैं और काफी लोगों को परेशान किया हुआ है। ऑब्वियसली पुलिस को पता है, पुलिस वॉच आउट करती है, पुलिस का वॉच डॉग होता है, मगर मसला वही होता है कि पुलिस किस किस के पीछे पड़े, वो आगे इतनी मसूफियत है उनके लिए। इस वक्त जैसे आपको मालूम है कि हर शहर के अंदर, बेस्तान के अंदर वो स्ट्रीट है जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो पुलिस के पास भी तो एक लिमिट है। इस वक्त आपको ये भी सोचना चाहिए कि पुलिस वाले भी समर वेकेशन कर रहे हैं, तो अभी वो उनके उनके उनके अंदर क्या कहते हैं ये मालता है उनको,
1: ऐसा। बदनान ने बात बड़ी क्लियर कर दी, लेकिन शाह साहब आप देखे ना, हम खुद क्यों नहीं ठीक होते? आप तो निशानदेही करते रहते हैं, अदनान निशानदेही करते रहते हैं। शाह साहब, लोग अगर खुद ठीक हो जाए, मिसाल के तौर पर कानून तो कानून नहीं हरकत होना, हम कानून में तो मुदाखलत नहीं कर सकते, बात कह सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शाह साहब हमें खुद भी तो ठीक होना चाहिए।
3: ये बिल्कुल आपने सही बात की है, अदनान क्योंकि यंग आदमी है, इसका फ्यूचर है पॉलिटिक्स के अंदर, इसने खुल के बात नहीं की। आज के अखबारों में और पुलिस रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल वाजह है कि तीन जो है वो यहाँ के लोकल पकड़े गए हैं, और वो हमारे हम लोगों में से हैं, और उन्होंने फिनलैंड का भी जिक्र किया, उन्होंने दूसरी जगह का भी जिक्र किया, कुछ बदमाश तंजीमों का यहाँ का जिक्र किया उन्होंने, तो ये मैं उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये जब तक उनको परमानेंट दातों से
1: सजा नहीं हो जाती नाम
3: जी, इसलिए नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप पकड़े गए हैं और जिनके पास से कोपेनहेगन से जिनके जिनके घरों में से ये चीजें सब कुछ मिली है। तो बात यह है कि वो कहते हैं ना घर का बेटा बेटी लंका डाय, ये हम लोग खुद जो है अपने आप को ठीक करने पे नहीं, और हम कैसे ठीक करें राजा साहब? हमने इस मुल्क को तबाह किया, हमने अपने मुल्क को भी तबाह करने की बुनियाद रखी। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैंने ये जो बात की है मैं इसको दो मिनट में तफसीलन आपको बता सकता हूँ कि हमने क्यों जिस मुल्क में हम पैदा हुए उसको भी उसकी भी जड़ें काटी और इस मुल्क भी हम जड़ें काट रहे हैं।
1: शाह साहब आप बताएं, जब आप लोग आए, बड़े लोग आए, बुजुर्ग लोग आए, तो क्या उसको ये जो कानून कायदे अक्सर जिक्र करते रहते हैं आप, क्या इन लोगों ने खराब किए या हमने खुद खराब किए?
3: जी हमने जब अपने यंगस्टर्स पे हर चीज छोड़ दी, जब हमने कहा जी हमारा बेटा हमसे ज्यादा डैनिश बोलता है, हमसे ज्यादा कानून समझता है, हमसे ज्यादा, हालांकि उसको मैंने जब ये चैलेंज करके कह दिया है कि मेरे फेडरेशन को या जिसको भी आप सामने बैठाएं उसको कहे कि आइन की ये शिके जो है अचानक उनसे पूछ ले, वो आपको नहीं बता सकेगी। ये अदनान कितना अरसे से यहाँ पैदा हुआ है, इसको भी सारे आयन का नहीं पता। ये चीजें जो होती हैं वो लोग करते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के और उनके ऊपर डेली रिसर्च करते हैं। हमारे लोगों ने यहाँ हमारे यंगस्टर्स के ऊपर हमने सबको छोड़, वो छोटो जी मेरा बेटा तो भाई वो तो स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहा है, वो कोई पार्लियामेंट का जो लॉज है उसको तो नहीं पढ़ रहा, वो कोई वकील तो नहीं बन रहा, अगर वकील भी बन रहा है तो वो जो सब्जेक्ट उसके है उसको पढ़ रहा है, वो सब कुछ हम लोगों ने जो बुनियाद रखी है ये झूठ पे रखी है। हम लोग यहाँ पे बस शो मारते हैं और अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों को हम तबाह बर्बाद करते हैं। पाकिस्तान में हम लोग जाते हैं वहां पे करोड़ों रुपए यहाँ के लाखों करोड़ को जब चेंज करते हैं तो वो करोड़ों में चले जाते हैं, वहां हम शो मार के आते हैं तो हमारे खानदान वाले लोगों को कहते हैं देखो फलाने का बेटा इटली गया, फलाने का बेटा डेनमार्क गया, फलाने का लंदन गया, वो कितना कमा के ला रहा है तुम भी जाओ। वो बेचारे डंकी लगाते हैं, अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। ये हमारे लोगों की खामी है। अगर हम वहां पे सच बोले कि हम कितनी मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे 13-13 घंटे टैक्सियां उठाते हैं, लोगों के सामान उठाते हैं, नशेइयों को ड्राइव करते हैं, खाना हमें सही तरीके से नसीब नहीं होता, हर चीज का हम सच बोले तो ये चंद एक पैसे जो हम बैंकों से उधार ले आए या दोस्तों से मांग के ले आए हैं और पूरे खानदान के पैसे इकट्ठे करके हम यहाँ ले आए हैं, इसको हमारी शो ना समझे, हमारी मजबूरी समझे, तो फिर लोग जो है वहां पे भी वो कहेंगे कि ठीक है भाई बाहर से तो हम अपने मुल्क में सो गए हैं। हालांकि हकीकत यह है कि जब हम आप अपने मुल्क में जाते हैं तो हमारे मुल्क के लोग हमसे ज्यादा अमीर होते हैं। जो बच्चा 25-30 लाख रुपया दे के एजेंट को बाहर आने की कोशिश करता है उसकी सेविंग हमसे ज्यादा है तो वो आ रहा है, तो हमारे पास तो इतनी किसी के पास भी इतनी सेविंग जो है वो कम होती है। تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اس جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کم از کم ایسے حالات پیدا کریں کہ جو ہم پہ وہ پانچ نمبر لگ چکی ہے ہم اس کو جو ہے ہٹانے میں یہاں تنظیمات کی مدد کریں, وہ اس کے بارے میں ہم نہیں سوچیں گے.
1: شاہ صاحب تنظیمات کی بات کرتے ہیں تو سیاستدان خود آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. شاہ صاحب آپ کو سیاست کا نہیں پتا, آپ سب سیاستدانوں کو جانتے نہیں ہیں.
3: جی وہ جو سیاستدان آپ بات کر رہے ہیں وہ آج کل سب پاکستان کی سیاست کرتے ہیں. اگر ڈنمارک کی سیاست کی جائے اور ڈنمارک کے اندر ہمیں بتایا جائے, دیکھیں میں خوش ہوں, میں راضی ہوں عدنان پہ کہ اس کی فیملی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کے ماں باپ ہیں یا اس کے دوست احباب ہیں, لیکن یہ بھی جس وقت آپ اس کو ٹیلی فون کرتے ہیں یہ بھاگ کر آ جاتا ہے اور اپنا ٹائم جو ہے وہ عوام کے لیے دے رہا ہے. یہ بڑی خوش آئندہ بات ہے, دوسروں کو بھی چاہیے. کیا ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ میں نے تو کئی کونسلرز کے بارے میں یہ سنا کہ ان کے گھر ہمارے بچوں کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ہم یہ کر دیں وہ کر دیں. اور بھائی ڈنمارک کے اندر جو ہے یہاں پہ کوئی کسی کا کچھ نہیں بکار جاتا, کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا. آپ رہے, آپ اگر قانون کو جانتے ہیں تو قانون کو بتانا آپ کا فرض ہے کیونکہ آپ نے ووٹ لینے ہیں. میں آپ کو یہ پیشگوئی کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے لوگوں نے اب بھی سیدھا رستہ نہ اختیار کیا تو نیکسٹ الیکشن میں یہ ڈینٹوں کو ووٹ ڈالیں گے, کیونکہ جب 70s 80s میں ہم لوگ یہاں پہ تھے تو ہم ڈینٹوں کو ووٹ ڈال دیتے. یہی مونس لکٹافٹ, یہی سارے جو تھے پرانے پرانے, یہ سارے کے سارے ہماری عزت کرتے تھے. یہ اس وقت جوان تھے اور یہ ہمارے لیے اچھا قانون لے کے آتے تھے.
1: اس وقت یہ اعتبار کرتے تھے نا.
3: جی بالکل, ہم ہمارے پاس اس وقت نہ اتنی بڑی گاڑیاں تھیں, نہ ہمارے پاس شو مارنے کے لیے کوئی چیز تھا, نہ یہاں پہ شادی ہال وغیرہ تھے, نہ کوئی اتنی چیز تھی ہمارے لیے. ہم لوگ سارے آرام سے جاتے تھے, سائیکلوں پہ جاتے تھے, بسوں پہ جاتے تھے, ٹرینوں پہ. ٹرین بعض جگہ ایسا ہے پہلے اور آگے پیچھے ٹرین ہی نہیں ہوتی تھی تو بندے پیدل بھی چلے جاتے تھے. تو لوگ کہتے تھے یہ محنت کرنے والی قوم ہے, ڈینش کہتے تھے یہ قوم. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ حلال کا مسئلہ جو دھران بتا رہا تھا, میں اس کو پڑھ رہا تھا ابھی, تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پانچ چھ سو لوگوں نے ایک ایک بندے کو جس سے اچھی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی ہمیں ٹرینگ نہیں کر رہا, ہمیں کوئی مجبور نہیں کر رہا کہ ہم حلال کھائیں. تو لیکن ایک عورت یہاں تک نکلی ہے, اس نے کہا کہ حلال کھانے میں کیا غلطی کیا, وہ بھی ڈینش ہے. دیکھیں آپ ان کی زبان میں آپ ان کو لکھیں اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ آپ لکھیں تو یہ لوگ آپ کو سنتے ہیں. یقین کریں کہ کل میں گلوسٹپ گیا ہوا تھا تو گلوسٹپ کے اندر میری آپ سے اس وقت بات ہوئی تھی, آپ ٹریول کر رہے تھے اس وقت میں گلوسٹپ گیا تو گلوسٹپ میں میری دو چرچ کی عورتوں سے بات ہوگی اور وہ انہوں نے کہیں وہ جو میں اور آپ لوگ گئے تھے ادھر فرگت تھنگ کے اندر ڈبیٹ تھی تو وہاں وہ انہوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اسکول ہم نے تمہیں دیکھا تو میں نے کہا ہاں میں وہاں گیا تھا, ہاں میں وہی تھا. تو وہاں پہ بات ہوئی تو انہوں نے یہ چیز مانی کہ آپ مسلمان جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروفٹ مانتے ہیں. میں نے کہا ہاں, تو میں نے کہا پھر آپ یہ بتائیں کہ جیسس کرائسٹ کے نام کو, مریم کے نام کو, حضرت بی بی مریم کے نام کو آپ جلانا پسند کریں گے؟ کہتی ہے نہیں نہیں نہیں نہیں. تو میں نے کہا ان کا نام تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. کہتی ہے ہاں بہت جگہ میں نے خود پڑھا ہے, میں نے بہت سے لینگویج اپنا ریلیجن کورسز کیے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا پھر تم لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ کس طریقے سے تم لوگوں نے قرآن کو بند کیا.
1: تو شاہ صاحب وہ سمجھدار لوگ ہیں, شاہ صاحب وہ باتیں سمجھتے ہیں آپ لوگ یا دوسرے لوگ جو بولتے ہیں. تو عدنان آپ لوگ سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہاں پیدا ہوئے, ہر چیز کو آپ سمجھتے ہیں. تو آپ کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں یہ نوجوان سیاستدانوں کو جو کمیون میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تجربہ ان کے پاس بھی, آپ کہیں سے چھوٹے ہوں گے کہیں سے بڑے ہوں گے, تو جو باتیں ہم آگے پیچھے سینہ گزٹ چلتی رہتی ہیں, سینہ گزٹ جو اخبار نکلتا ہے تو اس میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ نوجوانوں سے بھی بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں, اس کو ہم ہائی لائٹ تو یہاں نہیں کرنا چاہتے.
2: سب سے پہلے ہوتا ہے آپ زیادہ سیاستدان ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی بچی ہو یا سینئر ہے تو ان کو پوچھتے ہیں اور ان کی باتوں کو دیکھتے ہیں.
3: عدنان کی آواز کلیئر نہیں ہے.
2: میں نے یہ کہا کہ جو ہم لوگ سیاستدان ہوتے ہیں سینئر ان کی باتوں کو देखते हैं और उनको गौर करते हैं, और हम गाइडलाइन ये देते हैं कि जो खड़ा होना चाहता है ना उसको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इसके अंदर खड़े होने के लिए ना ऑपरेशन की जरूरत हो। आप जब कोई काम करना चाहते हैं या करने होते हैं तो आपको काफी चीजों को देखना होता है, काफी क्या कहते हैं टाइम देना होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि नेक्स्ट कमिंग स्टेज में जब ये वापस आएंगे वोकेशन के बाद, तो सब जितने सिटी काउंसिलर हैं, जितने डीपीटी काउंसिलर हैं, जितनी पार्टी के बींग होल्डर हैं, उनका सबसे बड़ा काम यही होगा इस वक्त देखना कि बजट कैसे बढ़ता है, और उसके लिए बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये आसान नहीं होता, क्योंकि आपने हर सूबे को देखना होता है कि किस किस का एरिया है, जिसका स्कूल हो गया, जिसका बिजनेस हो गया, जिस तरह हो गया, हर एरिया को देखना होता है। और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज स्कूल है, बुजुर्ग हैं, अगर अभी एक और भी तो चैलेंज है ना, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा है, जैसे ये क्राइम का बहुत मसला है, इसके अंदर पुलिस को भी रिसोर्स चाहिए, पुलिस ने भी देना है कि किसको प्रायोरिटेट करना है और कैसे इन चीजों को लेके जाना है, तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आप उसमें जिस में देखें। और सबसे बड़ा जरूरी ये भी होता है कि आप जैसे आप किस उजवल में बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल आप स्कूल उजवल में बैठे हुए हैं तो आप ये देखें कि स्कूल उजवल की चीजें कौन सी है, स्कूल कैसे चल रहे हैं, स्कूल को किस तरह की जरूरत है, स्कूल के पास पैसे हैं, स्कूलों के पास की चीजें हैं कि नहीं, तो ये सारा क्या कहते हैं देखना होता है। हमें भी लोग बड़ा सवाल करते हैं, हमें भी बड़ा पूछते हैं, तो हम उनको वही जाने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरह से अपनी पूरी कोशिश करते हैं, अपना 100% देते हैं, तो गलती हमसे होती है, अगर कोई मिस्टेक होता है हमसे हमें बताएं, फिर हम उसको ठीक कर दें।
1: शाह साहब, आपने अदनान की बात सुनी, बात तो सारे करते रहते हैं, मीडिया पे भी चलती है, अखबारात में भी चलती है, तो शाह साहब आपको नहीं पता जो कुछ लोगों को समझ क्यों नहीं आता, जो कुछ अब मसाजिद में एक जगह पे हो रहा है, आपके शहर में हो रहा है, तो शाह साहब क्या इसमें डैनिश करते हैं या डैनिश तंजीमें कर रही हैं? गलतियां हम खुद करते हैं तो इसका नुकसान जब काफ़ी देर जाकर होगा पता, उस वक्त हमें लगेगा। शाह साहब, हम खुद एक दूसरे के नुकसान करते हैं।
3: बिल्कुल जी, बिल्कुल अदनान ने बिल्कुल सही बात की है, मैं इससे अवेयरनेस हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और कौन कौन से लोग क्या क्या कर रहे हैं। मसला यह है कि जब तक
1: मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ कोई नतन्याहू कर रहा है, ट्रंप कर रहा है?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन हमारी मेटर फेडरेशन जो है या हमारे जो मॉडर्न मैसेज में था वो भी आगे नहीं कर रहे हैं, वो हमें डायरेक्ट नहीं कह रहे, जो कुछ हम कर रहे हैं वो हम अपनी अपनी जात में अपने आप में मगन इस कानून की धजिया उड़ा रहे हैं, हम खुद करते हैं ये, हमें कोई आगे ये नहीं कहता कि तुम ऐसे करो, कोई हमें यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा, हम आराम से रह रहे हैं, बाइज्जत तरीके से रह रहे हैं और यहाँ पे हमें बिल्कुल
1: तो हम जब अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे तो पांव तो जख्मी होगा।
3: जी बिल्कुल, आपने सही बात की है कि अभी देखें सबसे बड़ी ये बात होती है कि अवेयरनेस किसने देनी है, अवेयरनेस देनी है सोशल वर्कर ने, अवेयरनेस देनी है जो सियासत से तलक रखते हैं। अब अगर कोई बंदा ये कहे जी कि मैंने किताब लिखी, मैं पाकिस्तान चला गया वहां पे मुझे ये मेडल मिले, अब मैं ये कहूँ कि मैं लंदन में चला गया वहां मैंने बड़ी अच्छी सियासी तकरीर की, और मैं जर्मनी में चला गया वहां मैंने जाके इतना, तो ये फलाने फलाने पॉलिटिशियन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने इस कौम के अंदर जो देखे, जो हमारे मेरे साथी आए हैं 70 से, उनके लिए सबसे जरूरी ये बात है कि जब वो पेंशन पे जा रहे हुए हैं, हमने 500 दफा उनको ये बात बता दी हुई है कि उनके जो उस वक्त SID के और यूनियन के किसी भी यूनियन के मेंबर थे, तो वहां उनकी यूनिकल फसिकरिंग और दूसरी फसिकरिंग जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस है उनकी हुई है, और वो जो है वो पेंशन वाले देखते हैं कि भाई ये कितना अच्छा पेंशन के मेंबर रहे हैं। यहाँ पे एक ग्रुप होता है कि जो 40 साल इस मुल्क के अंदर काम करता है, 40 साल काम करता है, उसको ये पूरी पेंशन देते हैं, फल के पेंशन, वो फल के पेंशन होती है तकरीबन 8,000 के करीब, और जो बंदा जो यहाँ पे अपने पूरी फॉर्म को फिलअप नहीं करता उसको ये कम से कम पेंशन ये देते हैं। अब लोगों ने इसका सहारा क्या ढूंढ लिया हुआ है,
1: तो शासन इसके लिए किसने आवाज उठानी है? मीडिया तो आवाज उठाता है, तो क्या कम्यूनों से आवाज उठ रही है?
3: ना बिल्कुल नहीं, यही तो बात है, यही तो बात दलान को चाहिए कि क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वर्कर सोशल वर्कर है, इसको चाहिए कि खुल के ये बात करे। अब हमारे लोगों को ये पता नहीं, हमारे लोग जो हैं वो दानिश के तरीके से तलाक ले लेते हैं, लेकिन इस्लामी तरीके से कहते हैं कि हमारी शादी है, और वो गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हैं, और यहाँ पे पेपर वो पेपर भरे पड़े हैं कि ये फोनो जो है ये कर रहे हैं। कल को जब
1: तो
3: ये बात
1: साहब
3: आती है
1: इसका
3: तो
1: हाल भी होना चाहिए। देखें शाह साहब, अगले इलेक्शन आ जाएंगे, कम्यून के पता नहीं चलेगा क्या। अब तो कहते हैं लोग अभी हुए, इतना अरसा ही नहीं हुआ, तो कम्यून के तो एकदम आ जाएंगे, पार्लियामेंट के भी किसी टाइम हो सकते हैं, कम्यून के तो अपने टाइम पर होंगे। अदनान, मैं आपसे चाहूंगा कि आखिर इसका कोई हाल बताए ना
2: सब। ये देखिए, ये तो इंसान को देखना चाहिए जिस पर ये बात की गई है कि आप यहाँ का सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि आपने जिस मुल्क में रह रहे हैं उसके लॉ को फॉलो करें। आप इस तरह की चीजें करते रहेंगे तो हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए ज्यादा मुसीबतें बनेंगी। तो इसका तो यही हाल है कि बंदा जिस मुल्क में रह रहा है उसके लॉ को आप फॉलो करें और उसको देखें और उसको रिस्पेक्ट करें, ये ना करें कि आप लोग उसको ब्लॉक करें। ये जो ये शादियों का मामला है, ये तो काफी अरसे से लोगों को पता है और मुझे अटॉर्नी को भी पता है कि क्या कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला क्या कहते हैं, हम इस पे देखेंगे भी और इसका कुछ हल निकालना भी पड़ेगा,
1: हल निकालना पड़ेगा। शाह साहब, आखिर में अदनान का शुक्रिया भी अदा करें। शाह साहब, एक बात तय हो चुकी है कि जितने कानून सख्त हुए वो हमारी अपनी वजह से, गैर मुल्कियों की वजह से हुए। कानून पहले में बहुत ज़्यादा नरमियाँ थी, अब जितनी चीज़ें हमारी बन चुकी हैं गैर मुल्कियों की, अगर हम एक दूसरे की शिकायत कर कर उनको खुद नुकसान देंगे तो शाह साहब इसमें आप क्या समझे, ये डैनिशों का कसूर है, डैनिश पीपल्स पार्टी का कसूर है?
3: नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब समर फेरी है, लोग जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, बाद लोग जो हैं वो यूनियन पे हैं, बाद लोग बीमारी के पैसों पे हैं, बाद लोग जो हैं वो फोर्टिस पेंशनिस्ट हैं या पेंशनिस्ट हैं, उनको भी ये चाहिए कि जब वो राइजिंग करते हैं तो वो बकायदा अपने अपने अदारों को जहाँ से उनको पैसे मिलते हैं वो बताकर जाए, क्योंकि उनकी इजाजत के बगैर जो है ये बहुत सारे केसेस बन रहे हैं बहुत ज्यादा। अब तो ये बाई लॉ हो चुका है, इसके ऊपर मैं कहूंगा इदनान भी जो है अगली दफा तैयारी करके आए, ये तो कानून बन चुका है, ये तो अब आप गूगल भी कर सकते हैं कि 6 माह से ज्यादा आप जो है डैनिश पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 6 माह से ज्यादा इस मुल्क के आप बाहर नहीं रह सकते, और अगर 6 माह से 1 दिन भी ऊपर हो जाए तो आपका वोट कास्ट करने का भी हक चला जाता है और आपकी हर चीज जो है स्विच स्क्रीन येलो कार्ड सब कुछ बंद हो जाता है। हाँ, आप जा सकते हैं अगर आप अपनी कम्यून के साथ रब्ता करें और उनसे जो है इजाजत लेके जाए, फिर आप 2 साल छोड़ के 10 साल दूसरे मुल्क में रह गए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये चीजें जो है, इस तरह के काफी लोग जो है वो प्रॉब्लम में आए हुए हैं और उनको बड़े मसाइल से गुजरना पड़ता है। तो हम लोग यंगस्टर से यही उम्मीद करेंगे, अदनान से या दूसरे जितने भी एक्टिव सोशल वर्कर है, कि आप लोग आगे आए और आकर तो रेडियो पे जो लोग सुनते हैं उनको इन्फॉर्म करें। तो इदनान, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अच्छे मसाइल लेके आ रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें कि सोशल डेमोक्रेट की जो बेसिक उनकी बेसिक्स है अगर आप वो पढ़ें, और आज के जो सोशल डेमोक्रेट है उनसे हम लोग मुकाबला करें तो लोगों को बताएं कि कितनी अच्छी पार्टी होती थी और अब इसके ऊपर किन कौन लोग राज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगली दफा हम लोग खुल के बात करेंगे। जी राजा साहब।
0: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समय नाज़रीन, 25/7/2026 का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हफ्ते का दिन है, मौसम बड़ा खुशगवार है, बादल भी हैं और गर्मी भी है, और उसके साथ साथ सियासी गर्मी भी है जो कश्मीर से हमें आती है। और उसके अलावा सामने नाज़रीन, आपको पता है कि हम कोशिश करते रहते हैं इंफॉर्मेशन के लिहाज से, हमारे थिंक टैंक बात करते रहते हैं, और काफ़ी सालों से हम जो लोकल हमारे मसाइल होते हैं, कम्युनिटी के मसाइल होते हैं, लोकल जो पॉलिटिक्स होती है हमारे जो कोपेनहेगन कम्यून में या फ्रेडरिक्स पे में या आगे दूसरी कम्यून में भी जो हमारे साथ रिलेटेड होते हैं मसाइल, उस पर हम लोकल बातचीत करते रहते हैं। सब नाज़रीन, टैक्सी सेल्सकेप जो है एक बहुत बड़ा कारोबारी से अदारा भी कह सकते हैं, कारोबारी कंपनियां भी कह सकते हैं, जो कुछ मर्जी आप इसका नाम दें, लेकिन टैक्सी के बगैर जो है वो आवाम का गुजारा भी नहीं है। ऑफिस में बुक्स होती हैं, एयरपोर्ट पर बुक होती हैं, और काफ़ी सालों से मामला चलते रहते हैं। अब कारोबारी लिहाज से एक नई ब्रांच जो है वो आ गई है, उन्होंने 600 गाड़ियाँ भी लॉन्च कर दी हैं, और जो है वो ड्राइवर भी रख लिए हैं, और तनख्वाहें भी मुकर्रर हो गई हैं। तो समझ नाज़रीन, काम की मंडी में जब लोग आते हैं, नए लोग आएंगे, तो डेफिनेट जो है सहूलियात भी मिलेंगी। तो हमने कहा चूँकि हमारे बहुत सारे लिसनर जो हैं वो इस ब्रांच से तल्लक रखते हैं, और इस ब्रांच में लोग ये ना कहें अनपढ़ हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं, बड़े मेहनती लोग हैं, इसमें इंजीनियर्स भी हैं, इसमें और जो PhD वाले लोग भी ये काम करते हैं, लेकिन काम आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन जब आपको पक्की तनख्वाह मिलेगी तो आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी। हमें पता चला है कि कोई 29-30 हज़ार के करीब जो है तनख्वाह मिलेगी। इस पर बात करने के लिए हमने तकलीफ़ दी है सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब से। शाह साहब, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिसनर नाज़रीन सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज मौसम बहुत ही प्यारा है, 18-19 डिग्री है, और बादल भी आते हैं और धूप भी निकलती है, और मौसम जो है वो बिल्कुल मरी जैसा मौसम है। हम ये समझे कि हम गर्मियों की छुट्टी में मरी में आए हुए हैं, और यहाँ की मजेदार जो हवा है उसे मजे ले रहे हैं, और ये हमारे लिए हमारी खुशकिस्मती है। खसूसी तौर पे इस टाइम को देखें जहाँ तेल बहुत महंगा हो चुका है, 17 करोड़ पर लीटर हो चुका है, डीजल जो है वो 17 करोड़ से भी ऊपर चला गया है। तो इससे जो हमारी वार्म की जो या कोल्ड की जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम घरों में AC वगैरह लगाते थे, इलेक्ट्रिक तो बहुत महंगी हो गई है। ये तो अब जब हमें नए बिल आएंगे तो उसके ऊपर जो लोगों को पता लगेगा कि भाई हमने जो पंखे लगाए थे या AC लगाई थी, तो खुदा की तरफ से ये हमें हमारे पे रहमत है कि मौसम सर्द है और हम लोग इस गर्मियों में इतना AC वगैरह या दूसरी जगह पंखे वगैरह नहीं लगा रहे, तो ये हमारी बचत है। और चीजें तो बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, और बाज चीजों की प्राइस जो है वो बहुत ही, खाने पीने की कम है, लेकिन कुछ चीजों की प्राइसेस इतनी हाई हो गई है कि लोगों की दस्तर से वो दूर है। तो जितना भी आप नजर रखें, ये ना देखें कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ की गवर्नमेंट ने हमें ये वार्निंग दी हुई है कि आप अपने घर में 3 दिन का खाना, 3 दिन का पानी जो है इसको स्टोर करके रखें कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाती है या कोई ऐसा इंटरनेट सिस्टम बंद हो जाता है, तो आपके पास कुछ कैश भी होना चाहिए ताकि आप जो ग्रोसरी वगैरह खरीदे या कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वो आपके पास कैश हो। तो क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है या इंटरनेट बंद हो जाता है तो वो कंप्यूटर वगैरह तो काम नहीं करेंगे, टिल वगैरह काम नहीं करेगी, लिहाजा आप कैश दे के तो आप अपनी चीजें खरीद सकते हैं। तो राजा साहब, हमें हुकूमत की तरफ ख्याल रखना चाहिए, हमें अपना और अपने बच्चों का सोचना चाहिए, अपने बुजुर्गों का सोचना चाहिए, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हुकूमत के जो इस वक्त एडवाइजर जो हमें वो हमें कह रहे हैं कि जो हमें वो एक खबरदार एक ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, हमें उस पे नजर जरूर रखनी चाहिए और उस पे अमल भी करना चाहिए। जी राजा साहब।
1: शाह साहब आपने अच्छा किया बता दिया। शाह साहब चूंकि आपका इस ब्रांच से तल्लक भी है, हमारे लिसनर भी काफ़ी तादाद में हैं, और ये जो नई टैक्सी नई कंपनी जो कारोबारी कंपनी आई है और जिसके लिए अब खबरें हैं कि 600 टैक्सीज भी उन्होंने ख़रीद ली हैं और जो उन्होंने मुलाजम भी रख लिए हैं, जो दूसरे हमारे लिसनर या यहाँ लोग जो काम करते हैं मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के, इसमें हमारी अपनी जो है वो कम्यूनिटी अच्छी खासी तादाद में शामिल है, तो शाह साहब नए जॉब आ गए, नई तनख्वाहें आ गई है, नया सिस्टम आ गया, जरा हमारे नाजरीन को हमारे सामान को बताएं तो सही।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि 2017 से हम फाइट कर रहे थे इस रेडियो पे, हर रोज हर हफ्ते हमारा यही प्रोग्राम होता था कि खुदारा बाहर निकले और प्रोटेस्ट करें कि भाई जो हमारा पुराना टैक्सी कानून है उसको बचा लें, और उबर वगैरह अगर आती है तो ये जैसे इंग्लैंड में ब्लैक कैब चलती है और जर्मनी में जो बड़ी लोकल कंपनी है वो चलती है, लेकिन उसके साथ उबर भी चल रही है और दूसरी कंपनियां भी चल रही है। इसी तरीके से हम अपना पुराना वकार जो है, हमारे जो पुरानी कंपनी है जो कानून है उसको हम बचा लें। लेकिन यहाँ पे लोगों ने लालच की, हमारे अपने लोगों ने जो सबसे ज्यादा तादाद में फॉरनर थे, इन्होंने कहा कि ये तो पैसा कमाने का एक उम्दा जरिया बन गया, हम जितनी ज्यादा टैक्सी लेंगे जितने ज्यादा नंबर लेंगे इसको आगे बेचेंगे। लेकिन फिर भी हमने ये कहा कि ये आपके लिए खतरा है, आप इस तरह की सोच मत रखें। आए इस हुकूमत ने 2017 से लेके 2023 31 दिसंबर तक ये मार्जिन दिया कि अगर आपको ये लॉ फोर्स ने जो हमने बनाई है उबर की, इसको इस कानून को अगर आप नापसंदीदा समझते हैं और ये आपके लिए डिफिकल्ट है तो आप इस पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों ने इसको मजाक समझा और इसको दौलत का जरिया समझा। तो आज आप ये देखें कि आज ये जो नई कंपनी यहाँ पे आई है जिसने अब FDM और इसके साथ गवर्नमेंट और इसके साथ BT और बकायदा TV2 और दूसरों ने जो एक्सबिलर और दूसरे अखबारों ने उसकी तस्वीरें निशर कर दी है कि वो इस जुमे को 30 जुलाई से ये ऑन कंप्लीटली ऑन रोड हो जाएगी। 590 जो उनकी अपना गाड़ियां हैं वो एज ए टैक्सी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और अवधा हॉलमन में खड़ी हैं और कुछ ऑन रोड भी आ रही हैं, और ये जो है ये ग्रीन टैक्सी जो है ये वेट नाम की ये सबसे सस्ती टैक्सी होगी। इसको इसके ड्राइवरों को ये लालच नहीं कि क्या हम कमा रहे हैं, उनको ये बस होगा कि जो उनकी सेल्सकेप जो है उनको टूर देगी वो टूर उठाएंगे, उनको उनकी सरदर्दी खत्म है, उन्होंने 7-7.5 कैंडे जो काम करना है उसकी उनको 29,000 यानी 29,000 करोड़ जो है वो फिक्स तनख्वाह प्लस बोनस मिलेगा। ये आज के माहौल के मुताबिक ये खुश आंदा है, लेकिन ये डेनमार्क के आइन के और डेनमार्क के कानून के सख्त खिलाफ वर्दी है, क्योंकि चले ठीक है जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें 29,000 तनख्वाह और बोनस जो मिलाकर अगर ये 32-33-40-34-35,000 तक बंदे की तनख्वाह निकल आती है तो ये एक खुशाइंदा बात है। लेकिन जो वॉनमैन चल रहे हैं जिनके पास वॉनमैन तो नहीं जो वो कैब ऑनर आप उनको कह सकते हैं, वो वॉनमैनशिप तो वो तो व्हीलिंग वाली तो खत्म हो चुकी है। अब ये जब 590 गाड़ी जुमे को सड़क पे आएगी तो ऑलरेडी यहाँ पे 3500 से लेके 4000 गाड़ी जो है वो कोपेनहेगन में टैक्सी चल रही है, तो इससे आप ये देख लें कि कितना बड़ा झटका लगेगा, अर्थक्वेक आएगी और वो कंपनी जो है वो अपने ग्राहकों को सस्ते से सस्ता और जो है रूट वो मुहैया करेगी। अभी मैं आज पढ़ रहा था एक डेनिश ने जिसने 21 साल टैक्सी चलाई और उसने आज आखिरी दफा टैक्सी जो है वो कल खड़ी कर दी और उसने कहा कि आज के बाद मैं दूसरी जॉब करूंगा और मैं ये मेरा टैक्सी से जो 21 साल मेरा इसके साथ वास्ता रहा वो अब नहीं रहेगा क्योंकि ये टैक्सी नहीं रही। और इसी तरह एक बंदे ने ये क्ले किया है कि उसने रॉसकिल्ड से लेके लुफ्तावन यानी एयरपोर्ट तक, रॉसकिल्ड से एयरपोर्ट तक 500 कुछ करोड़ में उसने फर्स्ट प्राइस पे ये टूर उठाया है। अब आप ये देखें कि एक वॉनमैन जो है, एक ये जो नई सेल्स के भाई है, इसमें अगर वो इतना टूर, इतना 500 का टूर है तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। उसकी सेहत पे इसलिए असर नहीं पड़ता कि उसको फिक्स तनख्वाह मिल रही है, वो 200 से लेके जाए 400 से लेके जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बंदे अपनी गाड़ियां लेके चला रहे हैं, जो लोग अपनी टैक्सी लेके चला रहे हैं, उनके अखराजात जो है इस मुकाबले में वो जीरो हो जाएंगे, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब उनको याद आएगा कि कभी रेडियो आपकी आवाज पे तौकीर शाह बैठा होता था और बात करता था। ये चीजें जो है हम इनको पहले से बताते रहे हैं। अब इनके पास सबसे बड़ी जो इनके लिए प्रॉब्लम है, ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये अब स्ट्राइक्स नहीं कर सकते। इसकी वजूहत क्या है? क्योंकि ये अपनी जो सेल्स के हैं उनके साथ इनकी बैनिंग है, ये उनके साथ बाउंड हो चुके हैं, ये उनके साथ इनका वादा है कि ये उनके बगैर कोई काम नहीं करेंगे और नए कानून को एक्सेप्ट करेंगे। तो नए कानून के तहत राजा साहब ये दिल चाहे जब दिल चाहे पीछे से कंपनी इनका नंबर बंद कर दे और इनको कहे कि आप कॉपरेट नहीं कर रहे लिहाजा हम आपका नंबर बंद कर रहे हैं, ये अदालत में भी नहीं जा सकते, ये अपनी गाड़ी ले घर जाए, उसकी लीजिंग देनी है, उसके पैसे देने हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें से ये निकले। क्योंकि मैं खुद जाती तौर पे से इस प्रॉब्लम में से, इस नए कानून से निकला था। जब मैं बीमार हो गया तो मुझे अपनी सेल्स के बंद करनी पड़ी, तो मुझे 1,00,000 जो है वो पास से देना पड़ा सेल्स के को, फिर गांव स्वीटू को, और प्लस मुझे जो अपना कोर्स होने से और दूसरी चीजों से होने से बचने के लिए मुझे 62,000 करोड़ जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ा, जिससे मुझे गाड़ी का लॉस हुआ। तो ये जो 162,000 करोड़ मुझे लॉस हुआ, ये मैं लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये ना आपको टैक्स वापस करेगा, ना आपकी कोई मदद होगी, ना कोई चीज होगी। आप लोगों ने 5-5, 6-6 लाख की, 7-7 लाख की गाड़ियां डाली हुई है, खुदारा होश के नाखन लें। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है कि आप लोग हड़ताल नहीं कर सकते। मैं आपको ये कभी भी राय नहीं दूंगा कि आप हड़ताल करें, आप कुछ करें, क्योंकि आपका नुकसान आपका होगा और आपका नुकसान होगा तो हमारा नुकसान होगा। तो हम सिर्फ ये राय देते हैं कि अभी भी आप मुतहित हो जाएं, अभी भी आप सिग्नेचर्स लें और आप कोशिश करें कि आप किस तरीके से इससे जान छुड़ाते हैं। अब ये 590 जो टैक्सी जो फ्राइडे से सड़क पे आ रही है, इस जुमे से जो आ रही है, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको आप देखेंगे कि आपके नाक के सामने से उबर और ये ग्रीन टैक्सी जो है ये 2-3 मुख्तलिफ नामों से आपके सामने आ जाएगी और ये आपके नाक के सामने से टूर उठा कर लेके जा रही है और आप खड़े हैं। आप वो जो इतनी इतनी महंगी लीजिंग गाड़ियां ली हैं, इतनी इतनी महंगी इंश्योरेंस है, वो अखराजात आप कैसे देंगे? क्या आपके लिए कोई सर्वाइवल है? इसका हल बेशक आप फिमत हाल में है या आप किसी भी सेल्स के में है, इसका हल जो है ये अब क्रिसमस से पहले सबको नजर आ जाएगा। इसका हल सिर्फ ये है कि आप अपने कंपनियों से बात करें कि वो अब इकट्ठे हो और जो एक्सपर्टीज हैं, जो इस कानून को जानते हैं कि इसको किस तरह डिमोलिश करना है, इसको किस तरह खत्म करना है, इस कानून के ऊपर बात किस तरह करनी है, सियासतदानों से बात किस तरह करनी है, पार्लियामेंटेरियन से बात किस तरह करनी है, ये जो जब तक आप आइन और जो कानून बना हुआ है ये दो डिफरेंट चीजें हैं, इसके दरमियान जब आप इन एक्सपर्टीज को लाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके लिए अभी भी आसानी है कि आप अपनी जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं और आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। राजा साहब, मैं लोगों को बताता चलूं कि 2000 22 और 2023 में जो थी यहाँ से कम इनकम जो थी डेनमार्क के अंदर काम करने वालों की उनका बनता था 30,990 डेनिश क्राउन, यानी कि थालबत थुजन नहीं होना हेल्फिम्स को होना, और उनका जो सालाना जो इनकम बनती थी वो बनती थी पर पर्सन बनती थी डेनमार्क के अंदर 371,900 क्राउन, यानी नियरली 3,000 करोना। तो 25-26 में इन्होंने वो बढ़ाकर कर दी 4,000 करोना। इसीलिए तो ये स्टैटिस्टिक्स में दुनिया को बताते हैं कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, हम बहुत आगे चले गए हैं। और जो 25-26 में इन्होंने 4,000 किया, तो इसके पर मंथ ये महीने किया, तो इन्होंने कम से कम जो इनके बंदे कमाते हैं तो उसके अंदर जो है ये एक महीना काम करने वाले के लिए 5,64,000 कम से कम जो है वो इसकी सालाना इनकम होती थी। लेकिन अब अगर आप 29,000 या 30,000 पे काम
1: जो
2: करेंगे,
1: 30 जुलाई डेनमार्क में बाकायदा सर्विस जो है होने जा रही है, इसका आगाज कोपेनहेगन से होगा। पहले मरहले में तकरीबन 600 इलेक्ट्रिक टैक्सियां सड़कों पर उतारी जाएंगी। ये तकरीबन गाड़ियां इस नाम से होंगी, ज़्यादातर जो है टैक्सियां हैं विनफास्ट की इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, जिनमें मुख्तलिफ मॉडल भी शामिल हो सकते हैं, VFE 34, VF5, दीगर जदीद इलेक्ट्रिक मॉडल्स भी। शासन ड्राइवर कैसे बन सकते हैं, अगर आप ग्रीन GSM के साथ काम करना चाहते हैं तो आमतौर पर आपको ये चीज़ें दरकार होती हैं, डेनिश टैक्सी ड्राइविंग लाइसेंस, साफ ड्राइविंग रिकॉर्ड, CPR नंबर, डेनमार्क में काम करने की कानूनी इजाज़त, बुनियादी डेनिश या अंग्रेजी जबान की सलाहियत, कमाई कितनी हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है अतमी तनख्वाह कंपनी कितने देती है, लेकिन डेनमार्क में टैक्सी ड्राइवर अमूमन बुनियादी तनख्वाह के साथ बोनस या कमीशन की बुनियाद पर काम करते हैं। इलेक्ट्रिक टैक्सी होने की वजह से ईंधन के अखराजात भी कम होते हैं। तनख्वाह और कमीशन की तफसलियात कंपनी की जानब से मुलाजमत के वक्त दी जाती है। मुसाफिरों के लिए सहूलियात, मोबाइल ऐप के जरिए बुकिंग, 100 इलेक्ट्रिक और माहौल दुरुस्त सफ़र, 100% मतलब है 100% टैक्सी नहीं, 100% माहौल, डिजिटल अदायगी, जदीद और नई गाड़ियाँ। शाह साहब अगर आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, GSM जो है ग्रीन GSM है, तो शाह साहब बुनियादी तनख्वाह एक बंदे की या एक ड्राइवर की सहूलियात के साथ कितनी हो सकती है तकरीबन?
2: देखिए जी, जो आपने बात की आपने बिल्कुल सही बात की है, ये जीए ग्रीन GMS आने के बाद और यहाँ के जो हालात हैं इससे इसका निचोड़ एक ही निकला है कि यहाँ पे अब पानी गंदला हो चुका है। ये इसलिए इन्होंने पानी गंदला किया है कि इस कानून के तहत जो है वो लोग अब मुलाजमत करेंगे और उनकी जो तनख्वाहें हैं उनको मिलेंगी और लोगों को सर्विस जो दी जाए। अब ये जो सबसे ज्यादा फॉरनर जो थे वो टैक्सी चला रहे थे और कैब ऑनर बने हुए थे और उनके पास उनकी जो इनकम सी जो वो कभी सही तौर पे यहाँ आगे पीछे कुछ लोग सही शो करते थे, कुछ लोग आगे पीछे, क्योंकि यहाँ आपको ये बताता चलो कि पिछला जो लॉ गिवनिंग था जो टाक्सा नेमन का कानून था उसके अंदर वोनमैन को बहुत बड़ी सहूलत थी। उसके अंदर यह था कि वोनमैन जो था जब उसको बबीलिंग दी जाती थी तो वो बबीलिंग जो है ना पुलिस ले सकती थी ना टैक्स वाले ले सकते थे, उसके लिए उसको अदालत में लेके

0: हाथ पांव उनके सुन हो जाएंगे और वो छोड़कर इसको मैं तो ये समझता हूँ कि वो ड्राइवर जो है, अभी मेरी कल शाम को 3-4 ड्राइवरों से बात हो रही थी।
1: मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक देन टैक्सी के पास भी 600 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, क्या बात सही है?
0: जी बिल्कुल, सबके पास है गाड़ियां हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या वो ये जो जी ड्राइवरों की अब कमी आ गई है, ड्राइवर नहीं मिल रहे, क्योंकि ड्राइवर चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी हो, ड्राइवर ये चाहते हैं कि हमें ये सिक्योरिटी हो कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें बीमारी के पैसे मिले, हमें पहले दिन से बीमारी के पैसे मिले, हम ये नहीं कि वोमेन कह के जी तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, ये नहीं कर सकता। ये जो नई कंपनी की जो शरायत है ये बहुत ही खुशानदा शरायत है ड्राइवर्स के लिए, लेकिन इसके अंदर लेस पे है तरह जो है ये डैनिश आइन के खिलाफ है, इसमें मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करूंगा। लेकिन जो उनका असूल है बाकी तरीके जो है उनके कि हम आपको देंगे क्या नाम है फायदा देंगे, आप बीमार हो जाते हैं, आप अनसेट हैं, आप छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, आपको छुट्टियों पे विद पे मिलेगी, ये उनकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या दूसरी कंपनियां जो हैं या वो बंदे जो कहते हैं जी कि हम अभी तक वॉनमैन हैं, क्या वो अपनी अपने अखराजात जो हैं वो पूरे कर सकेंगे? क्या जो आवाम है गाग जिसको हम कहते हैं वो सस्ती टैक्सी और अच्छी टैक्सी और एक ऐसी, बल्कि आज मैं पढ़ रहा था, कल भी पढ़ रहा था कि बेशुमार लोगों ने ये डैंशो ने लिखा है कि ये जो फॉरनर्स की टैक्सी थी, ये जो फॉरनर उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है फॉरनर, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये रेप होते थे, यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते थे, ये अब ये चीज खत्म हो जाएगी, अब हम ऐसी टैक्सी में बैठेंगे और ऐसी टैक्सी हम चाहते हैं डेनमार्क के अंदर के जो कंपनियां चलाएं और कंपनी जो है वो जवाबदेह होगी। तो पहले तो दूसरा सिस्टम चल रहा था तो इन्होंने सारा सिस्टम जो है उसको खत्म किया है। तो अब राजा साहब जो बातें हमने वार्निंग दी थी, एडवाइसल दी थी इन लोगों को, खुदारा मतलब प्रस्ताव बने सामने आए और अपने जो है इस वॉर्मैनशिप को इसको बचाएं। तो अब ये झटका जो है जुमे को लगने जा रहा है और इससे कितना बड़ा नुकसान होगा डीएसबी और बड़ी बड़ी जो कंपनी है गवर्नमेंट की, ये तो अब ऐसी सस्ती गाड़ियां लेंगे जिसके अंदर यूनिफॉर्म पहने हुए ड्राइवर बैठे हुए हैं, एंस वाली ड्राइवर बैठे हुए, उनको पता है कि हमने पूरी तनख्वाह लेनी है, उनको इस बात की नहीं परवाह कि ये 100 करोड़ का टूर है या ये 500 करोड़ का या 1000 करोड़ का टूर, इससे इसका उनसे लेना देना कोई नहीं, वो अपनी ड्यूटी करेंगे जैसे वो फर्मों में करते थे, फैक्ट्रियों में करते थे, 7-7.5 घंटे काम किया और उसके बाद खुदा हाफिज़ गाड़ी खड़ी की और अपने घर चले गए। और ये एक बहुत अच्छी खुशानदा बात है और इनके लिए, लेकिन ये उनके लिए जो जिन्होंने महंगी गाड़ियां खरीदी हुई है।
1: साहब ये सवाल ये पैदा होता है, चले पहले लोगों ने गाड़ियां ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, बड़ी महंगी गाड़ियां ली, कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो यहाँ सड़कों पर गाड़ियों का मौजूद नहीं है। शाह साहब अगर माहाना तनख्वाह होती है 30,000 के करीब या 40,000 डैनिश क्रोन के करीब होती है और शिफ्टों में काम होगा, कमीशन भी, ओवर टाइम भी हो सकता है, रात वीकेंड तैतील छुट्टियों में भी काम करने की जो अजाफी अदायगी मिल सकती है, शाह साहब अगर कंपनी इजतमाही माहदे यानी के तहत जो है ना वो मुलाजमी रखती हैं तो आम तौर पर तनख्वाह के साथ पेंशन, तनख्वाह के साथ छुट्टियाँ, बीमारी की सूरत में तनख्वाह, तरबियत यानी ट्रेनिंग, जदीद इलेक्ट्रिक टैक्सी की ट्रेनिंग, कंपनियों की तरफ से गाड़ी की देखभाल और इंश्योरेंस जैसी सहूलियात भी शामिल हो सकती हैं। शाह साहब आप ये जो सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने या किसी से आपकी मुलाकात हुई, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो कोई भी इस कंपनी में गया तो आपकी इंफॉर्मेशन में है कि हमारे पाकिस्तानी भाई या हमारे गैर मुल्की भाई या जो हमारे लिसनर हैं ये कितने लोग जो है इस ब्रांच में जा चुके हैं और इसका मुआयदा कितना होगा? ये ना कि सुबह निकाल दिया जाए, आज छोड़ के जाते हैं दूसरी कंपनी में, फिर उनके लिए वापसी का रास्ता क्या होगा?
0: मैं कह रहा हूँ जी कि बहुत ज्यादा लोगों ने अपने आप को जो है इस कंपनी में चले गए, उनको पहली फुर्सत में 3,000 ड्राइवर चाहिए थे और मेरा ख्याल में कि उनका जो है वो काफी, क्योंकि अगर वो 590 टैक्सियां निकालते हैं तो उनको कम से कम 16

0: 1700 ड्राइवर जो होते हैं दिन रात के लिए उनको चाहिए थे, और वो उन्होंने पूरे कर लिए, उससे ज्यादा ड्राइवर वो रख रहे हैं ताकि वीकेंड पे जो लोग छुट्टियां करेंगे, क्योंकि अब ये तो नहीं है ना कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने वीकेंड में भी काम करना है, नहीं, आपने 5-6 दिन जो मुकर्रर है, 5 दिन काम करना, 2 दिन छुट्टी, 5 दिन काम करना, 2 दिन छुट्टी, और इसी के असूल पे जो वो काम कर रहे हैं तो उनको जो तनख्वाह मिल रही है और फिर उसके ऊपर जो बोनस मिल रहा है ये उनके लिए अच्छा है, फिर उनको हर किस्म की छूटी है। सबसे बड़ी छूटी उनके लिए ये है कि उनकी अपनी कैब नहीं है, उनको ये मसला नहीं है कि मैं वर्कशॉप में गया तो वर्कशॉप, वो वर्कशॉप तो कंपनी की अपनी है, उन्होंने अपनी गाड़ियां ठीक करनी है, उसको कहना है कि भाई ठीक है तेरी गाड़ी खराब हो गई है या कुछ हो गया तो उसको तो पे मिलेगी। अब मसला जो खड़ा हो गया है, जो दोबारे बर्लिन खड़ी हो गई है, दोबारे चीन खड़ी हो गई है, वो ये हो गई है कि जो हमारे भाई वॉनमैन बने हुए, अपने आप को वॉनमैन कहते हैं, सॉरी टू से मैं माफी चाहता हूं माजत के साथ, उनका क्या बनेगा जिन्होंने इतनी इतनी महंगी गाड़ियां ली हुई है, जिनके अपने नंबर हैं, अब वो क्या करेंगे? क्या वो इस गर्मी के अंदर, ये जो अगस्त के आ रहा है आगे से यूल फेयर ये आएगी उसके अंदर, फिर जनवरी फरवरी आएगी, क्या उसके अंदर वो इतना पैसा, मैं खुद वॉनमैन रहा हूं, मैं खुद सेल्सकेप चलाता रहा हूं, मुझे पता है कि ये जो सज्जे खब्बे की मारते हैं ना वो मैं, इसके अंदर कितना मुश्किल हो जाता है। आपको ड्राइवर नहीं मिल रहे, आप ड्राइवर लगा नहीं सकते। मैंने कितने लोगों के साथ बात की है कि यार आप बेकार, तो उन्होंने कहा शाहजी सर जापाल आपके लिए अच्छी है, और इवन टर्किश जो है वो भी चले गए, बहुत ज्यादा फॉरनर जो थे वो अब इसमें जा रहे हैं, स्टूडेंट जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। तो देखिए ये एक फिक्स नौकरी है, ये वैसी नौकरी है जैसे आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं या आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको 5 दिन काम करना है, आपको फिक्स तनख्वाह मिल रही है, आपने कोई सड़कों पे से सवारी नहीं उठानी, आपने रेडियल टूर उठाना है, अगर सड़क से कोई मिल गया तो उसका आपको बोनस मिलेगा, बाकी जो गवर्नमेंट है उससे, अगर कंपनी आपको दिन में 10 टूर देती है या 5 टूर देती है तो उसका आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये आपको तो अपनी तनख्वाह मिल रही है, वो आपको मिल रही है, तो ये चीजें ड्राइवर के लिए बहुत अच्छी हैं। इसमें सिर्फ ये हो गया कि अब जो वॉनमैनशिप थी वो खतरे में हो गई है, और जो पुराना कानून था वो हमारे लोगों ने खुद खत्म कराया है, और इस बात पे जी कि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम डैनिश में बहुत ज्यादा माहिर है, और अब जो चीजें हैं वो सामने आ गई है। जी राजा साहब,
1: ये जो फलके पेंशन वाले हैं उनके लिए क्या होगा? क्या वो 20-25-30 घंटे काम करेंगे या पार्ट टाइम करेंगे या छुट्टियों में काम करेंगे या वो 37 घंटे भी फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, ये कोई पता लगा आपको?
0: जी बिल्कुल, वो जो फलके पेंशन वाले हैं वो काम कर सकते हैं, और फोर्सेस पेंशन वाले जो हैं वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक हदूद में रह के इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, और आप कितने घंटे जो है, अब क्योंकि अगर आप काम करेंगे टैक्सीज के अंदर तो आपको 3 घंटे या 4 घंटे की वो चेकअप होगा कि भाई ये कितने जा रहे हैं, वो रजिस्टर्ड होगा ऑटोमेटिकली, ये नई कंपनी जो है ये कितने पैसे देती है बंदों को वीकेंड में चलने के लिए, या दूसरे कितने देते हैं, लेकिन आप काम कर सकते हैं। अगर आप फलके पेंशनिस्ट हैं तो फिर वो आपको, अगर आप फुल टाइम गाड़ी चलाना चाहते हैं तो वो आपको सिर्फ ग्रूंड ब्लॉक जो होता है ना वो आपको देंगे, आपको दूसरे जितने डिलैक्स वगैरह मिलते हैं वो आपके खत्म कर देंगे, और आपको कहेंगे ठीक है कि आप जाए, अगर आपको 5,000 या 6,000 या 7,000 मिल रही है वो, फिर इसके साथ ये होगा कि जो आपको जो फोर्सेस पेंशनिस्ट या जो पेंशनर हैं इनको जो बॉडी यूज से मिलता है, यानी कि जो पैसे वो देते हैं कि भाई आपका किराया बहुत ज्यादा है ये वो खत्म हो जाएगा इससे, लेकिन अगर आप सिर्फ वीकेंड में
1: चल, ये तो नेचुरली बात है शाह साहब, अगर बात बिलफर्ज में मिसाल के तौर पर चले आपका नाम ले रहे हैं, अगर आप फलके पेंशन है, अगर आप अब गाड़ी चलाते हैं तो कितने घंटे चला सकते हैं जो आपकी पेंशन पर आपके जो छिलेगे इस पर कोई फर्क ना पड़े?
0: देखिए अगर सिर्फ मैं सोचता हूँ कि मैंने वीकेंड में चलानी है, पहले तो मुझे काम कौन नहीं देगा अगर मैं फुल टाइम चलाता हूँ, और दूसरा ये है कि जो अब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं इसके मुताबिक ये है कि आपको चेक एंड बैलेंस जो है ये बहुत जबरदस्त इन्होंने कर दिया है, ये देख रहे हैं, इससे मुझे जो इजाजत होगी अगर मैं वीकेंड में काम करता हूँ तो मैं पूरे महीने के अंदर जो है वो 7,000 से ऊपर का करोड़ जो है वो नहीं कमा सकता। अगर मैं 7,000 से ऊपर कमाऊंगा तो वो उसका मतलब ये हो गया कि वो मेरी जो सिर्फ ग्राउंड ग्रॉप है वो देंगे, बाकी में कटौती होना शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं फुल टाइम काम करता हूं तो फिर मुझे बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि फिर आपकी जो घर की इनकम है वो स्टीयर कर जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। तो उसके अंदर ये होगा कि आपको दो जगह टैक्स देना पड़ेगा, एक आपकी इनकम पे टैक्स देंगे, एक आप इनकम टैक्स देंगे जो आप पेंशन में कटौती करा रहे हैं, फिर दूसरा वो देखेंगे कि आपके घर के जो आपकी बीवी है, बच्चे हैं, घर में साथ रह रहे हैं, उसकी हुस होल्डिंग जो है उसकी इनकम कितनी है। तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है और इससे हमारे लोग जो है वो नुकसान में हो जाते हैं। अब डेनिशों के लिए ये है कि डेनिश जो है वो हमारी तरह झूठ नहीं बोलते, वो कहते हैं ठीक है भी वो अवेयर फसाए, वो कहते हैं जी कि ठीक है वो तो हमें उनके उनको तो परवाह नहीं कि हम शादीशुदा करके साथ रहते हैं या नहीं रहते, वो ज्यादा ज्यादा भी हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली इस गवर्नमेंट ने जो इशारा किया था 2022 के अंदर और उसके फॉर्म है जो कानून इन्होंने बनाया था, वो खसूसी तौर पर ये देख रहे हैं कि ये जो फॉरनर्स हैं ये ज्यादातर, क्योंकि इसमें जो हम बाद में इस पे डिबेट करेंगे जरूर लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, लेकिन मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि लोग जो हैं वो 2.5 तलाक ले लेते हैं, लेकिन लोग मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं और ये साबित करते हैं अपने संपर्क में
1: साहब,
0: अपने
1: ये तो
0: लोगों को, ये
1: कानूनी
0: कहते हैं ये
1: जुर्म है।
0: हमारा
1: हाँ
0: ये जुर्म है। और इसमें वो काफी तहकीक कर रहे हैं और काफी लोगों को जुर्माना भी हुआ है, और अब इसके ऊपर वो कितनी सख्ती कर रहे हैं करते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि
1: चलें शाह
0: 800-900
1: आते हैं, शाह साहब
0: केसेस।
1: इतनी गाड़ियां और आ जाएंगी, 600 के करीब आ जाएंगी, तो शाह साहब पार्किंग कहाँ होगी? शहर तो उतना ही है ना, कोपनहेगन से चलेंगी, शहर तो उतना ही है।
0: जी, ये अब कोपेनहेगन कम्यून का मसला है कि ये अब पूरी जो हमारी गवर्नमेंट है उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, उसको ये सोचना पड़ जाएगा कि मैंने जो पहले अपना टिल्डाल से, मैं बिविलिंग नहीं कहूंगा, जो पहले मैंने टिल्डाल से इजाजतनामे मैंने दिए थे, वो मैंने दिए थे कि पूरे डेनमार्क के अंदर चले, वो सारे के सारे कोपेनहेगन में ही रह गए और बड़े शहरों में रह गए, अब छोटे जगह में नहीं। तो अब ये जो नई गाड़ी आ रही है ये भी, तो अब आप ये खुद अंदाजा लगा लें कि जब 3,500 से लेके 5,000 गाड़ी जो है वो कोपेनहेगन के अंदर घूमेगी, तो इस टैक्सी के अंदर अब काम उसको मिलेगा जो सबसे सस्ती होगी। अब यहाँ पे ये मुकाबलाबाजी होगी कि हमारा मीटर कितने पे चलता है, हम कितनी सस्ती देते हैं, हम फास्ट टूर देखे, ये जो फास्ट टूर वाला काम इन्होंने किया है ये डेनमार्क के अंदर जो है ये इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि एक ड्राइवर अगर, ये जो अभी मैं रॉस किल्डे का पढ़ रहा था और मैंने आपको भेजा भी है वो कटिंग मैंने आपको भेजी भी है ताकि कोई कहे कि शाह साहब झूठ बोल रहे हैं तो वो आप उसको सप्लाई कर सकते हैं। रॉस किल्डे से लुफ्थावन का 530 या 40 करोड़ का वो टूर लेके गया, और अगर वो रश आवर्स में जा रहा है तो वो बेचारा जो है वो थका हुआ है, 40-50 मिनट का टूर है और वो इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, तो वॉनमैन अगर वो खुद भी वॉनमैन है तो वो अपने अखराजात कैसे बर्दाश्त करेगा, वो किस तरीके से गाड़ी के अखराजात जो है वो 1 घंटे के लिए अगर वो 500-600 करोड़ कमा रहा है तो उसको तो फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि जब वो इस सारी चीज को डील करेगा इंश्योरेंसों में, गाड़ी के खर्चे में सारा कुछ, तो उसको क्या मिला, उसको 80 या 90 करोड़ से जायद, या हद कर दें आप तो 100 करोड़ उसको इस पूरे टूर का जेब में आएगा, तो उसको क्या फायदा हुआ 1 घंटे में 100 करोड़, इससे अच्छा है वो जाके तो
1: लेकिन शाह साहब ये एक
0: सोशल।
1: बहुत बड़ा खेल होता है, कारोबारी खेल इसे कह लें, जाहिर है रोजगार भी लोगों को मिलता है, तो शाह साहब इंश्योरेंस इन्वॉल्व होगी, रोड टैक्स इन्वॉल्व हो गया, अब तो फिक्स चीज़ें आ गई हैं, इंश्योरेंस भी फिक्स हो गई है, हर कंपनी इतनी कंपनियां आ गई इंश्योरेंस वाली कि वो गिनी नहीं जाती, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो कहते हैं जहाँ सहूलियात हैं उस तरफ जाना चाहते हैं, तो शाह साहब आप कोई मुस्तकिल मिजाजी वाली बात नज़र आती है?
0: ये जब तक मुश्किल मजाजी वाली बात तो उस वक्त होगी जब हमारे जो काउंसलर हजरात हैं ये इस मसाइल को संजीदगी से देखें और वो उठाएं इसको कम्यूनों के अंदर, एग्जाम्पल ईसा है में कितने टैक्सी वोमैन या टैक्सी ड्राइवर रहते हैं, टास्टो में कितने हैं, एल्बर्सोन में कितने हैं, कोपनहेगन में कितने हैं, तो उनके लिए मसला बन जाएगा कि भाई लोग कैसे क्या करें। अब मैं आपको ये यकीन से ये बात कहता हूं कि ये जो नई कंपनी आई है, अभी तक ये कानून जरूर था कि आप 33,000 से लेके 35,000 तक फास्ट प्राइस पे आप ड्राइवरों को रख सकते हैं, फिर उनको उनकी इंश्योरेंस है, हर चीज उनको आपने देनी है, लेकिन 39,000 जो है ये, और फिर उसको हर किस्म की सहूलत देनी ड्राइवर को, ये वोमैन के वोमैनशिप को खत्म कर देगी। और इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, एग्जाम्पल अब बॉल्ट है यहाँ पे वो उबर है, तो ये क्या करेंगी, ये भी इसी तरीके से जब लोग अपने नंबर वापस करना शुरू कर देंगे, तंग आ जाएंगे, उनकी गाड़ियां बिक नहीं सकती तो वो गाड़ियां खड़ी कर देंगे, उनको नुकसानात होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो यही करेंगे कि कंपनियां उनसे हर एक चीज ले लेंगी सस्ते दामों, और फिर उनके अंदर अपने ड्राइवर जो है, जिस तरह इन्होंने एंड सेट किया, इन्होंने तनखादार बंदे मुलाजिम रखे हैं, वो भी उनको कहेंगे कि अब आप हमारे पास काम करें, आप हमारे लिए पैसा कमाएं और हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे, ये आपने काम करना है। तो अब ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं ये सामने आ गई हैं। तो राजा साहब, इसमें जो हमारे बड़े बड़े ड्रीम थे, बड़े बड़े
1: मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सारे काम होंगे लेन देन वाले,
0: बिल्कुल जी, ये सब कुछ आप अब अखबारें भरी हुई हैं कि जो लोग फेरिये पे गए हैं वो कार्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे, कैश पैसा इस्तेमाल कर रहे, इनको सात किस्म की आप इंफॉर्मेशन।
1: शाह साहब देखे ना, इस पर नजर रखनी चाहिए, बार बार आप काउंसलर का जिक्र करते हैं, डेफिनेट इसके लिए काउंसलर ने अपनी अपनी कम्यूनों में पहले सफबंदी करनी थी, पार्किंग ये वो दूसरा तीसरा। शाह साहब, हर पार्किंग अब पैसे से होती है, फ्री पार्किंग तो कहीं भी आपको मिलती नहीं कि आप करें, कुछ जगहों पर है 1.5 घंटा 2 घंटे 15 मिनट, इतनी ज़्यादा मैक्सिमम इतनी पार्किंग आपको फ्री मिलती है। दूर दराज इलाकों में रहते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपका विल्ला है आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सड़क पर तो आपने गाड़ी खड़ी करनी है कहीं ना कहीं।
0: देखिए जी, पार्किंग का पहले सबसे पहले ये है कि आप इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, ये मैं गवर्नमेंट को और काउंसलर्स को कह रहा हूं कि जिस अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, आपका प्राइवेट विला है तो उसके अंदर तो आपकी पार्किंग जो है वो ग्रातिस है, क्योंकि वो तो आपकी अपनी है, उसके राइट्स दूसरे हैं। और जो अपार्टमेंट ले रहा है, अगर वो कहीं सड़क पे या किसी पार्किंग में गाड़ी खड़ा कर रहा है तो वहां पे क्या जी उसको जुर्माना लग जाता है। अगर उसका कोई गेस्ट आ जाता है, उसका कोई मेहमान आ जाता है, उसको नहीं पता, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ कि यहाँ पे फ्री है गेस्ट पार्किंग है या क्या, वहां पे वो जुर्माना लगा के चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है।
1: शाह साहब, और भी हमें शिकायत मिलती है, हमसे लोग बात करते हैं सर, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमसे बात करते हैं। शाह साहब, जब आप शहर में घूमते हैं, एक दिन हमने भी सर्वे किया, आपको पता है कि ये जो डील चीज वीजा कारोबारी गाड़ियां उनकी पार्किंग होती है, ये हर वक्त आपको खाली मिलती है। रात को बाहर निकले आपके घरों के आगे पीछे जहाँ इलेक्ट्रिक पार्किंग है, ये पार्किंग हमेशा खाली पड़ी होती है, लेकिन आप वही का जो काम वाली गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां वहाँ खड़ी नहीं कर सकते, वो भी काम वाली भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो होती हैं वो अलहदा सिस्टम बना हुआ है। तो शाह साहब, एक आपने रोड टैक्स भी देना है, उसके बाद आपने पार्किंग भी कर रही है, फिर आपने वो पीस की जो लिखा होता है पार्किंग के पैसे भी डालने हैं। तो शाह साहब, इसकी वजात जो आप सिटी काउंसलर जो बैठे होते हैं कम्यूनों में, सबसे जिम्मेदार लोग तो ये होते हैं, पावर तो इनके पास होती है कमेटियों में। तो शाह साहब, ये मुझे एक बड़ा मनज़म जो है वो मनज़म जो कहते हैं वो स्पिल नज़र आती है, गैम नज़र आती है, स्कक नज़र आता है, आप क्या कहेंगे?
0: ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये वहां पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वहां पे खड़े होके अपने कम्यून के अंदर खड़े होके ये फौसले दे सकते हैं, वहां पे ये फौसले दे के कह सकते हैं कि देखे यहाँ पे पार्किंग के अंदर नाजायज पैसे लिए जा रहे हैं, जब लोग यहाँ के 38 से 40% बल्कि 90% हर बंदा जो डेनमार्क के अंदर रहता है, खसूसी तौर पर कोपनहेगन वेस्ट आइन में रहता है, ये 90% से ऊपर टैक्स देता है। वो टैक्स इसलिए कि इसके अंदर जो वो टैक्स देता है, पर्सनल टैक्स देता है, फिर उसके अंदर जो चीजें बाय करता है, मम्स वगैरह देता है, ये जो चीजें हैं ये इतनी ज्यादा चली जाती हैं, ये तो 90 से भी ऊपर चले जाते हैं जो टैक्सेस हम पे करते हैं। तो ये हमें क्या दे रहे हैं? मुझे याद पड़ता है कि 80s में एक एक्सपर्टीज टैक्स का मेरे साथ बैठा था, तो वो मुझे कहने लगा कि तुम लंबे टूर लेके जाते हो या छोटे टूर, तुम किस पे राजी हो, किस पे खुश हो? मैंने कहा यार जितने ज्यादा मुझे पैसे बने मैं उस पर खुश हूँ। तो उसने हंस के कहा, उसने कहा देखो तुम्हारी टैक्स कार्ड तुम्हारे पास है? मैंने कहा हाँ, वो तो हर बंदा जो काम करता है उसके पास है। तो उसने कहा जो तुम्हारी फ्रॉड लिखी हुई है ना 5,000 या 4,000 या 2,000, वो जो तुम्हारी मंथली लिखी हुई है ना उससे 1,000 करोड़ ऊपर का लो, ये तुम्हारे तुम्हारी असल बचत है, इसमें तुमने गुजारा करना है, बाकी तो सारा ये मम्स और टैक्स में तुमसे छीन कर ले जाएंगे। तो मैंने उस वक्त यंग था तो मैंने कहा ये क्या है, लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ तो मैं जब ये पेपरों को ऊपर लिख लिख के पेंसिल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं उस बंदे को याद करके कहता हूँ कि वो कितना अकलमंद आदमी था कि आज से 40-45 साल पहले उसने मुझे ये वार्निंग दे दी थी। और ये चीज डेनमार्क में हो रही है। अब डेनमार्क क्या कहता है कि हमारी ऑफिशियल जो है दुनिया को ये बताता है कि हमारा जो कम से कम बंदा है वो 3,72,000 करोड़ से कम कमाता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या, अगर आप ये देखें ये जो आ रही है तो ये कंपनियां जो है ये तो 2,40,000 करोड़ सालाना है, तो फिर इनकी इसके ऊपर कौन बात करेगा, इसके ऊपर काउंसलर ने बात
1: करनी है ना। शाह साहब पहले पार्किंग की तरफ आते हैं, ये चूंकि बुनियादी सहूलियात हैं, जिसने भी गाड़ी रखी होती है, जिसने भी इलेक्ट्रिक गाड़ी अब रखेगी, अब तो चंद सालों में जो है बिल्कुल हर गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक हो जाएगी, पेट्रोल डीजल वाला तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, शहर की बात कर रहा हूँ। तो शाह साहब इसकी कोई मनसूबाबंदी की जाती है? अब देखें 600 गाड़ी आएगी, किसी भी कंपनी की गाड़ी है, दूसरी गाड़ियां भी हैं, आपने पार्क भी करनी है, जो लोकल लोग बिल्डिंगों में रहते हैं उन्होंने भी गाड़ियां पार्क करनी है, पार्किंग की कोई सफाई भी नहीं करता। तो शाह साहब आने वाला जब हम मुस्तकबिल देखते हैं, बात एनवायरनमेंट की करते हैं, तो पार्किंग प्लेसेस तो सबसे ज्यादा गंदी होती हैं।
0: नहीं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। जैसे मैंने 2017 में बात शुरू की थी कि ये ऊपर आ जाएगी और ये छा जाएंगे, इनको रहने दें, अपना डिफेंस करें, मैं इसी तरह ये कहूंगा कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं ये बहुत ज्यादा नुकसान में जा रही हैं और ये बहुत जल्द बंद हो जाएंगी। अगर आप आज की अखबारों में इंटरनेशनल न्यूज में पढ़ें तो जो टेस्ला का जो मालिक है उसको कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, और उसको सिर्फ इसीलिए कि अब लोग जो है वो खरीद नहीं रहे, बल्कि उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और फिर उसने उसको कवर करने के लिए अपने अच्छा की जो कीमत है अपने उसको कम किया ताकि लोग उसको खरीदे, और वो मेरा जो नुकसान मुझे हुआ है पहले 3 माह के अंदर उसको कवर किया जाए। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं इनके बहुत ज्यादा फॉल्ट हैं, और जो इलेक्ट्रिक बसें कोपेनहेगन में चलाते रहे हैं और चला रहे हैं, कभी आप उनका इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि उनको कितनी प्रॉब्लम था। ये चीजें जो है अगर जाती है, मैंने खुद अपने घर में अपने बेटों की गाड़ियों को देखा है कि नुक्स के लिए 7-7 महीने लग गए, उनको पता ही नहीं लगा, उसकी जगह उन्होंने फिर नई गाड़ियां दी है। तो ये जो चीजें हैं ये चीजें आम आदमी के लिए बहुत बड़ी नुकसान है। लोग जो है अगर खुदा ना खासा कल को ये जो कंप्यूटर का ये जो चल रहा सिस्टम अगर ये एक दूसरे के कंप्यूटराइज सिस्टम को बंद कर दे, कुछ ये कर दे, सैटेलाइट्स को बंद कर दे, कोई ऐसी
1: सिस्टम हो जाता है, चलती रहेंगी, लेकिन फैसले जब हो जाते हैं, जब अक्सरियत, तो आपको पता है हम जमहूरी मुल्कों में रहते हैं, जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, जब जमहूरी
0: मुल्क खत्म हो गया जी, जमहूरी मुल्क खत्म हो गया, ये जमहूरी मुल्क होता तो ये पार्किंग का जो था सिलसिला ये लोगों के लिए आसान करता, ये बूढ़ों के लिए आसान करता। 8,000-8,000 करोड़ जो है वो तो सिर्फ हुसला है कोपेनहेगन के अंदर, उसकी पार्किंग का जो है कोपेनहेगन में मेरे पास इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स आई हैं, आपने भी कुछ बताया था, कुछ लोगों ने बताया कि एक एक लाइब्रेरी के अंदर जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो 3,500 से लेके 4,000, और जो महंगा एरिया वहां पे 4,000 से भी ऊपर जो है एक पार्किंग प्लस का वो ले रहे हैं। अगर एक घर में 2 गाड़ियां हैं तो वो 2 पार्किंग प्लस अगर ले रहे हैं तो वो तो 5-6 हजार करोड़ उधर दे रहे हैं। तो ये
1: एक सवाल पैदा होता है शाह साहब, आप पार्किंग में खड़े होते हैं, आपको पार्किंग में क्या सहूलियत मिलती है? लाइसेंस आपने लिया उसके बावजूद आप पैसे देते हैं
0: जी, तो ये नहीं होना चाहिए, पार्किंग फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पार्किंग फ्री इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक तो आपकी जो आइंडम है जिसके अंदर आपने लाइक किया हुआ है या आपने घर फ्लैट खरीदा हुआ है, एक तो वो डबल कमाई कर रहे हैं
1: और उसके साथ बात की तरफ मैं आता हूँ, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ शाह साहब। एक बंदा एक घर में चार बंदे फलक हैं, दो बंदे फलक हैं, एक घर में चार गाड़ियां उसी एड्रेस पे या तीन गाड़ियां, तो शाह साहब पार्किंग का प्रॉब्लम तो आएगा, हमें भी तो सोचना चाहिए।
0: नहीं वो तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन गाड़ियों को बजाय लीजिंग करने के, गाड़ियों को ये करने के, गाड़ियों की प्राइसेस नीचे करके गाड़ियों को बाय करने के लिए अगर रखे, तो किसी आदमी के पास 40-50 हज़ार करोड़ इतना कैश नहीं होता कि वो जाके ब्रांड न्यू गाड़ी जो है उसकी उड़ बचनिंग जो कर सके। अब लीजिंग का जो मसला है कि आप 40-50 हज़ार करोड़ लीज कर देते हैं, गाड़ी ले लेते हैं और उसकी 3-4 हज़ार करोड़ जो है वो मंथली आप देते हैं, और बाद लीजिंग इतनी सस्ती है कि आप उसके अंदर 20 हज़ार करोड़ देते हैं तो आप गाड़ी लीज कर लेते हैं, तो लोग जो है वो उसको लीजिंग गाड़ियों पे बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा जो है वो पार्किंग की प्रॉब्लम इसलिए हो गई है कि पार्किंग जो है लोग देखते हैं कि किस जगह पे पार्किंग जो है वो फ्री है, तो वो फ्री पार्किंग वाली स्ट्रीट पे जाके अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होती है, और जो पेमेंट करते हैं जिन्होंने गाड़ियां रखी हैं आप उनके पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि अब तो आपके फ्लैट का नंबर लिखा होता है उस पार्किंग में। मैं अगले दिन बेलारूस गया था तो वहां मैंने एक टर्किश के पास जाना था, तो वहां पे वो बादशाह नीचे आया, उसने कहा कि गर्दज तुम यहाँ गाड़ी नहीं पार्क कर सकते, तुम्हें बाहर खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हर लाली के लिए एक एक पार्किंग प्लेस है और वो उसके अंदर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता, नहीं तो फौरन जुर्माना लग जाएगा। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इतने दूर से मैं चल के पैदल आ पाऊंगा, तो ये जो मसाइल है ये किन्होंने किए,
1: आप समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो ज़हनी गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल जी, अब ये कम्यून के अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं ये इनकी वजह से है, ये इनकी देखरेख है, ये लोग इस चीजों पे बात नहीं करते कि हमारे लोगों की डिमांड क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा फोटो सेशन हो रहा है, हम कहाँ अपनी तस्वीर लगाएं, हमें कौन बुला रहा है, किस पार्टी में हमें नहीं बुलाया गया, किस पार्टी में हम जाएंगे, किस शादी ब्याह, बस ये इनका चीज रह गया। ये मैं उर्फे हमें ये कहूंगा
1: तो साहब इसका ये मतलब है कि वोटर को जो वोट देने वाला उसको अपनी पावर का पता ही नहीं है,
0: पता ही नहीं है। ये मैं ये कहूंगा कि ये पाकिस्तानी सियासतदान है, प्योर पाकिस्तानी, ये डेनिश सियासतदान नहीं है, क्योंकि डेनिश सियासतदान जो है वो किस कहीं भी तख्ती नहीं लगाता कि ये मैंने ये काम करवाया इस पे मेरा नाम आया, नहीं वो कहता है ये कम्यून ने कराया, गवर्नमेंट ने कराया, और जो वहां का बॉम मिनिस्टर होता है या उसका भी नाम नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे सारे, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि डेनिश जो है वो जब किसी भी असेंबली में हो, बेशक वो कम्यून की असेंबली में बैठे हो या पार्लियामेंट में, तो वो तैयारी करके आते हैं, उनको पता होता है कि हमने किस सब्जेक्ट के ऊपर बोलना है। तो जब आप सारा दिन अपने कारोबार में रहेंगे, अपनी जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आप थके हुए जाएंगे, फिर आपने अपनी बीवी बच्चों को संभालना, फिर आपने किसी शादी ब्याह पे जाना, तो आप वो कहते हैं जी आपने
1: क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। शाह साहब देखे ना कि जो तंजीमें लगातार काम करती हैं, जिनका मतलब अरसा दराज से अपना काम करती हैं, वो बात तो हमें समझ आती है। शाह साहब ये आमों का फेस्टिवल जो है वो इसका बिल्कुल जो है वो रश आया हुआ है, जो सलमा हाउस जो है फुल जा रहा है, लेकिन डी पैक जो एक तंजीम है गालबन पाकिस्तानी डेनिश बिजनेस अफेयर काउंसिल है, ये पिछले 7-8 साल से ये करा रहे हैं, देखिए मुसलसल करा रहे हैं, लगातार करा रहे हैं, इनका प्रोग्राम हुआ बहुत कम या प्रोग्राम था कसीर तादाद में, मैं नहीं समझता कि इतने लोग कभी किसी प्रोग्राम में गए हों, लेकिन शाह साहब वो तो तसलसल से करा रहे हैं, उनका कहा था हमें कोई जो हमें जिस कीमत पर मिलते हैं हम आगे बेच देते हैं, आगे लोगों को सर्व कर देते हैं, मेहनत होती है, अखराज डेफिनेट अखराज तो निकालते होंगे जो समझ आती है, लेकिन शाह साहब हर रोज़ मैंगो फेस्टिवल हो रहा है और ये इतना ज़्यादा इसकी एडवर्टाइजमेंट भी की जा रही है, तो शाह साहब अगर कभी हमने अपने मसाइल की भी एडवर्टाइजमेंट की है कभी?
0: नहीं जी हमने कभी नहीं की, और ये जो है ये खुद मसाइल में गिर चुके हुए, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि टैक्स की और जो है वो अपना मम्स वगैरह की उनकी नजर पड़ चुकी है इनके ऊपर, और बहुत ज्यादा पाइपलाइन में है और बहुत ज्यादा लोगों ने क्लेयर किया कि वो 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार करोड़ जो है वो देते हैं बकायदा एक टेबल का, तो ये चीजें जो है बाहर निकल चुकी हैं, लोगों के टेलीफोन टेप होते हैं तो हर चीज, लेकिन ये आसा आसा ये आप याद चीज याद रखे, ये वाइकिंग है, ये बेरी कर्जाक है, ये बड़े बड़े शिपों को लूटते हैं, ये छोटी छोटी डैनिश छोटी छोटी चोरी नहीं करते, तो ये जब पकड़ते हैं तो ये छोटे छोटे चोरों को इंतजार करते हैं कि इनका माल उतना हो जाए जब ये एक बड़े शिप के बराबर, तो फिर हम इनके इनके ऊपर कब्जा करेंगे। तो लिहाजा मैं यहीं पे बात खत्म करूंगा कि हम लोगों ने अपने हाथ काटे हैं, अपने पांव काटे हैं अपनी ही गलतियों की वजह से, और अगर ये चीजें जो है रजिस्टर्ड होती हैं, ये चीजें जो है हम ऑफिशियल तरीके से करते हैं और अपने आप को भी खुश रखते तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन अब जो चीज होने जा रही है वो बहुत ही खतरनाक है। और किन किन के ऊपर होंगे, क्योंकि इस वक्त जो मेरे सोर्सेज हैं, मैं चिड़िया तो नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी चिड़िया ये है, क्योंकि मैं डेनिश सियासत में हूँ और जो मैं स्टडी करता हूँ, और इस वक्त जो पुराने सियासतदान जिनसे गुफ्तगू होती है डेनिशों से, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त 800-900 से जायद टैक्स केसेस जो है वो इन पाइपलाइन जो बड़े किस्म के टैक्सेस हैं, और ये कब खुलेंगे, कब आएगा, ये जो है वो
1: ये बात हो रही है। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाह साहब आखिर में आप क्या कहेंगे कि यहाँ के रहने वाले शहरियों को अपनी अपनी कम्यूनों में बैठकर क्या करना चाहिए?
0: ये इनको जब तक ये अवाम से रब्ता नहीं रखेंगे, ये अवाम से ये नहीं पूछेंगे कि आपकी जनरल तकलीफात क्या हैं, इसको स्टडी नहीं करेंगे, इसके ऊपर आइन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वहां पे आप जाकर बात नहीं करेंगे, उस वक्त तब देखिए हमने कितनी दफा कहा है कि ये लोग कम्यूनों में ये जाके कानून बनाए, कभी किसी ने आके कहा काउंसलर ने कि जी हमने इसके ऊपर बात की है? नहीं। ये चीजें जो है,
1: कभी आपको दावत मिली है किसी काउंसलर ने कहा होगा जी आज आए हमारी डिबेट हो रही है आप आए हमारे मेहमान बने?
0: नहीं, वो सिर्फ उनको बुलाते हैं कि जो उनके आगे बार बार करे ताड़िए करे। वो एक शायर था तो वो शेर शायरी कर रहा था तो बंदे वाह वाह वाह वाह कर रहे थे, तो मैंने एक को पकड़ के पूछा, मैंने कहा बंदे ने पुत्र इतनी वाह वाह कर रहे हैं, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा जी बड़ा अच्छा कह रहे। मैंने कहा क्या कह रहा था? उसका सब्जेक्ट गया था, उसका वो बोल कर रहा था, तो आगे से वो मेरा मुंह देखने लगा और हाथ चढ़ के चला गया। तो ये चीजें हैं कि ये वाह वाह करने वाले लोग हैं, हमें बुलाएंगे तो हम तो क्रिटिसाइज करेंगे, हम तो उनको बताएंगे तुम्हारे लिए बेहतरी है भाई, ये कानून जो है ये आइन के खिलाफ है, ये जो 100-400 के करीब कानून बने हुए हैं ये आइन के खिलाफ है, या आप इसके ऊपर बात करें, और वो कर सकते हैं, बेहतरी उनकी है, लेकिन वो क्या करेंगे?
1: तो ये जमहूरी मुल्क का आखिरी सवाल है, जवाब इसका दें, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ तो सारे काम जमहूरियत से होते हैं, जहाँ जमहूरियत जिस तरफ ज्यादा होगी वही कानून बनेगा, वही बंदा जीतेगा। तो शाह साहब पहले सबसे पहले तो अवाम को जमहूरी बनना चाहिए।
0: देखिए जी ना, हम लोग जमहूरियत को समझते नहीं है, हमें पहले यही नहीं पता कि जमहूरियत आई कहाँ से है। हम कहते हैं जी डेमोक्रेसी जो है ये यूरोप से आई है, ये इनकी है, हालांकि इनका कानून पढ़े तो ये कहते हैं डेमोक्रेसी हम लेके आए थे कैस्कस दुनिया से, ओल्ड टर्की से हम लेके आए थे, वहां किनकी थी? वहां पे इस्लाम था। अगर आप इनसे पूछे जी क्या पाकिस्तान में सुने, जजों से सुने, दूसरों से, वो कहते हैं जी ये जो कैद खाने हैं ये सब कुछ अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा फैसिलिटीज रखे। इस्लाम को देखे, इस्लामी हिस्ट्री को देखे तो कैदियों के साथ जो हौसले सलूक किया जाता था वो इतने जालिम नहीं थे जितने आज के लोग जालिम हैं। तो ये चीजें जो है डेमोक्रेसी लाने वाले मुसलमान थे।
1: ये सवाल आ गया हमारी तरफ शाह साहब, चूंकि हम जमहूरियत पसंद हैं, जमहूरियत को देखते हैं जहाँ जहाँ दुनिया में चल रही होती है, हमारे साथ रिलेटेड होते हैं कि यहाँ की जमहूरियत। शाह साहब आजकल जो जमहूरियत ने कश्मीर पर मेहरबानियाँ की हुई हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर पर मेहरबानियाँ की हुई हैं, सब पार्टियों के बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं, बसें भी दी जा रही हैं, यूनिवर्सिटियों का भी ऐलान हो रहा है, मोटरवेज का भी ऐलान हो रहा है, तो शाह साहब ये चीज़ें तो वक्त से पहले भी हो सकती, चले देर आए दुरुस्त आए, तो शाह साहब ये जो ख्वाब लोग देख रहे हैं, वोट तो उन्होंने देना है, उन्होंने सोच समझ कर देना है, लेकिन शाह साहब हर पार्टी अपना डीजल पेट्रोल तो बेचती है।
0: देखो जी, सारे ये आपने बात सही है, पेट्रोल फेंक रहे हैं, सारी पार्टी पेट्रोल फेंक रही है, सारी पाकिस्तान जो पार्टीज हैं इस वक्त, जितनी भी पार्टीज हैं उसमें काफ हो, नून हो, पीपल हो, पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, फजल रहमान की फे हो, ये सब की सब जो है ये पेट्रोल फेंक रही है अवाम के ऊपर, अवाम को आपस में लड़ा रही है अपने वोट के मकसद मकासद के लिए। लेकिन कल को होगा क्या? कल को ये होगा कि वहां पे नफरतें फैल जाएंगी आपस में, खानदान इस इलेक्शन के अंदर खानदान जो है वो बट चुके हैं, आपस में लड़ रहे हैं, हमारे गुजरात में भी लड़ रहे हैं, पंजाब में भी लड़ रहे हैं, जो रह रहे हैं कि तुमने इसको वोट नहीं देना, इसको वोट देना, आपस में इन्होंने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया, इनके झूठे। लेकिन कल को इन्होंने कोई काम नहीं करना, कल को इन्होंने कोई ऐसी काम नहीं करनी। ये है पेड बाय UAE, ये एजेंट्स हैं और ये लोग आए हैं, और जब तक ये
1: शाह साहब आपने कम्यून के इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में यहीं पे ब्रेकिंग न्यूज दी थी, तो शाह साहब एक और ब्रेकिंग न्यूज जो है वो हम अपने सामान्य नाजरीन के साथ शेयर करते हैं कि कश्मीर के इलेक्शन में नू लीग जो है अगले इलेक्शन में हुकूमत बनाने जा रही है, कुछ भी हो सकता है, आखिरी टाइम पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो आज की जो ताज़ा मैं आप ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं, आप दे रहे हैं कि कश्मीर में आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, और ये अकल भी कहती है और ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, जितनी बड़ी कंपेन की जा रही है, जितने बड़े तरीके से की जा रही है, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, शाह साहब वोटर सपोर्टर को तो नज़र आता है, हमें सहूलियात क्यों कौन देगा? पंजाब को देखा जाए, दूसरे जब सूबे देखते हैं तो वो कहते हैं पंजाब में क्यों तरक्की हो रही है, बजट तो हमें भी मिलता है, बजट तो कश्मीर की तरफ भी जाता है, बजट तो KPK में भी जाता है, बजट तो सिंध में भी जाता है, डेफिनेट तरक्की हो रही होगी जहाँ जहाँ हो रही है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है, शाह साहब आप क्या कहेंगे इस पर, थोड़ा सा तबसरा कीजिएगा कि नून लीग का हुकूमत बनाने जा रही है आजाद कश्मीर?
0: नहीं बना सकते, अगर असूली तौर पर देखें जो आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके मुताबिक ये जाकर आजाद कश्मीर के जो अपनी अपनी उनकी अवामी ताकत है, उनके अपनी जो पार्टीज हैं उनके अंदर ये इंटरफेयर नहीं कर सकते। उनके आप पंजाब से उड़े या आप अपने इलाके इस्लामाबाद पिंडी से जाएं तो आप आजाद कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। जब आपको ये अख्तियार वो आईन नहीं दे रहा तो फिर आपको ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए कि हमारी सियासी पार्टी है। देखिए जब इंडिया वाले जो है वो सूबा कश्मीर में अपनी पार्टियों को की सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम वायलेशन कर रहे हैं। तो मैं इस पे सिर्फ इतना कहूंगा कि ये वाकई ही कश्मीरियों के हक पे दोनों मुल्क जो है ये डाका डालते हैं, इनको कोई हक नहीं कि आईन के मुताबिक ये जाकर और ऐसी बातें करें और ये कहें जी कि हमारी पार्टी जीतेगी, हमारी पार्टी जीतेगी, ये इनको नहीं कहना चाहिए, बल्कि उनको आजाद छोड़ देना चाहिए। आजाद कश्मीर के लोग जो है वो खुद अपनी पार्टी बनाए और उनको ये हक हासिल है कि अगर वो पाकिस्तान में,
1: तो उनकी अपनी बनी हुई है, उनकी अपनी पार्लियामेंट है, उनका अपना वजीर आजम है, उनके अपने वजीर कानून है, उनके अपने सदर, पार्टियां तो बनी हुई है। तो शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नई इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।